मीठी यादों में आपके संग एनबीसी रेडियो। आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एनबीसी रेडियो।

सी रेडियो आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके साथ

पुत्री लगा पुराना देखिए वो काली काली कदम अकेले आगे बढ़ाई हटा चुरा हमारी कसम लौट रही।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके साथ एमबीसी रेडियो।
0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके साथ
0: प्रभात आराधना
1: एमबीसी रेडियो।
0: हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना।

रेडियो मॉरिशस पर प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में।

यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर। ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

ஐயா ஸ்டீவன் நாராயண பிள்ளை அவர்கள்.

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नितुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। कौन ले लिया हमें शुक्रवार को गोली चलने की वारदात में के सिलसिले में पुलिस की तरफ से कल जारी किए गए एक कम्युनिकेट में सूचित किया गया है।
0: संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार शुक्रवार को स्थल और सिलसिले में पुलिस की तरफ से कल जारी किसी ऐसे सूचित किया गया है कि पुलिस को कल 11 अनुसार नौकरी से मामले किया गया है। इसके साथ ही और स्थल पर मौजूद और तीन पुरुष पुलिस अफसरों से जनता से भी व्यक्ति की मदद न करने के लिए जानकारी गया जांच खतरे में थी। जिम्मेदारी और सतर्कता अनुसार बढ़ती जाए इस मामले को पूरी गंभीरता से और कानून का पालन करते हुए देखा जा रहा है। 13 स्वास्थ्य विशेषज्ञों की जनता से भी मांग की जा रही है कि सोशल मीडिया पर कोई जानकारी या तस्वीर साझा करते हुए और जिम्मेदारी और सतर्कता भी बढ़ती जाए होंगे। एलओजी के ऑपरेशन के सिलसिले में आज भारत के 13 स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम और पहुंच रही मदद भारत की तरफ 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर परोपकारी स्तर पर किया जा रहा है भी शामिल होंगे। वकील रामावलायदेन और राष्ट्र डेलीगेशन का संचालन डॉक्टर परिवार का प्रतिनिधित्व कर द्वारा किया जा रहा है और प्राथमिकता मदद भारत की तरफ से पुलिस अफसर पर लगाए गए परोपकारी स्तर पर किया जा रहा है मांग कर रहे हैं। शनिवार वकील अदालत पर उमा परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल पीड़िता का सेहत आरोप दर्शाया गया था। दोनों वकील चाहते हैं कि इस आरोप को पुलिस अफसर पर लगाए गए कोशिश आरोप में बदलाव की मांग कर रहे हैं। शनिवार को वीकेंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिबूती के तट के करीब एक नौका के उलट जाने और डूबने से कम से कम 140 लोगों की मौत का आरोप दर्ज किया गया था। दोनों वकील चाहते हैं कि इस आरोप को कम से कम हत्या की दर्जनों लोग कोशिश लापता आरोप में बदला जाए। नौका में 305 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिबूती के तट के करीब एक नौका के उलट जाने और डूबने से कम 139 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 15 बच्चे शामिल हैं जबकि दर्जनों लोग आम हालत भी लापता बताए जा रहे हैं। नौका में 305 लोग सवार थे जो हमारे जिबूती से येमेन के 24 तरफ जा रहे थे। आज सुबह और दिन के दौरान आमतौर पर मौसम ऊंचाइयों पर हल्की छींटे पड़ सकती हैं। आम हालत मस्कारिंस के दक्षिण पश्चिम और रात के दौरान पूर्व से आ रहे बादलों का असर की तरफ बढ़ रहा है। दक्षिणी और सर्वपातों वाले इलाकों पर आज सुबह और दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी जिसके झोंके और रात के दौरान पूर्व से आ रहे बादलों का असर समंदर दक्षिणी और सर्वपातों वाले इलाकों पर पड़ेगा और दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक बारिश होगी।

0: हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिससे शहरी इलाकों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। 27 से 30 डिग्री सेल्सियस चल रहेगा। सुबह दक्षिण पश्चिमी समतल में 2 मीटर तक हुआ, शाम को 6:10 पर सूर्यास्त होगा। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 25। ये थी अब तक की खबरें, हम आपसे मिलेंगे ठीक 6:30 के समाचार बुलेटिन के साथ। 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 5:45
1: The biggest matches.
0: ये थी अब तक की खबरें।

0: सुबह के 6:04 मिनट हुए हैं और नमस्कार, स्वागत है सुप्रभात, मैं हूँ सबको। एक नए दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, एक नई सुबह और खुश रहने के लिए हर सफर की शुरुआत में पास सभी होना जरूरी नहीं बल्कि जो हमारे पास है उसकी कदर करना सुबह का नजमा प्रोग्राम और मैं के लिए करते हुए सुनते हैं जागृति, साथ निभाइएगा, याद रखिए, खुश रहने के लिए
1: मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत
0: जो हमारे पास है जागृति कदर करना जरूरी है। और अभी के लिए चलिए देर ना करते हुए
2: जागृति प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: आप सभी के मध्य एक अद्भुत विषय को लेकर के उपस्थित
3: जागृति प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को
2: अपने सादर नमस्ते
3: देखा होगा।
2: मैं आचार्य मोहन आर्य श्रुति बंधु मॉरिशस
3: हमारे लोग मिलकर के देवी देवताओं का उत्सव
2: सभी के मध्य महापुरुषों के विषय को लेकर के उपस्थित हुआ।
3: हमारे उन दिव्य आत्माओं के उत्सव मनाते हैं,
2: चारों ओर
3: देवी शक्ति की उपासना
2: हमारी सनातन संस्कृति में,
3: ये बड़ा अद्भुत
2: हमारे लोग मिलकर के
3: देवी देवताओं का उत्सव मनाते हैं।
2: बंधुओं
3: महापुरुषों के उत्सव
2: उस देवी शक्ति की उपासना
3: हमारे उन दिव्य
2: जिस देवी शक्ति से
3: ये संसार
2: देवी शक्ति की उपासना
3: जिस देवी शक्ति से
2: ये बड़ा अद्भुत
3: जीवन
2: हमारे इस सनातन
3: देवी
2: शक्ति में
3: और
2: देखने को
3: नहीं
2: मिलता है।
3: वो परम पिता परमेश्वर है।
2: हम उस देवी शक्ति की उपासना
3: करें, हम जिन भी देवी देवताओं
2: जिस देवी शक्ति से
3: ये संसार,
2: या फिर हम जिन महापुरुषों के जन्मोत्सव या फिर
3: मनुष्य जीवन चल रहा है
2: उनके उत्सव
3: देवी शक्ति
2: और कोई नहीं,
3: हमें उनके जीवन से
2: कुछ ना कुछ
3: सीखना चाहिए
2: भी।
3: और यदि हम चाहते हैं
2: देवी देवताओं की
3: आगे चल करके ये समाज
2: या फिर हम
3: हमें
2: जिन महापुरुषों के जन्मोत्सव
3: या फिर आदर्श माने
2: उनके उत्सव
3: आदि
2: उन मर्यादाओं का पालन करना होगा,
3: उनके जीवन से
2: जिन मर्यादाओं को सीखना चाहिए
3: हमारे पूर्वजों।
2: और यदि हम चाहते हैं
3: जिन मर्यादाओं
2: आगे चल करके ये
3: हमारे महापुरुषों ने
2: जो देवता लोग
3: अपना बड़ा
2: उन्हें पालन
3: या हमें अपना
2: वो मर्यादाएं
3: हमें अपने
2: हमें
3: वेदों से
2: मर्यादाओं का
3: कौन सी मर्यादाओं का
2: हम जिन मर्यादाओं को
3: जब आप
2: हमारे
3: ऋग्वेद
2: की ओर बढ़ेंगे
3: जिन मर्यादाओं को
2: बड़ा अच्छा
3: हमारे महापुरुषों ने जो
2: मर्यादा
3: थे उन लोगों
2: कवयस तथक्षु
3: तासा मर्यादाएं
2: वेदों से
3: मिलेगी।
2: ये कौन सी मर्यादाओं
3: के जीवन में
2: यदि
3: सात मर्यादाओं का पालन
2: ऋग्वेद की ओर बढ़ेंगे
3: ऋग्वेद
2: में बड़ा अच्छा मंत्र आया
3: एक महान
2: व्यक्त मर्यादा
3: कवयस तथक्षु
2: समाज जासाम
3: एक सम्मान
2: पूरा समाज करेगा
3: कि मनुष्य के जीवन में
2: ईश्वर
3: सात मर्यादाओं का
2: जीवन में
3: सुख
2: तो वह शांति अद्भुत
3: व्यक्तित्व बनता है,
2: वह एक महान व्यक्तित्व
3: और मोक्ष रूपी
2: आनंद
3: के लिए
2: समाज जानेगा
3: सात प्रकार की
2: मर्यादाओं
3: पूरा समाज
2: यानी
3: सीमाओं को निर्धारित किया
2: सर्वशक्तिमान ईश्वर
3: मनुष्य जीवन में यदि जीवन में सुख
2: शांति
3: उस देवी शक्ति
2: को पहचानना है
3: उसका आनंद
2: और मोक्ष रूपी
3: आनंद के लिए
2: जीवन में
3: सात प्रकार की मर्यादाओं
2: का पालन
3: यानी सीमाओं को निर्धारित किया।

0: चर्चा में इंसान मनुष्य जीवन में यदि आपको ऊंचा बनना है सबसे पहले
1: देवी शक्ति को पहचानना है,
0: उसका आनंद प्राप्त
1: अपने जीवन में,
0: तो आप चोरी के जीवन में इन सात मर्यादा,
1: अगर आप
0: इस मर्यादा को अपने जीवन
1: चर्चा में इन सात मर्यादाओं को समझने का प्रयास करना की
0: और विशेष ध्यान ये रखना कहता
1: है
0: कि मालिक की दृष्टि से
1: बचा जीवन में उसकी वस्तु
0: चोरी कभी मत
1: अपने लिए उपकार करना,
0: अगर आप
1: उपयोग करना
0: इस मर्यादा को जीवन में
1: धारण करते हो
0: कि किसी व्यक्ति प्रतिशत
1: आप किसी
0: सामान को
1: और विशेष ध्यान ये रखना
0: अनुमति या उससे
1: मालिक की दृष्टि से बचाकर
0: उसकी वस्तु का
1: एक सामान्य चोरी
0: उपकार करना
1: परंतु
0: उपयोग करना
1: उसी साधारण चोरी
0: बलपूर्वक छीन लेना
1: किसी व्यक्ति की
0: ये लूट कहलाता
1: है। सामान को
0: और जो व्यापारी बिना
1: पूरे पैसे लेकर
0: छिपा करके
1: अपने लिए उसका
0: कम नापता है,
1: ये सामान्य चोरी माल
0: कहलाती है
1: के लेकर
0: परंतु
1: घटिया देता है,
0: उसी उपस्थिति में मिलावट करके बेचता है,
1: छीन लेना
0: पूरा वेतन लेकर
1: लूट
0: कम काम करता है,
1: जो
0: अधिकारी या नौकर
1: पूरे पैसे लेकर
0: रिश्वत आदि लेता है,
1: जो
0: आवश्यकता से अधिक
1: संग्रह पैसे
0: माल
1: वह लेकर
0: घटिया देता है,
1: वस्तुओं
0: में मिलावट करके
1: सब प्रकार की चोरी
0: पूरा वेतन लेकर
1: कम काम करता
0: से
1: है।
0: बचना ही
1: जो अधिकारी या नौकर
0: घूस
1: रिश्वत
0: समझने का प्रयास करो,
1: जो आवश्यकता से अधिक संग्रह करता
0: शारीरिक मानसिक चोरियों का त्याग
1: करें
0: और लुटेरे
1: की मर्यादाओं को
0: सब प्रकार की चोरी
1: करने का प्रयास करें।
0: लूट से बचना ही
1: बताई गई
0: कल्पारोहण
1: त्याग
0: समझने का प्रयास करो,
1: हमें
0: प्रत्येक प्रकार की
1: शारीरिक
0: मानसिक चोरियों
1: से हमें त्याग
0: हम करें
1: गलत लगेगी और
0: इस अस्तेय की मर्यादा
1: भी हमारे जीवन
0: की एक मर्यादा
1: का प्रयास करें
0: कि किसी
1: दूसरी मर्यादा बताई गई
0: भोग करना
1: तलपारोहण
0: कहलाता है
1: वो ये,
0: और
1: पर विशेष
0: समझना होगा
1: बात भले ही दर्शाते
0: हुए नीतिकारों
1: ने कहा लगेगी
0: कि इसका
1: दोष ये भी हमारे जीवन में
0: बड़ा भारी
1: होता है
0: कि किसी भी
1: पराई
0: स्त्री से भोग करना
1: तलपारोहण
0: कहलाता
1: है, शोक कुलक्षय
0: पर स्त्री
1: संपर्क
0: कहो मृत्यु
1: लब दर्शाते
0: हुए नीतिकारों ने कहा
1: कि इसका दोष
0: बड़ी मनुष्य
1: के जीवन में बड़ा
0: पर स्त्री से
1: सहवास नीतिकार
0: लिखते हैं बरने वाले को
1: धन
0: तलस्ताप
1: शोक में
0: पड़ना
1: धन का आयास
0: कलहो
1: मृत्यु
0: लभ्यते
1: पर दारकुलता
0: होना
1: कि कितनी बड़ी
0: कुल का नाश
1: होना
0: कि
1: पर स्त्री से
0: सहवास
1: कलह और करने वाले को
0: दो चार
1: कत्ल होना
0: पड़ता है,
1: केद में पड़ना,
0: धन का नाश
1: होना के रूप
0: में संताप
1: प्राप्त
0: होना से बचना
1: शोकाकुलता
0: होना
1: आवश्यक है,
0: कुल का नाश
1: होना ने भी लिखा कलह
0: और
1: मृत्यु से
0: दो चार
1: होना
0: अधार्मिकम
1: तरस्क्रम
0: पर
1: सारी चीजें
0: पर सेव चयो के रूप
1: में प्राप्त होती
0: है, शत्रु और उसके
1: सहायक से
0: बचना
1: और अधर्मी
0: चोर
1: तथा पराई
0: मनुष्य से
1: मित्रने भी लिखा
0: व्ययम
1: नौकर
0: से बेत
1: हमारे
0: सहायम चेर वाजना
1: आती चली जाएगी
0: अधार्मिकम
1: तरस्क्रम
0: पर मर्यादा का पालन
1: जब पर सेव चयो शितम
0: मैंने जो बताया
1: शत्रु और उसके
0: सहायक से
1: का नाश
0: और अधर्मी
1: चोर तथा
0: कुल का
1: मेल
0: न रखने का
1: प्रयास हम
0: करें
1: दुख ही दुख
0: हमारे जीवन
1: में अच्छी चीजें आती चली जाएगी।
0: तीसरी मर्यादा
1: बताई गई
0: इस मर्यादा का पालन
1: भी हमने बचने
0: का प्रयास करें,
1: मैंने जो बताया
0: घर गर्भपात
1: में से बचना
0: नाश होगा
1: संताप
0: का नाश होगा
1: अंडे
0: मांस
1: का नाश आदि का
0: थकान जीवन में आएगी
1: दुख ही दुख
0: खान पान
1: से
0: बचने
1: का प्रयास करें।
0: तीसरी मर्यादा बताई गई
1: भ्रूण
0: हत्या से भी हम बचने का प्रयास करें,
1: अर्थात
0: कवि ने
1: बड़े गर्भपात
0: से बचना
1: कि पेट
0: भर सकती है
1: अंडे
0: मांस सिर्फ
1: आदि का
0: खान पान
1: होता है
0: फिर ढूंढता
1: है खान पान
0: से जुबा
1: की बोटियां
0: करें, ये
1: हम जो
0: चीजें खाते हैं
1: ये भी
0: हमारा पेट
1: यदि
0: दो रोटियों से
1: भर सकता है, कवि ने
0: बड़े अच्छे शब्दों में लिखा
1: से भर सकता है
0: पेट भर सकती है
1: तेरा जब
0: सिर्फ दो रोटियां
1: ऐसा नाश
0: किस लिए फिर ढूंढता है तू बेजुबान की बोटियां।
1: मर्यादा बताई गई
0: समझने वो
1: बताई गई
0: मादक वस्तुओं का
1: हमारा पेट
0: यदि दो रोटियों से
1: भर सकता है
0: भोड़े
1: से
0: अन्न
1: से भर सकता है
0: तंबाकू
1: क्यों बीड़ी
0: सिगरेट
1: हम
0: आदि जो
1: बुद्धिनाशक वस्तुएं हैं
0: ऐसा
1: इनका त्याग
0: नशीली
1: मर्यादा का त्याग
0: ये बड़ा
1: हानिकारक मादक
0: वस्तुओं का
1: त्याग करना
0: क्योंकि नशीले
1: पदार्थों के सेवन
0: से बुद्धि
1: भांग
0: विचरस
1: होकर
0: चित्त में
1: भ्रांति
0: बीड़ी
1: सिगरेट
0: आदि के भ्रांति
1: होने पर मनुष्य
0: पाप करता है
1: इनका
0: त्याग
1: करके
0: नशीली वस्तुओं
1: का त्याग
0: ये बड़ा
1: हानिकारक मर्यादा
0: हमारे जीवन
1: जीवन
0: में धारण करें
1: क्योंकि नशीले पदार्थों की
0: मर्यादा बताई
1: गई दुष्कृत
0: कर्मों का
1: होकर
0: चित्त में भ्रांति
1: को फैलाती है
0: बुरे बुरे
1: भ्रांत
0: होने पर मनुष्य
1: बार बार जीवन में
0: आवृत्ति
1: नहीं
0: करे
1: करके उसे
0: दुर्गुणा कर्म
1: हो गया है
0: तो उसे
1: इस मर्यादा को
0: भी अपने जीवन में
1: धारण करें

0: लिखा है कि पांचवी मर्यादा बताई गई दुष्कृत
1: तुम्हारा भी भला होगा।
0: तुम्हारे कर्म का लेखा पुनः किसी दिन बुरे बुरे कर्मों को बार बार जीवन में आवृत्ति नहीं करें।
1: एक बार कोई बुरा कर्म हो गया है
0: तो उसे छोड़ने का प्रयास करें, से बचने का प्रयास करें कि भलाई कर चलो जग में
1: तुम्हारा भी भला होगा।
0: तुम्हारे कर्म का लेखा
1: भक्ति
0: किसी दिन बरमला होगा,
1: अर्थात किसी ईश्वर भक्त जीवन में करते चले।
0: सदाचारी
1: छठी मर्यादा बताई गई
0: न करना
1: ब्रह्म हत्या से
0: किसी भी प्रकार का कष्ट
1: अर्थात भक्ति का त्याग कभी न करें,
0: बचने का प्रयास करें।
1: तीन प्रकार की होती है
0: मर्यादा बताई गई अंत मर्यादा
1: प्रभु भक्ति
0: की, अर्थात किसी ईश्वर भक्त
1: कभी न छिपाए।
0: सदाचारी
1: विद्वान की हत्या न करना,
0: गलती से मनुष्य के जीवन में प्रकार का हो जाते
1: मत पहुंचाना,
0: लेकिन समझे इतना से भी बचने का प्रयास करके
1: पाप के
0: मर्यादा बताई गई
1: अंत मर्यादा
0: हम कभी भी
1: पाप छिपाए
0: उसे कभी ना छिपाए
1: तो उसे सबके सामने प्रकट करे सकता है।
0: क्षमा प्रार्थना
1: गलती
0: करें
1: से मनुष्य के जीवन में
0: पाप
1: हो जाते बचने का प्रयास
0: लेकिन समझे इतना
1: छिपाने से बढ़ता है
0: करके
1: और
0: पाप
1: के
0: करने से घटता है।
1: इसलिए हम
0: बुद्धिमान लोगों को छिपाए
1: ना
0: करके
1: कोई पाप हो गया है
0: चाहिए
1: तो उसे सबके सामने प्रकट करें।
0: मर्यादाओं का पालन मनुष्य करें
1: और आगे से उस पाप से बचने का
0: देवी शक्ति प्राप्त होती है।
1: छिपाने से बढ़ता है
0: का आनंद
1: प्रकट करने से घटता है
0: और जब देवी
1: इसलिए बुद्धिमान लोगों को
0: देवी शक्ति
1: हमारे हृदय में आ जाती है
0: तो यदि ये सात मर्यादाओं का पालन मनुष्य अपने
1: जीवन में करता है
0: तो उसे देवी शक्ति प्राप्त
1: होती है
0: और उस देवी शक्ति का आनंद प्राप्त
1: तो ब्रह्म
0: और जब देवी शक्ति
1: का आनंद
0: वो देवी शक्ति हमारे हृदय में आ जाती है
1: और देवी शक्ति
0: मनुष्य के जीवन में
1: आनंद की
0: आप सभी ने मुझे श्रवण किया
1: जीवन
0: आप सभी का
1: बहुत चलता चला जाता है
0: और उस देवी शक्ति
1: का आनंद
0: आपको ब्रह्म आनंद तक पहुंचाता है। तो इन मर्यादाओं को अपने जीवन में पालन करें और देवी शक्ति को पहचानने का प्रयास करें। आप सभी ने मुझे स्वागत

0: हरि ओम तत्सत् गिरिवररामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं दामिनी श्रीरामचन्द्रं श्री सीतारामचन्द्राय नमः श्रीराम जय जय जय गिरिवरराज की गुरुचरणकमले महेश मुखचन्द चक्रवर्ती जगदम्बिके जय गजबदन सदानन माता ओं नमो जगत जननी कृष्ण हरि नारायण गाता श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः 12 अक्टूबर दूताय नमः शारदीय नवरात्र गुरु चरण कमल भयो नमः विशेष कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से
1: ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण
0: आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मंडे नवरात्र का अनुष्ठान प्रारंभ हुए हैं। शारदीय नवरात्र के नवरात्र के दिनों में प्रसारित इस अनेक ऐसे कार्यक्रम में जो हम निभाते हिंदू महासभा की ओर
1: उनमें से एक है
0: बाबा जी भगवती की आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवती दुर्गा
1: नवरात्र का अनुष्ठान प्रारंभ हुए हैं
0: और इन नवरात्र के नाम
1: पूजन करें
0: अनेक ऐसे विधियां हैं अनेक विधियां दी गई हैं
1: और सब विधियां
0: उनमें से एक है भगवती की जैसे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने
1: अथवा
0: रामचरित
1: भगवती दुर्गा माता के
0: कलयुग केवल उच्चारण
1: नाम आधार
0: इनकी इस कलयुग में भगवान का नाम
1: लेना ही
0: अनेक विधियां दी गई
1: सबसे
0: सब विधियां की अपनी महिमा है।
1: इसी के चलते
0: इस नवरात्र गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरित दुर्गा जी की वर्णन किया है कलयुग केवल
1: माला
0: नाम आपके सामने रख रहा हूँ।
1: इस कलयुग में
0: भगवान का नाम लेना ही
1: जिसके अंतर्गत
0: ये सबसे
1: देवी के
0: 32 नाम
1: इसी के चलते
0: इस नवरात्र के दिनों में
1: और
0: मान्यता ऐसा है कि
1: दुर्गा जी की
0: नवरात्र के दिनों में यदि
1: नाम
0: मालाओं
1: का जाप कर
0: रख रहा हूँ
1: जो
0: इससे हमारा
1: सप्तशती में
0: आते हैं
1: लाभ होते हैं
0: जिसके अंतर्गत
1: दुर्गा सप्तशती में वर्णन होता है कि
0: एक समय
1: की ब्रह्मादि देवताओं ने
0: पुष्प
1: आदि
0: मान्यता ऐसा
1: सब उपचारों से
0: नवरात्रि के दिन
1: माँ दुर्गा
0: यदि हम
1: की
0: पूजाओं
1: का जाप करते हैं
0: इससे प्रसन्न होकर
1: हमारी
0: दुर्गति नाशिनी
1: माँ दुर्गा कहती है
0: दुर्गा सप्तशती में वर्णन होता है
1: तुम्हारे
0: एक समय से
1: ब्रह्मादि
0: देवताओं ने
1: हमारी जो इच्छा
0: आदि
1: मांगो
0: सब उपचारों से
1: तुम्हें
0: भगवती
1: वस्तु
0: माँ दुर्गा की
1: पूजा की
0: माँ दुर्गा की
1: इससे प्रसन्न
0: सुनकर
1: दुर्गति नाशिनी

0: कि हे माँ दुर्गा कहती
1: हमारे शत्रु
0: हे देवता
1: मई सासुर
0: मैं तुम्हारे पूजन
1: जो
0: से
1: तीनों लोगों के लिए
0: तुम्हारी जो इच्छा हो कष्टदायक थे
1: मैं तुम्हें
0: आपने
1: दुर्लभ वस्तु भी प्रदान
0: आपने उनका वध कर दिया।
1: माँ दुर्गा की
0: इससे संपूर्ण जगत
1: सुनकर स्वस्थ
0: बोलने लगे कि हे
1: निर्भय हो गए
0: हमारे शत्रु
1: आपकी कृपा से ही
0: हमें पुनः
1: जो तीनों लोगों के लिए
0: की प्राप्ति
1: बहुत
0: आप
1: कष्टदायक
0: के लिए कल्पवृक्ष
1: आपने उनका उद्धार किया आपने उनका वध कर दिया
0: हम आपके शरण में आए
1: इससे संपूर्ण जगत
0: हमारे मन में
1: जो कुछ
0: पाने की अभिलाषा शेष
1: आपकी कृपा से ही
0: हमें
1: सब
0: पुनः
1: अपने अपने पद की
0: इसे अब कुछ भी शेष नहीं है।
1: आप भक्तों के लिए
0: हमें
1: सब कुछ मिल गया
0: आप
1: तथापि
0: हम आपके शरण में आए
1: इसलिए जगत की रक्षा के लिए
0: हमारे मन में
1: जो
0: हम आपसे
1: पाने
0: की अभिलाषा
1: शेष
0: था
1: हे माहेश्वरी
0: पूर्ण
1: कौन सी ऐसे उपाय
0: इसे अब कुछ भी शेष नहीं
1: है आप शीघ्र
0: हमें
1: सब कुछ मिल गया
0: संकट में
1: तथापि
0: हुए
1: आपकी
0: आज्ञा है इसलिए
1: जगत की रक्षा के लिए
0: हम
1: आपसे कुछ
0: पूछना चाहते हैं।
1: तब
0: हे माहेश्वरी
1: माँ ने
0: कौन सी ऐसे उपाय
1: प्रकार
0: जिससे
1: आप शीघ्र
0: दुर्गा
1: माता
0: कहती है
1: संकट में पड़े हुए
0: जीवों
1: की
0: रक्षा करती
1: रहस्य
0: अत्यंत गोपनीय
1: बताने की
0: दुर्लभ है।
1: मेरे 32
0: भगवती
1: माँ
0: ने
1: माला
0: देवताओं ने
1: सब प्रकार
0: की
1: प्रार्थना
0: की
1: का
0: विनाश
1: दुर्गा माता कहती है
0: कि
1: हे
0: तीनों
1: लोकों
0: में
1: सुनो
0: इसके समान
1: यह
0: रहस्य
1: स्तुति
0: अत्यंत
1: गोपनीय
0: और
1: यह
0: दुर्लभ
1: रहस्य रूप है।
0: मेरे 32 नामों की माला
1: दुर्गा माता कहती है
0: कि जो
1: इन विनाश
0: नामों का
1: उच्चारण
0: तीनों लोकों
1: में
0: जो
1: कोई
0: समान
1: दूसरी
0: मनुष्य
1: कोई
0: स्तुति
1: दुर्गा जी
0: के
1: इस
0: नाम
1: माला का
0: रहस्य
1: रूप है
0: वह
1: निसंदेह
0: और
1: सब प्रकार
0: दुर्गा माता कहती
1: है
0: कि
1: जो
0: हो
1: इन
0: नामों का
1: उच्चारण
0: करता है
1: शत्रुओं
0: से पीड़ित
1: हो
0: मनुष्य
1: अथवा
0: दुर्गा जी
1: के
0: परे
1: हो
0: नाम माला का पाठ
1: करेगा
0: नामों के
1: वह
0: निसंदेह
1: मात्र
0: सब प्रकार
1: संकट
0: से
1: छुटकारा
0: मुक्त
1: हो जाएगा।
0: विपत्ति के समय
1: कोई
0: इसके समान
1: भय
0: नाशक
1: से
0: पीड़ित
1: हो
0: दूसरा नहीं है
1: अथवा
0: संकट में
1: कहती है
0: हो
1: इस
0: महामाला
1: का पाठ
0: करने वाले
1: मनुष्यों
0: की
1: कभी
0: कोई
1: हानि
0: नहीं
1: संकट
0: से
1: छुटकारा
0: अभक्त
1: नास्तिक
0: विपत्ति के समय
1: और
0: इसके समान
1: भय
0: नाशक का
1: उपाय
0: नहीं
1: देना
0: चाहिए।
1: माँ
0: दुर्गा
1: जो
0: कहती है
1: भारी
0: विपत्ति
1: नाम
0: माला का
1: पाठ
0: करने
1: वाले
0: मनुष्य
1: नाम
0: वाली
1: का
0: कोई
1: हजार
0: 10,000
1: अथवा
0: अभक्त
1: बार
0: नास्तिक
1: स्वयं करता
0: और
1: शत
0: या ब्राह्मणों से
1: कराता
0: है
1: इसका
0: उपदेश
1: नहीं
0: सब प्रकार
1: की
0: आपत्तियों से
1: जो
0: भारी
1: विपत्ति
0: में पड़ने
1: पर
0: भी सिद्ध
1: अग्नि
0: में
1: नाम
0: नामों
1: का
0: उच्चारण
1: करते
0: हुए
1: मधु
0: मिश्रित
1: अथवा
0: सफेद तिलों
1: से
0: पाहुति
1: स्वयं
0: करता
1: है
0: मनुष्य
1: या
0: ब्राह्मणों
1: से
0: कराता
1: है
0: छूट
1: वे
0: सब
1: प्रकार
0: की आपत्तियों
1: से
0: यह
1: नाम
0: माला
1: जो
0: है
1: इन
0: 32
1: सिद्ध
0: अग्नि
1: में
0: पूर्ण
1: नामों
0: का
1: उच्चारण
0: करते
1: हुए
0: मधु
1: मिश्रित
0: पूर्ण
1: संख्या
0: पानों
1: से
0: करने
1: के बाद
0: देने
1: मनुष्य
0: की
1: सब
0: मनोकामनाएं
1: पूर्ण
0: छूट
1: जाती
0: है
1: संपूर्ण
0: कार्य
1: सिद्ध
0: हो जाते हैं।
1: यह नाम
0: माला
1: जो है
0: इसलिए
1: दुर्गा
0: जी
1: कहते
0: हैं
1: वैसे
0: कि
1: मेरे
0: इन
1: पूर्ण
0: नामों
1: से
0: 30,000
1: यदि कोई
0: लाल
1: पूर्ण
0: कनेर
1: पाथूल
0: करने
1: के बाद
0: जाते
1: हुए
0: मनुष्य
1: 100
0: बार
1: सब
0: मनोकामनाएं
1: पूर्ण
0: हो उनके
1: समस्त
0: कार्य
1: सिद्ध
0: हो
1: जाते
0: हैं
1: वो नष्ट
0: हो जाते
1: हैं।
0: इसलिए
1: दुर्गा
0: जी कहते
1: हैं
0: कि
1: उत्तम
0: मेरे
1: इन
0: नामों
1: से
0: यदि
1: दुर्गा जी
0: को
1: लगाने
0: के पश्चात
1: कनेर के
0: नामों
1: का
0: उच्चारण
1: करते
0: हुए
1: तो
0: मनुष्य
1: 100
0: बार
1: कभी
0: पूजन करे
1: नहीं पर
0: उनके
1: समस्त
0: संक्षेप
1: पत्तियां
0: जो
1: है इन
0: नामों
1: का नष्ट
0: मैं
1: आपके
0: सामने
1: रखूं
0: भांति
1: भांति
0: के
1: नाम
0: जो दुर्गा जी
1: का
0: दिया
1: हुआ
0: है
1: यदि
0: दुर्गा जी
1: को लगाने
0: के पश्चात
1: इसका
0: पाठ
1: आप
0: नामों का
1: उच्चारण
0: करे
1: बहुत
0: ही
1: लाभ
0: तो मनुष्य
1: जो
0: है
1: पहला
0: नाम
1: दिया
0: गया है
1: दुर्गा
0: फिर आते
1: हैं संक्षेप
0: में
1: दुर्गति
0: नामों का
1: मैं
0: फिर आते
1: हैं
0: रखू
1: दुर्गा
0: 32
1: नाम
0: जो दुर्गा जी
1: का दिया
0: हुआ
1: है
0: दुर्ग
1: वह
0: मैं
1: आपके
0: सामने
1: रखूं
0: यदि
1: दुर्गा
0: साधिनी
1: सके
0: तो
1: दुर्गा
0: नाशिनी
1: लाभ होगा।
0: दुर्ग
1: पहला नाम
0: दिया
1: गया
0: है
1: दुर्गा
0: दुर्ग
1: निहरते
0: है
1: दुर्गति
0: नाशिनी
1: फिर
0: दुर्गा
1: ज्ञानता
0: दुर्ग
1: ऐसे
0: कधिनी
1: निवारण
0: 32
1: नाम
0: दुर्ग
1: इसका
0: वर्णन
1: होता है
0: दुर्गा
1: नाम
0: माला
1: जो
0: है
1: दुर्गा
0: नाशिनी
1: सप्तशती
0: में
1: आते
0: हैं दुर्ग
1: नहीं तो
0: फिर
1: आजकल
0: दुर्ग
1: निहरण
0: की
1: सुविधा
0: से
1: दुर्ग
0: महा
1: इन
0: द्वादश
1: ज्ञानता
0: इन
1: 32
0: करते
1: हुए
0: जो
1: नाम
0: माला
1: है
0: दुर्गा
1: जी
0: का इसका
1: वर्णन
0: इनका
1: खोज
0: करते
1: हुए
0: यह
1: नाम
0: माला जो
1: है
0: इनका
1: निरंतर
0: दुर्गा
1: सप्तशती
0: में
1: नवरात्रि
0: के दिनों
1: में
0: नहीं तो फिर
1: आजकल
0: आधुनिकीकरण
1: की
0: सुविधा
1: कोई भी
0: पूजा
1: विधि
0: कोई
1: भी
0: हम लोग
1: जो
0: द्वादश विधि
1: निभाते
0: हैं आप इन 32
1: नाम
0: वाली
1: बहुत
0: ही
1: जो
0: नाम माला
1: है
0: दुर्गा
1: जी
0: की महिमा
1: इनका
0: खोज
1: करते हुए,
0: लेकिन आप
1: विधियों का निरंतर
0: कभी कभी हम
1: नवरात्रि के
0: त्रुटियां हो जाती
1: आप अवश्य करें।
0: और
1: यद्यपि
0: हमारी
1: कोई भी पूजा विधि में
0: कोई भी हम लोग
1: विधि निभाते हैं
0: वह सब उससे
1: बहुत ही
0: श्रेष्ठ
1: बहुत ज्यादा।

0: सबकी महिमा है जैसे मैं कहूं,
1: परंतु जब हम देवी के नाम का जाप करते हैं
0: त्रुटियां
1: उसमें यद्यपि बस एक ही त्रुटि हो सकते हैं
0: पूजा पाठ में हमारे विधियों में कुछ त्रुटि,
1: परंतु यदि पूरे भक्ति के साथ ही किया जाए
0: बहुत ज्यादा
1: वह भी जो है
0: हमें लाभदायक,
1: परंतु जब हम
0: देवी के नाम का जाप करते हैं
1: देवी के नामों का
0: यद्यपि
1: पाठ
0: बस एक ही त्रुटि
1: हो सकती है
0: वह है
1: शुद्ध उच्चारण,
0: परंतु यदि
1: नामों से
0: भक्ति के साथ कर सकते हैं
1: 108 नामों का
0: वह भी जो है
1: हमें
0: हम देवी का
1: विशेष पूजा कर सकते हैं
0: इसलिए नवरात्र अनुष्ठान में
1: ये जो देवी के नामों का
0: दिया है
1: पाठ
0: यहाँ जो
1: बहुत ही
0: यह
1: इनका जाप करने से या फिर
0: 108
1: नामों से
0: इनका
1: पूजा
0: कर सकते हैं
1: 108 नामों का उच्चारण करते हुए
0: हम देवी की विशेष पूजा
1: कभी कभी देखा जाए,
0: परंतु
1: पूरा
0: 132
1: नाम
0: के लिए
1: दिया है
0: व्यस्तता
1: के कारण
0: कुछ
1: यह इनका जाप करने से
0: समय नहीं
1: रात्र के दिनों
0: इसलिए फिर
1: इनका
0: मुश्किल करने से,
1: परंतु यहाँ जो फल प्राप्त
0: नाम माला दिया
1: और कभी कभी
0: देखा जाए
1: तो पूरा 108
0: नाम
1: करने के लिए
0: कभी कभी
1: व्यस्तता
0: इसलिए जो नवरात्र
1: के अनुष्ठान
0: हम लोगों ने कल
1: समय नहीं
0: रहता
1: इसलिए
0: बढ़ रहे हैं
1: मुश्किल
0: आप इन नवरात्रि के दिन,
1: परंतु यहाँ जो
0: का जाप अवश्य
1: नाम माला दिया है
0: 32
1: नाम माला
0: का
1: अवश्य ही
0: पाठ
1: करें
0: वह
1: सबके लिए
0: खोज करके
1: आसान
0: हो प्राप्त
1: हो जाएगा
0: इसलिए
1: और जो
0: नवरात्र
1: के अनुष्ठान
0: हम लोगों ने
1: कल प्रारंभ
0: चले आज के कार्यक्रम
1: जो आगे बढ़ रहे
0: हैं आप इन नवरात्रि
1: के दिन
0: बहुत
1: धन्य
0: नामों का
1: जाप
0: अवश्य करें
1: सुंदरम
0: इस
1: ओम
0: नाम माला का
1: अवश्य ही पाठ करें
0: श्री सीतारामचंद्र
1: को खोज करके
0: आपको
1: प्राप्त
0: हो जाएगा
1: और इसको अपने अनुष्ठान में सम्मिलित करें चले आज की

0: पीछे बज रही है। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। शुक्रवार को गोली लगने से घायल हुई लोजी, तो मां की हालत अभी भी नाजुक बताई जाती है। उसके ऑपरेशन के लिए भारतीय डॉक्टर की टीम मार्च मार्चेस पहुंच रही है। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। देश में फैले तनाव के बीच प्रधानमंत्री लगने से घायल हुई लोजी, जनता से शांति बनाए रखने की मां की हालत अभी भी नाजुक बताई जाती है। उसके ऑपरेशन के लिए भारतीय डॉक्टर की टीम मार्च मार्चेस पहुंच रही है। पुलिस की तरफ से जारी संवेदनशील मामले से देश में फैली तनाव के बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जनता से शांति बनाए रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आक्रोश के कारण और कोई दुखद घटना पेश नहीं आनी चाहिए। करीब एक नौका की ओर जाने से कम पुलिस की तरफ से जारी कम्युनिके में सूचित किया गया है कि पुलिस और जनता को सहित तीन और अफसरों को नौकरी से इंटर। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। कौन गोली लगने से घायल हुई करीब एक नौका जाने उसके ऑपरेशन के लिए भारतीय डॉक्टरों की टीम मार्च मार्चेस पहुंच रही है। इस मामले में पुलिस की
1: नमस्कार में आपका स्वागत है। कौन में जा रहे हैं गोली लगने से संवेदनशील मामले से देश में फैले तनाव की हालत बताई जाती है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भारतीय डॉक्टरों की टीम शांति बनाए रखने की मांग की है। और इस मामले में पुलिस की स्तर पर अनुशासनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। संवेदनशील मामले से देश में फैले तनाव के बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जनता से शांति बनाए रखने की मांग की है। पुलिस अब जारी एक कम्युनिके ऐसे व्यक्ति की मदद न करने के लिए किया गया कि पुलिस के अनुसार इस मामले को पूरी गंभीरता से घटना के कानून का पालन करते हुए देखा जा रहा है। पुलिस की तरफ से जनता से मांग की जाती है कि सोशल मीडिया पर ऐसे व्यक्ति की मदद कोई भी जानकारी या तस्वीर साझा करते हुए जिसकी जान खतरे में थी, पुलिस के अनुसार इस मामले को पूरी गंभीरता से और आपको बता रहे थे लोजी तो मां की ऑपरेशन के लिए आज भारत जनता से मांग की जाती है कि सोशल मीडिया पर 13 स्वास्थ्य विशेषज्ञ जानकारी या तस्वीर साझा करते हुए इनमें 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 5 टेक्निकल एजेंट शामिल हैं। भारत के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए आज भारत के करीब के डॉक्टर 13 स्वास्थ्य विशेषज्ञों की

0: उधर एलओजी के पति का कहना है कि इस बेहद मुश्किल दौर के बावजूद वे
1: मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मेरा एक बच्चा है, इसलिए मुझे खुद अंदर से मजबूत रहना होगा, क्योंकि मुझे अपने परिवार का समर्थन करना होगा। एलओजी के लिए मुझे एक हौसला बनना होगा, जितना हो सके
2: मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हर संभव कोशिश करूंगा,
1: इसलिए मुझे खुद अगर ठीक से देखा जाए मजबूत रहना होगा,
2: सब
1: क्योंकि कठिन
2: मुझे अपने परिवार का समर्थन करना होगा।
1: मुझे उम्मीद है कि सब मुझे एक ही हौसला बनना होगा, क्योंकि जितना हो सके
2: इलाज को लेकर
1: अपनी पत्नी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर डॉक्टरों देखा जाए
2: आने की भी उम्मीद है,
1: एक कठिन स्थिति से
2: बहुत ही गुजर रही है।
1: सकारात्मक हूँ, मुझे उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनके इलाज को लेकर डॉक्टरों की एक टीम सब कुछ कर रही है,
2: विशेषज्ञ
1: डॉक्टरों के आने की भी उम्मीद है, इसलिए मैं बहुत ही
0: इस मामले से जुड़े पुलिस अफसर पर लगाए गए शुरुआती बदलाव की मांग कर रहे हैं। शनिवार को अदालत में टुमा परिवार का प्रतिनिधि किया जा रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल पीड़िता की सेहत उनकी प्राथमिकता है। हालांकि वे इस मामले से जुड़े पुलिस अफसर पर लगाए गए शुरुआती आरोप में इस बदलाव की मांग कर रहे हैं। शनिवार को वीकेंड कोर्ट बदला जाए पेश किए जाने पर बदला जाए। लवीना सोफी ने कल वकील असाथियों से बात की।
3: अभी के लिए स्थायी सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे मरीज की स्वास्थ्य स्थिति, उस पर कई टेस्ट किए जाने चाहिए, प्रार्थनाओं के साथ ड्रग्स के उनके ठीक होने की उम्मीद कैमरे पर भी देखना चाहिए। न्यायिक रूप से पिछले यही इंटरव्यू में भी है मैंने कहा था, इस पुलिस कर्मी इस इलाके के स्थायी कुल आरोप को लेकर कैमरे फिर से गौर करना चाहिए, इस इलाके के पुलिस ये जानना चाहिए, लगाए गए ड्रग्स के कैमरे को सीसीटीवी कैमरे पर भी देखना चाहिए। पिछले इंटरव्यू मामले में पारदर्शिता का होना बहुत ही आवश्यक है। के सरकार को तीन कैमरे पुलिस विभाग के अलावा इस इलाके के पुलिस स्टेशन में को लगाए गए की जांच कैमरे को भी देनी चाहिए, से जांच करनी चाहिए। इस मामले में पारदर्शिता
0: और देश में पानी की कमी के चलते पिछले हफ्ते से कई इलाकों में रात के समय विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। हालांकि सबसे दुखद घटना ये विशेष रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन आज माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना का विधान है। विद्या, तपस्या, संयम, वैराग्य और सदाचार का प्रतीक मानी जाती है। ये विशेष रिपोर्ट अभ्युदय के साथ।

0: चरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी दुर्गा का ये स्वरूप दुर्गा अनंत दूसरा स्वरूप है तथा अत्यंत कल्याणकारी तपस्या है और चारणी कथाओं के अनुसार चरण करने माँ पार्वती ने भगवान शिव ब्रह्मचारिणी के रूप में प्राप्त करने के लिए चरण कठोर तपस्या करने का देवी दुर्गा का ये स्वरूप था। अनंत फल देने वाला तथा अत्यंत कल्याणकारी का नाम ब्रह्मचारिणी। पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों वर्षों तक पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करते हुए घोर ऋण संकल्प लिया था, जिससे इस कथ का यह स्वरूप कारण असीम ही उनका नाम ब्रह्मचारी संकल्प और उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल भल माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप सेवन करते हुए निराहार और रहकर घोर तपस्या की, सफेद जिससे उनका यह स्वरूप और असीम धैर्य अटूट संकल्प और हाथ में जबकि माला और बाएं हाथ में कमंडल ब्रह्मचारी का स्वरूप अत्यंत शांत यह सादगी और त्याग इस बात का संकेत है कि परम सत्य की खोज में बाहरी और नंगे ही पैर बल्कि है आंतरिक उनके दाहिने हाथ में पूर्ण है जबकि माला नंगे पैर चल हाथ में कमंडल के सभी कष्ट होता है एवं कठिनाइयों को सादगी धैर्य पूर्वक सहने का संकेत है कि परम सत्य की खोज में निरंतर हरी भाव नहीं ध्यान का और कमंडल पवित्र तथा संयम का प्रतीक नंगे पैर चलना ब्रह्मचारी में की सभी कष्ट साधक को एवं कठिनाइयों को अचैर्य पूर्वक सहने और आत्म नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है। माला इन निरंतर से भक्त व्यक्ति ध्यान का कठिन और कमंडल का पवित्र तथा संयम और लक्ष्य है प्रति माँ पूर्ण ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक होती है मन की शांति का ये अचल निष्ठा और आत्म नियंत्रण की उच्च आध्यात्मिक है। इनकी कृपा से सिद्धि व्यक्ति के भीतर कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस और लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण है की भावना समाचार है। भाग की ओर से माँ का ये शारदीय नवरात्र सिखाता है मंगल की जीवन उच्च आध्यात्मिक ये त्याग संयम
1: माँ भगवती दुर्गा को शक्ति स्वरूप कहा जाता है। इन नवरात्रि के दिन
0: शारदीय नवरात्र की
1: उनकी विशेष आराधना की जाती है और इसके लिए कल कलश स्थापना माँ भगवती दुर्गा को शक्ति स्वरूप कहा जाता है। इन नवरात्रि के दिन
2: या सामर्थन नहीं है
1: ये उनकी विशेष आराधना की जाती है और
2: उसका संचालन इसके
1: लिए कल कलश स्थापना की गई।
2: इस दृष्टिकोण के अनुसार माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं दर्शन में बल्कि साहस अर्थ केवल शारीरिक बल या करुणा नहीं है और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करने की जिससे सृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है संचालन के और परिवर्तन विभिन्न शक्तियों और इस दृष्टिकोण के अनुसार माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं उनका विराजमान साहस निर्भयता सुरक्षा आत्मविश्वास और करुणा परिस्थितियों पर अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करता है। नवरात्रि से जुड़ी प्रमुख धार्मिक कथाओं के अनेक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध का विशेष है स्थान जबकि पौराणिक या बाघ के अनुसार महिषासुर के अत्याचारों से आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों पर विभिन्न देवताओं का संदेश लेता है। नवरात्रि से जुड़ी दुर्गा प्रमुख धार्मिक कथाओं में देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध का विशेष स्थान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर के अत्याचारों से देवता और समस्त लोग त्रस्त थे तब महिषासुर देवताओं की शक्तियों के एकत्र होने से देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ था।
3: जो हमारे राज्य का सबसे महाशंकर प्रादुर्भाव है समय उसको त्याग करके उल्लेख तब हुआ जब महिषासुर जैसे महान देवता का वध हुआ। महिषासुर को हम लेंगे कहा गया राक्षस के रूप में नहीं रूपम देही जयम देही जो हमारे अंदर क्रोध की माता अहंकार जयम देही मद मोह है विजय प्राप्त कराए मेरे अंदर जो शत्रु विजय पाप है जो दोष है उसको कहते हैं महिष के मैं विजय प्राप्त कर सकूं। जैसे दुर्गा विजय के बाद ही कहा गया राक्षस के रूप में ही रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशोजी की माता जयम देही मुझे विजय प्राप्त कराए मेरे अंदर जो शत्रु जो पाप है जो दोष है उसको मैं नाश करके मैं विजय प्राप्त विजय के बाद ही पवित्रता के बाद ही भक्ति और शक्ति है।
2: नौ देश के मंदिरों में माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों की एक विधिवत पूजा की जाएगी। भक्ति भाव से नौ दिन के व्रत रखने के लिए विसर्जन सिर्फ नमक खाना नहीं है वो नारी जाति की शक्ति है बनाने का एक माध्यम नवरात्रि
3: हम जो है संदेश पहुंचाता है कि
2: संयम बनाए रखने के लिए ये माताएं भी नमक खाना नहीं है वो
3: और हर स्त्री में है
2: आत्मसंयम बनाने का एक माध्यम है।
3: दुर्गा मां हम जो है करना चाहिए रोज का रूप जो हम
2: इस पर्व का

0: सूर्य संदेश ये है कि सृजन, संरक्षण और परिवर्तन की शक्ति जीवन का अभिन्न अंग है। देवी दुर्गा की आराधना के माध्यम से श्रद्धालु न केवल दैवीय आशीर्वाद की कामना करते हैं, बल्कि साहस, आत्मबल, न्याय इस पर्व का केंद्रीय संदेश ये है कि सृजन, अपनाने का संकल्प और परिवर्तन की शक्ति जीवन का अभिन्न अंग है।
1: ठीक 24 साल पहले

0: नहीं ला के में नीतियां लागू करने का
1: अधिकार
0: दिया।
1: 12 अक्टूबर 2002
0: को रोड्रिग्स को समारोह में शामिल होने के लिए गणराज्य के राष्ट्रपति हुए, जिसे गए हुए हैं अपने फैसले लेने
1: इस बात से खुश वाले अधिकारी चुनने और अपने इलाके में नीतियां लागू करने का अधिकार मिला।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पहचान और सीमा में शामिल होने के लिए राज्य के उपराष्ट्रपति डिजिटल भविष्य पर हो रही अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में शामिल होने वाला है। दुनिया है कि वह 15 देशों में से ग्लोबल डिजिटल कोलैबोरेशन काउंसिल की तरफ से
2: इंटेलिजेंस, डिजिटल पहचान और सीमा पर पेमेंट। ये निमंत्रण ऐसे समय में आया है जब मॉरिशस अपने डिजिटल परिवर्तन को गति देने का प्रयास कर रहा है।
0: भर के 15 देशों में से ग्लोबल डिजिटल कोलैबोरेशन इंटेलिजेंस पॉलिसी यानी कि नीति किया गया है,
2: जिससे पिछले अप्रैल ये निमंत्रण ऐसे समय में आया है जब मॉरिशस अपने डिजिटल परिवर्तन को गति देने का प्रयास कर रहा है तथा देश के पास निष्ठा पर आधारित राष्ट्रीय दिशा निर्देश इंटेलिजेंस पॉलिसी यानी कि नीति का उद्देश्य जिसे पिछले अप्रैल में शुरू किया गया था इंटेलिजेंस के साथ ही को निष्पक्ष बढ़ावा देना है, जवाबदेही बुनियादी स्तर पर ऐसे प्रयासों पर काम हो रहा है जिनका पर आधारित ऑफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जारी समाधानों को इसका उद्देश्य और लागू करने के लिए नियंत्रित कंपनियों और स्टार्टअप्स और सार्वजनिक को बढ़ावा देना है। एक साथ बुनियादी स्तर पर ऐसे प्रयास पर काम हो रहा है। ग्लोबल डिजिटल कोलैबोरेशन ऑफिशियल इंटेलिजेंस भागीदारी इन समाधानों को नया आयाम दे और लागू करने के लिए कंपनियों को स्टार्टअप्स और सार्वजनिक संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय एक साथ लाना है। साथ मिलकर साल 2027 में ग्लोबल डिजिटल कोलैबोरेशन काउंसिल और भागीदारी इन प्रयासों को एक नया पेमेंट आयाम होने वाली है। अंतरराष्ट्रीय मॉरिशस को योगदान देने की टेक्नोलॉजी कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर सम्मान ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नियमों इस अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सीमा पार भुगतानों यानी कि पेमेंट्स पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय मॉरिशस चर्चाओं में योगदान देने को मजबूत करना होगा और साथ ही आएगा स्थानीय पहचान और सम्मान से परे विशेष रूप से चुनौती अफ्रीकी बाजार में नई संभाव्य व्यावहारिक निर्माण ठोस परिणामों में बदलने की होगी।
0: जबकि दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस नौका में 305 लोग सवार थे। अंतरराष्ट्रीय करीब एक नौका की डूबने से कम 140 लोगों की मौत तक की पुष्टि हुई है, जिनमें 15 बच्चे शामिल हैं।
1: आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मास्कालिंस के दक्षिण पश्चिम से एक काफी जोरदार आंधी साइक्लोन हमारे इलाके की तरफ बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान सुबह और दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा।
0: आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत मास्कालिंस के दक्षिण पश्चिम से एक काफी जोरदार आंधी साइक्लोन हमारे इलाके की तरफ बढ़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान सुबह और दिन के दौरान पड़ेगा और रह रहकर बारिश ऊंचाइयों पर पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर
1: दक्षिण पूर्व से आ रहे बादलों का असर आज रात से
0: पश्चिमी समुद्र बढ़ेगा और रह रहकर
1: झोंके कुछ जगहों पर 50 डिग्री सेल्सियस
0: के बीच
1: के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 6:10 सूर्यास्त होगा। तापमान से प्रातः पर न्यूनतम 16 से 18 डिग्री सेल्सियस शहरी इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22 अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 5:48 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 6:10 पर सूर्यास्त होगा।
0: समाचारों के आखिर में सुर्खी एक बार फिर। कॉनवेयर में शुक्रवार को गोली लगने से घायल हुई लोजित तोमा की हालत अभी भी नाजुक। उसके ऑपरेशन के लिए भारतीय डॉक्टरों की एक टीम आज मॉरिशस पहुँच रही है।
1: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने जनता से शांति बनाए रखने की मांग की है और कहा है कि किया गया है। आक्रोश के कारण और देश दुखद घटना पेश नहीं आनी चाहिए।
0: उलट जाने से कम 140 पुलिस की तरफ से जारी एक कम्युनिकेट में सूचित किया गया है कि पुलिस सर्जन देश विदेश की खबरों के साथ ही अन्य अवसरों को नौकरी से इटली में किया गया है।
1: साथ रहे जुड़े रहे
0: अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जिबूची के तट के करीब एक नौका

0: देश विदेश की खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में यूसुफ हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए थोड़ी देर में शुभ समाचार। नंबर बांदे मोसनमा गुइसो देडेलिस विलनो मेबग में, नंबर 92 मोसेल मोशो देडेलिस विलनो मेबग में 80 साल की थी।
1: शुभ समाचार सुनिए।
0: श्रीमती देवंती कोकिल,
1: नंबर 92 मोसेल मोशो गुइसो
0: जो साबित नाम से जाना जाने जाती थी की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ थी आज दिन के 1 बजे के अर्थ देडेलिस विलनो मेबग में 80 साल की थी। मोसेल मोशो गुइसो देडेलिस विलनो मेबग के श्रीमती देवंती कोकिल के दाश नाम नंदू की श्मशान भूमि जो साबित नाम से जाना जाने जाती थी की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ थी आज दिन के 1 बजे के अर्थ देडेलिस मकान नंबर 92 की 82 गुइसो देडेलिस पत्र मेबग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तो वो मेबग की श्मशान निशान ले जाए जाएगी कर जो चुटिया नाम से जरा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं।
1: स्कूल लेन का होली में स्कूल लेन का होली में 82 साल लेन के 10 बजे की 82
0: इयर्स ओल्ड की मिसेस बदरो निशान मुदबकस की मुदबकस स्कूल लेन का होली में उठाकर पहले नमाज जो चुटिया नाम से जरा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। का जनाजा आज दिन के 10 बजे का जनाजा दिन के 10 बजे ओलिविया का कब्रिस्तान फिर नाम की मुदबकस के मकान काओलिन की 62 साल की 62 जाएगा फिर दफनाने के लिए थ्वाजिलो ओलिविया का
1: राजकुमार श्रीमती जानवीती एम
0: राजकुमार जो सुनीता नाम से ज्यादा जानी जाती थी बिसुंदी हो गई है थी आज दिन की 62 साल की 62 श्रीमती जानवीती प्रसाद प्रेमचंद के मकान मृत्यु हो गई है। की अर्थी आज दिन के 11:30 जो जैक्सन नाम से जरा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। की अर्थी आज दिन के 11:30 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे के मकान
1: श्रमे
0: भगवान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए जनाब सलाम एट हाफ पास्ट 11 एएम अब्दुल सतो जनाब अब्दुल सलाम श्रमे सतो जो अब्दुल सलाम से जरा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। का जनाजा 40 साल के 7:30 रोजिल से उठाकर जो बकर नाम से जरा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। कजनाजा
1: मिशन क्रॉस रोड लाल माटी में मिशन क्रॉस रोड
0: रात 7 बजे कजनाजा आज शाम 7 बजे के मकान नंबर 16 छेदी लेन जयराज सुखवारिया श्री जयराज सुखवारिया जो विवेक नाम से जरा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ ही
1: मिशन क्रॉस रोड लाल माटी में मिशन क्रॉस रोड लाल माटी में 64 साल के इनकी पत्नी श्रीमती कविता सुखवारिया के मकान जयराज सुखवारिया श्री जयराज सुखवारिया
0: जो विवेक नाम से ज्यादा जाने जाते थे इनकी श्मशान भूमि में जाई जाएगी। क्रिमेशन टू अर्थ ही आज दिन के 3 बजे इनकी अर्थ ही आज दिन के 3 बजे
1: शांति निकेतन रोड श्रीमती कविता सुखवारिया के मकान 64 साल की 64 के लिए
0: श्रीमती विद्वंती
1: रामदास
0: नाम राम बख्श जो रूपवंती नाम से शांति निकेतन रोड घोषणी शांति निकेतन रोड घोषणी 64 साल के 64 रोड

0: जो रूपवंती नाम से जाना जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई एम
1: की अर्थ थी। आज सुबह 9 बजे
0: के मकान शांति निकेतन रोड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उष्णो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। 84 साल की मिसेज सारा बीबी
1: नंबर 33
0: नाम सखाबत जो फरीदा नाम से ज्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 10 बजे
1: मकान
0: 34 जो फरीदा नाम से ज्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 10 बजे
1: 43 साल के मकान 33
0: जोसेफ गुबेस स्ट्रीट क्यूबेक स्ट्रीट मित्रानंद जॉनिस आज दिन के 10:30 बजे की अर्थी आज दिन के 10:30 बजे की दो बजे की पत्नी श्रीमती शोभा जो राजे नाम से जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। आज दिन के शोक में डूबे परिवारों
1: दो बजे की अर्थी आज दिन के 2 बजे की पत्नी श्रीमती शोभा रामा के मकान सीते सैतुबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खों बाकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे
2: 890 किलोहर्ट्ज
1: शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
2: स्पोर्ट्स न्यूज़ उतार गया मैनचेस्टर सिटी लिवरपूल को आईसी बेजालो फाइनेंशियल ब्रीचेस में नए मैनेजर अंग्रेजी के लिए दोषी पाया गया है। गले से फुटबॉल मैदान में से उतरने वाली नहीं बेचारे ये लिवरपूल के लालो पर उतार गया। लीग में अनफील्ड लिवरपूल की मैचों में इज्जती हुई लिवरपूल अनफील्ड रोड में नए मैनेजर अंग्रेजी के लिए तो पिछले 5 प्रीमियर लीग मैचों में से उतरने वाली नहीं है। ये उसकी पहली हार है पर प्रीमियर लीग में ही अंतिम बार रोड में 3 मैचों में आकर लिवरपूल ने भी लिवरपूल को जीत पाया है। पिछले सीजन फर्स्ट हाफ में दोनों टीम में बराबरी मैचों में 4 पर सेकंड हाफ में ब्रायन ग्रेवेनबर्ग के रेड सिटी बच के बाद एक नहीं लिवरपूल 3 बार बची अर्ली अंतिम रोड में आकर मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल बारी बारी जीरो से पिछड़ा फुट पर फर्स्ट मैच में दोनों टीम में बराबरी पर दिल की वर्डिक्ट सेकंड हाफ में ब्रायन ग्रेवेनबर्ग हारने आए के बाद लिवरपूल एक जनरेशन ऑफ सपोर्टिंग अलोन फॉर मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी की बारी बारी मैदान पर लिवरपूल के मैनचेस्टर अलेक्जेंडर इसाक ने गिल्ड को बचाया। लिवरपूल के फैंस हारने आए ही खेल पाए थे। एक जनरेशन ऑफ सपोर्टर्स लीडर पर मैनचेस्टर सिटी के सामने खिलाड़ी लिवरपूल का जवाब मैदान में देने आए थे। फ्लोरियन वुड्स के लिए अलेक्जेंडर इसाक फिर डोमिनिक सोबोस्लाई और कोडिगा को विन इंजरी के कारण से नहीं मैदान के बाहर मैनचेस्टर सिटी पर समस्या लीडर पर मैदान में सिटी के सामने खिलाड़ी लिवरपूल लाचार अलग कमजोर था। फिर फ्लोरियन वुड्स लीडर ब्रैडली बाकोला फिर से आना काम रहे लिवरपूल को इस सीजन विन पहली हार पहली बेस मैदान के बाहर मैनचेस्टर सिटी पर समस्या जाहिर मैनचेस्टर मैदान में फुल मार्क के खिलाड़ी 6 मैचों में 6 जीत अलग छोड़कर फिर से लीग लीडर वो भी अनफील्ड रोड में आर्सेनल 3 लिवरपूल 6 है जबकि लिवरपूल पहली हार आया है 9वें स्थान पे 9th पोजीशन आया उसके पास इस जीत के साथ है मैनचेस्टर के पास 18 मैचों में 15 जीत है ब्राइटन के रहा 13 मैक्सिमम 18 पॉइंट्स फिर आर्सेनल 3 और 6 है जबकि लिवरपूल 10 उतर आया है 9वें स्थान पे 9th position

0: उसके पास पास है नौ अंक सिटी के पास मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्सेनल 13 फिर एवर्टन और अन्य मैचों में क्रिस्टल पैलेस मैनचेस्टर यूनाइटेड आज 13 मैचों के बाद केवल 3 अंक खेले गए अन्य मैचों में क्रिस्टल पैलेस नॉटिंघम फॉरेस्ट अगर एक हल सिटी और यूनाइटेड मैच हो गया तो टॉप 4 में आ जाएंगे कोवेंट्री स्कॉटिश प्रीमियर यूनाइटेड का स्वागत करेगा कोवेंट्री पास 5 मैचों के बाद केवल 3 अंक की जीत हुई एक जीरो यूनाइटेड के पास है 8 अंक इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में साउथहैम्पटन यूनाइटेड की जीत हुई 0 टॉप 4 में आ जाएंगे रियल स्कॉटिश प्रीमियर में कल सेल्टिक ने एवजाकर मदरवेल को 2 सेल्टा वीग ड्रॉ सी जोन्स की रेसिंग सामने अबर्डीन के मैदान में इंग्लैंड के लीग जर्मनी के बुंदेसलीगा में एफसी कोल्ड 0 बोरुशिया मोनचेंग्लादबाख के लालीगा में रियल बेटिस और रियल शाल्के 0 जीत पाए एल्टलीग सेल्टा वीग ड्रॉ 0-0 रेसिंग सांतांडेर 2 मोनिलेंसिया 2 लेचे 1 जर्मनी के बुंदेसलीगा में सास्सुओलो 1 2 बोरुशिया मोनचेंग्लादबाख
1: Toujours pour couvrir ou individual income tax return 2026, connaît ou reste seulement 4 jours
0: d'aujourd'hui
1: par mois. À nos sites web de la MRE, www.mre.m.
2: MBC Radio, your music companion.
1: Si vous êtes toujours pour couvrir ou individual income tax return 2026, connaît ou reste seulement 4 jours d'aujourd'hui par mois. À travers nos sites web de la MRE, après que vous finissez de soumettre vos returns, ou qu'à part vos e-filings dans le Taxpayer Satisfaction Survey et remporte NDC23, prenez rendez-vous pour 25 000 rupees, un deuxième site de la MRE, et vous remplissez 10 000 rupees à travers WhatsApp. Remplissez vos returns après que vous finissez de soumettre vos returns, passez ce qu'à part vos e-filings dans le Taxpayer Satisfaction Survey et remportez pour NDC23, premier prix 25 000 rupees, deuxième prix 15 000 rupees, et troisième prix 10 000 rupees.

नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एनबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एनबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्र।

0: सुबह का नजराना रेडियो न्यूज़।
1: नमस्कार, सुप्रभात, एन श्रोताओं से रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मोशन के साथ, सभी का स्वागत है और उषा की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
2: नमस्कार, सुप्रभात, प्यारे श्रोताओ, इंडिया रेडियो पर आप सबका स्वागत है। और जुड़े हुए हैं रेडियो मोशन के साथ, पवित्र पर्व सभी हमें अच्छाई की जीत, सच्चाई की तरफ से नवरात्रि अंदर हार्दिक शुभकामनाएं। हौसले माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख शांति। तो आइए सुबह का नजराना लेकर आए के नाम और इस खूबसूरत पवित्र पर्व का स्वागत जो है हमें अच्छाई की जीत, सच्चाई और मधुर गीतों के साथ अपने अंदर आप सुन रहे हैं जहाँ हर सुबह आपके नाम हर गीत। तो आइए सुबह का नजराना प्रोग्राम आप लोग के नाम और शुरू करते हैं शांति सुबह का स्वागत करते हैं दोस्तों शांति अच्छे विचारों और मधुर गीतों के साथ। आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना जहाँ हर सुबह आपके नाम हर गीत आपके जज्बात के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं शांति सदाचार
3: और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
4: अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती।
3: सदाचार और
4: सोने के 100 टुकड़े कीजिए, फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती।
3: सुनते हैं आज का चिंतन।
4: भूल होना प्रकृति है, अच्छे लोगों की इज्जत संस्कृति है। कम नहीं होती और भूल को सोने के 100 टुकड़े कीजिए है, फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, भूल को मान लेना संस्कृति है और भूल को सुधार लेना प्रगति है।

0: वो 81 थी और जो आज है वो
1: 7:13 हुए हैं। अपने हर सुबह हमें एक नया मौका देती है बीते हुए बातों
0: और याद
1: रखिए अच्छे सुबह सिर्फ सूरज शुरू कीजिए। जो कल हुआ वो एक अच्छे विचारों से और जो आज है वो खूबसूरत गानों का सिलसिला हम जारी रखते हैं।
0: अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए और दिल में विश्वास और याद रखिए अच्छी सुबह सिर्फ सूरज निकलने से नहीं बल्कि हमारे अच्छे विचारों से भी होती है। तो चलिए खूबसूरत गानों का सिलसिला

0: फिल्म साथी से लिया गया। अभी हम एक और खूबसूरत गाने सुनने जा रहे हैं, रफी साहब की आवाज़ में। और रफी साहब के बारे में अगर प्यार हम बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि हर साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में फिल्म साथी से लिया गया। अभी हम एक और खूबसूरत गाना सुनने जा रहे हैं, तुम साथ नहीं देखा टाइटल सॉन्ग रफी साहब की आवाज़ में। बीते रफी साहब के बारे में अगर हम बात करें और उन्होंने ये कहा है कि हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, बीते हुए कल को अपने आज पर हावी मत होने दो। और वो भी कहते हैं,
1: और दोस्तों मोहम्मद रफी साहब के गीतों में
0: अपने बीते हुए कल दर्द प्यार और उम्मीद और जिंदगी से लड़ना है तो नफरत
1: जिंदगी में मुश्किलें आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे
0: हार मान लेना जरूरी नहीं। चलिए,
1: और दोस्तों मोहम्मद रफी साहब हमेशा नहीं रहता, लेकिन हौसला रखने वाले
0: दर्द प्यार और उम्मीद का एहसास कराते हैं।

सारे साथ बज चुके हैं। श्रोताओं दोस्तों, जब लता मंगेशकर जी आप सुन रहे हैं मधुर आवाज आशा जी और महेंद्र कपूर साहब जी का जिक्र होता है तो दिल पुरानी यादों में खो जाता है। लता जी के और यहाँ पर एक और गाना हम चलाएंगे वो दिल में याद करो, जहाँ दोस्तों जब लता मंगेशकर जी की मधुर आवाज और तलक में लेने वाली मखमली आवाज का जिक्र होता है तो दिल पुरानी यादों में हमें सिखाया कि लता जी के तो वो है जो सीधा दिल मोहब्बत और ममता का एहसास था और दिल को खुश की आवाज में दर्द और दिल को छू लेने यादों के साथ सुनते हैं। इन दोनों महान कलाकारों ने हमें सिखाया कि सच्चा तमाम लोगों के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम को खूब एंजॉय और दिल को खुश करने वाला है और आइए इन्हीं सुरीलिया यादों के साथ सुनते हैं एक सदाबहार गीत उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम को खूब एंजॉय कर रहे हैं।

कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्रि की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेष पाइस नवरात्रि, यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेष यू ऑल अ पाइस नवरात्र।

0: 7:42 हुई है दोस्तों। चलिए आपके लिए छोटी सी कहानी
1: और उसने आए हैं।
0: एक बार एक आदमी जिंदगी में बहुत से अच्छे काम किए, लेकिन एक दिन उसे एक छोटी सी गलती हो गई,
1: बस फिर किसी का
0: लोग उसके सारे अच्छे काम भूल गए और उसी
1: और एक गलती उसने अपनी
0: जिंदगी में बहुत से अच्छे काम किए,
1: लेकिन एक दिन उसे एक छोटी सी गलती हो गई
0: सामने,
1: बस फिर हो जाती है। लोग उसके सारे अच्छे काम भूल गए और उसी
0: एक गलती की चर्चा करने लगे। काम भूल जाकर
1: उस लेकिन एक गलती को याद रखती
0: उसने सोचा क्या इसीलिए दूसरों की गलतियों पर फैसला सुनाने
1: सामने बेकार हो जाती
0: है, अच्छाइयों को भी याद रखती है
1: दोस्तों जिंदगी,
0: क्योंकि हर इंसान से गलती होती है।
1: कभी कभी
0: किसी के 10 अच्छे काम भूल जाती सारी
1: अच्छाई,
0: लेकिन एक गलती को याद रखती
1: और याद रखें
0: इसीलिए दूसरों की गलतियों पर फैसला सुनाने लेकिन
1: उनकी अच्छाइयों को भी याद
0: और समझना,
1: क्योंकि हर इंसान से गलती होती है और किसी की एक गलती उसकी सारी अच्छाइयों को मिटाने ही देती।

0: उनको आके हमारा हमारिया हम है राजकुमार जाने वाले जरा
1: हमारे साथ समाचार के बाद हम फिर वापस आएंगे खूबसूरत बातों के साथ। तब तक माँ ब्रह्माचार्य जी हाँ दोस्तों थोड़ी देर में
2: आप सभी को
1: भोजपुरी समाचार और आप बने रहिए हमारे साथ। रहिए समाचार के बाद हम फिर वापस आएंगे अपनी पसंद के गीत और खूबसूरत बातों के साथ। तब तक माँ ब्रह्माचार्य आप सभी को धैर्य शक्ति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद।

0: भोजपुरी के समाचार
1: कवन घड़ी मिला रहा
0: से घायल हो एलोजी तोमा के हालत अभियो नाजुक बतावल जाता पर ऑपरेशन खातिर भारतीय डॉक्टर लोग की गोटी नार जयमर्श पहुंचता वही परी मामला में पुलिस के स्तर पर अनुशासनात्मक कदम उठाए जाता संवेदनशील मामला से देश में फैला एलोजी तोमा की हालत अभियो नाजुक बतावल जाता पर ऑपरेशन खातिर भारतीय डॉक्टर लोग की गोटी नार जयमर्श पहुंचता नार पर मामला में के कारण पुलिस के स्तर पर अनुशासनात्मक कदम उठाए जाता संवेदनशील मामला से देश में फैला तनाव के बीच लोग शामिल हवन जा भारत एलओजी तोमा के ऑपरेशन खातिर राज भारत प्राइवेट करीब 3 हॉस्पिटल स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोग की गोटी मर्शस पहुंचता एक टीम स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग पांच टेक्निकल लोग शामिल हवन जा भारत के सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में से एक विशेषज्ञ लोग की संघीय बैठक लगे डॉक्टर जेमी एलओजी तोमा की हालत की निगरानी में के योजना बनावल जा सके स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचुकाल विक्रम अस्पताल में स्थानीय के स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोग की संघीय बैठक लगे रथवन जेमी एलओजी तोमा की हालत की देवल जा सके यार इजट ऑपरेशन बावजूद के योजना बनावल जा सके स्वास्थ्य मंत्री बोलन की वकील रामावला देन आर असापी गोदाला तोंग के तोमा परिवार की प्रतिनिधित्व करथवन हर एलओजी के पति बोलन की फिलहाल मुश्किल दौर के बावजूद प्राथमिकता हिम्मत बना के रखथवन लोग ई मामला में से वकील रामावला देन आर असापी गोदाला के बदले तोमा परिवार की प्रतिनिधित्व करथवन हर के वीकेंड को में पेश बोलन की फिलहाल पीड़िता की सेशन लोग की प्राथमिकता हालांकि ई मामला में पुलिस अफसर कोशिश के आरोप में बदला जाए के दूसर का दिन आज बीच पुलिस कम्युनिकेशन सेल के अनुसार इमारत में शामिल पुलिस अफसर परिकरल गल आर्किटेक्ट नेगेटिव साबित हुई बात है वैराग्य अब गहन जांच करते ओकर ब्लड टेस्ट करल गल है ठीक 24 बड़ी नवरात्रि के दूसर का दिन अक्टूबर दुर्गा भगवती के ब्रह्मचारी स्वरूप के आराधना मिलन रहल विधान बाटे रीजनल असेंबली स्थापित हो संयम वैराग्य आर सदाचार के प्रति अपन फैसला लेवे वाला अधिकारी लोग के चुने के ठीक 24 बड़ी सकते 12 अक्टूबर 2024 वर्षगांठ समारोह में शामिल स्वायत्ता मिलन रहल राष्ट्रपति रीजनल असेंबली स्थापित हो गए दूसरा देश की खबर में जिबूती के तट अधिकारी लोग के चुने के आर अपन इलाका में ही लागू करे के अधिकार मिलल ये 24वां वर्षगांठ समारोह में शामिल होए खातिर करना जबकि उपराष्ट्रपति लेका लोग शामिल हुआ परी गजल हवन

0: दूसर देश की खबर में जिबूती के तट के करीब 305 गो उलट गल बाटे जेकर से 100 जे जिबूती से 39 ये मेना की मौत की पुष्टि होल बाय कर में 15 गोले का लोग शामिल हवन जा जबकि दर्जनों अभी हबियो लापता हवन जा इन नौका में 305 गो यमन जात रहलन जा तय रहल भोजपुरी के समाचार तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: News on MBC Play and MBC.MU.
0: Manuki khabar sunaja. Sitéologie, centre de Flakme. Sitéologie, centre de Flakme. Chiasat Bariski, 66 ans ke. Shrimati Subauti Jagiso. Shrimati Subauti Jagiso. Pedashi nam Manuki khabar sunaja. Mala nam se jasti jan jatralan. Sitéologie, centre de Flakme. Sitéologie, centre de Flakme. Aaj din ke 2 baje unkar ghar. Chiasat Bariski, 66 ans ke. Centre de Flakme. Shrimati Subauti Jagiso. Shrimati Subauti Jagiso. Pedashi nam si saran. Ji mala nam se jasti jan jatralan. Guzar gaye hawan unkar mati aaj din ke 2 baje. उनकर माटी आज दिन के दिन आज उनकर घरे सिटेओजी संदे फ्लैग से उठा के अंतिम संस्कार खाली रबो शंकेश मशान भूमि ले जाल जाए 82 बरिस की कथा है दो के जनाब हुसैन शाह चमरली जनाब हुसैन शाह चमरली
2: ओद ग्रेनाडिन जे बाय असेन जाली नाम से ओद ग्रेनाडिन सिटे जान जात्र
0: रोबेल ले मेयर में 82 बरिस की 92 में जनाब हुसैन शाह
2: का इंतकाल
0: हो गया था उनका जनाजा आज दिन की 2 बज के था उनका जनाजा आज दिन के 2 बज के था उनका बेटा जे बाय असेन जाली नाम रहमतुल्ला जस्ती जान जाली के घर रोबेल ले मेयर में पूर्व सिटे वॉचमैन रहा उठा के पहले नमाज इंतकाल हो गया था उनका जनाजा आज दिन के 2 बज के था उनका जनाजा आज दिन के 2 बज के था उनका बेटा जनाब रहमतुल्ला जाए फिर दफनाली के घरे पाए के कब्रस्तान गुट गनाजीन सिटे सैनवी पाए से उठा के पहले नमाज इंतकाल हो गया था उनका जनाजा आज दिन के 76 बरिस के 66 रेशी चिश्ती श्रीमती मस्जिद ले जाए फिर दफना खातिर पाए के कब्रस्तान बाबली कैंस्कोटों नंबर 2 वाक्वामी कैंस्कोटों नंबर 2 वाक्वामी जी मानुबाई नाम से जस्ती जान बरिस के 66 हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर खरे कैंस्कोटों वाक्वा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बाबली सुल्फेरिनो के शमशान नाम जान जाए जी मानुबाई नाम नंबर से जस्ती जान जात हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर खरे के श्रीमती दिवंती को वाक्वा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर राशि नाम नंदू सुल्फेरिनो के शमशान जान जात हवन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर खरे नंबर 92 में 80 बरिस के कथवन जाके श्रीमती दिवंती को किल वो से उठा के अंतिम संस्कार खाते राशि नाम नंदू जिस साबित नाम से जस्ती जान जा थरलन गुजर गल हवन उनका माटी आज दिन के 1 बजे उनका माटी आज दिन के 1 बजे उनका खरी नंबर 92
2: मिसेस बदुनिसान मोदाबकस विलो
0: माय वो से उठा के अंतिम संस्कार खाते तो नाम से जस्ती शमशान भूमि ले जा जान जा थरलन उनका अंतकाल हो गल बाटे उनका जनाजा आज 82 बरिस के कथवन जाके फजर के 10 बजे उनका बेटा जनाब शौकत है बदवनीसान मोदाबकस से उठा के पहली नमाज मोदाबकस काहोली के चोटी नाम से मस्जिद मस्जिद जहां जात रहलन उनका अंतकाल हो गल बाटे उनका जनाजा आज फजर के 10 बजे उनका जनाजा आज फजर के 10 बजे उनका बेटा जनाब शौकत है मोदाबकस के स्वसंदेश के काहोली से उठा के पहली नमाज जनाजा खातिर काहोली के राजकुमार श्रीमती मस्जिद तो हाली जा जा प्रदक्षिणा खातिर तना से जस्ती जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन की दया लीन औसनाल में 1 बजे उनका बासठ बरिस की संदेश जाके प्रेमंती करे बिसुन दया लीन बेटी औसनाल से उठा के श्रीमती जानवी की वामा शाकेश कुमार जी सुनीता नाम से जस्ती जान जा रहा है भगवान गुजर हवन उनकर माती गोपों में आज दिन की 1 बजे उनकर माती आज दिन की 1 बजे उनका राजा की श्री कुमार सादा प्रेमचंद की करे कुमार तो ताज जी जानवी नाम से जस्ती जान जा रहा है उठा के अंतिम संस्कार कर माती वामा शाकेश कुमार आज दिन की 11 बज के आधा उनकर माती आज दिन की 11 बज के आधा उनकर गोपों में श्री भगवान वीर गोपों में उठा के अंतिम संस्कार कर माती ताज जी जानवी कुमार तो ताज जी जैक्सन नाम से जस्ती
2: जस्ती जान जा रहा है

0: सारा बीबी जुमन मिसेस सारा बीबी जुमन पैदाशी नाम सखाबत जे फरीदा नाम से जैसे जान जाता रहा
1: नंबर 33 जोसेफ
0: उनकर जनाजा आज पजे के 10 84 बरिस की 10 बजन कर खरी नंबर 33 जोसेफ गिबे स्ट्रीट
1: सारा बीबी जुमन मिसेस सारा बीबी जुमन पैदाशी
0: नाम सखाबत जे फरीदा नाम से जैसे जान जाता रहा 45 बरिस की 10 बजन कर उनकर जनाजा आज पजे के 10 बजन कर जनाजा आज पजे के 10 बजन कर खरी नंबर 33 जैसे जान जाता रहा आज दिन के 2 बजे उनकर माती आज दिन के 2 बजे उनकर पत्नी श्रीमती शोभा रामा के घरे सीते सैंतो से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गाँव बाकी श्मशान भूमि ले जाल जाए शोक में डुबाड़ी सब परिवारों की संगी हमें की संवेदना
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर। यह नवरात्र मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफल।

नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एनबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एनबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

0: स्वागत है। जी हाँ, एक नए सप्ताह की शुरुआत के साथ हम लेकर आए हैं आपकी राशि के लिए कुछ खास बातें।
1: 8:22 हुए हैं श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
0: जी हाँ, एक नए सप्ताह की शुरुआत के साथ हम लेकर आए हैं आपकी राशि के लिए कुछ खास बातें। और 9 बजे तक ग्रहों के लिए चलिए सुनते हैं आपका सप्ताहिक राशि। मेहनत, अच्छे विचार और सही फैसले ही हमारे जीवन को बेहतर।
2: आपकी राशि रेडियो मिश
0: फैसले लेने से बचे, परिवार के साथ इस सप्ताह आप में नया जोश और उत्साह देखने को मिल सकता है। काम में धैर्य रखें और जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। वृषभ राशि के सप्ताह अपने लक्ष्य पर ध्यान देने का अवसर मिलेगा। रुके हुए नंबर है 9, लकी कलर प्रगति हो सकती है। रिश्तों में प्यार और समझदारी बनाए रखें। लकी नंबर है 6,
2: वृषभ राशि।
0: वृषभ राशि के सप्ताह अपने लक्ष्य पर ध्यान देने का है। रुके हुए कामों में
2: जेमिनी मिथुन राशि।
0: रिश्तों में मिथुन राशि वालों के लिए आपकी बातचीत और नए विचार लकी नंबर रहा 6, आपके लिए मददगार हो सकते हैं। किसी नए काम करने का अवसर मिल सकता है। अपने समय का सही इस्तेमाल करें। मिथुन राशि वालों के लिए आपकी बातचीत और नए विचार

0: कैंसर कर्क राशि
1: राशि वालों के लिए अपने समय का सही इस्तेमाल करें। लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा। किसी पुराने मित्र से बात करके खुशी मिल सकती है। अपने फैसलों पर
0: कैंसर कर्क राशि
1: कर्क राशि वालों के लिए अपने मन को शांत रखें और परिवार के साथ अच्छे पल बिताएं। किसी पुराने मित्र से बात करके खुशी मिल सकती है। अपने फैसलों पर सोच विचार करें। शुभ सिंह राशि यह सप्ताह अपने प्रतिभा कलर है और नए लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरणा दे सकता है। अपने साथ काम करने वालों की बात भी
0: सिंह राशि
1: आपकी ताकत बनेगी। लकी नंबर है 1। सिंह राशि यह सप्ताह अपनी प्रतिभा दिखाने और नए लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरणा दे सकता है। अपने साथ
0: वर्गो कन्या राशि
1: कन्या राशि अपने कामों को बनेगी। लकी नंबर है 1 से पूरा करने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों की चिंता करने के बजाय समाधान पर ध्यान दें।
0: वर्गो कन्या राशि
1: कन्या राशि अपने कामों को हरा रंग व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों की चिंता करें।
0: लिब्रा तुला राशि
1: रिश्तों में संतुलन और मधुरता बनाए रखने का समय है। 5 लकी कलर किसी जरूरी फैसले में सभी पहलुओं पर विचार करें। अपनी खुशी के लिए भी थोड़ा समय
0: लिब्रा तुला राशि
1: लकी नंबर है 6 रिश्तों में संतुलन और मधुरता बनाए रखने का सप्ताह है। किसी जरूरी फैसले में
0: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि
1: विचार करें। वृश्चिक राशि अपनी खुशी के लिए भी थोड़ा समय मजबूत रखें और हर लकी नंबर है 6 धैर्य से काम गुलाबी रंग किसी पुराने काम को पूरा करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। अपनी बातें
0: वृश्चिक राशि
1: लेकिन वृश्चिक राशि अपने इरादों को मजबूत रखें और हर परिस्थिति में धैर्य से काम लें। किसी पुराने काम को पूरा करने का अच्छा
0: धनु राशि
1: मिल सकता है। धनु राशि अपनी बातें नए विचार और नए अनुभव लेकर आ सकता है। अपने ज्ञान को बढ़ाने और कुछ नया सीखने की कोशिश करें। अपनी उम्मीदों के साथ मेहनत को
0: जारी
1: धनु राशि ये सप्ताह नए विचार और नए अनुभव लेकर आ सकता है। अपने ज्ञान को बढ़ाने और कुछ नया सीखने की कोशिश
0: करें।
1: मकर राशि साथ मकर राशि वालों के लिए काम और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का कलर है पीला रंग। धीरे धीरे की गई मेहनत आगे चलकर अच्छे परिणाम दे सकती है। अपने करीबी
0: कैप्रिकॉर्न मकर राशि
1: वक्त निकालें। मकर राशि वालों के लिए काम और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का समय है। धीरे धीरे की गई मेहनत आगे चलकर अच्छे परिणाम दे सकती है। अपने कुंभ राशि आपके लिए विचार आपको अलग नजरिया है। 8 लकी कलर है परिवार के साथ मिलकर काम करने से अच्छा अनुभव हो सकता है। किसी भी नए फैसले से पहले कुंभ राशि आपके लिए आपके नए विचार आपको अलग नजरिया दे सकते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर काम करने से अच्छा अनुभव हो सकता है। किसी भी नए फैसले से पहले और मीन राशि पूरी जानकारी ले। लकी नंबर है 4 रचनात्मक सोच और अच्छे विचारों को आगे बढ़ाएं। अपने रिश्तों में सच्चाई और भरोसे को महत्व दे। अपने सपनों को और मीन राशि वालों के छोटे कदम उठाएं। लकी नंबर है 7 रचनात्मक सोच और अच्छे विचारों को आगे बढ़ाएं। अपने रिश्तों में सच्चाई
0: ये थी आपकी राशि रेडियो मिश
1: प्यारे श्रोताओं
0: ये थी आपकी राशि रेडियो मिश्र।

0: वादों से नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों से मजबूत बनते हैं। एक प्यार भरा संदेश, एक सच्ची तारीफ, किसी की परेशानी को समझना और गलती पर माफी मांगना है।
1: ये सब रिश्ते वादे
0: बड़े वादों से नहीं
1: और हर छोटी छोटी बातों से ना
0: मजबूत बनते हैं।
1: जरूरी नहीं है
0: एक प्यार भरा संदेश, एक सच्ची तारीफ, परेशानी को
1: आज अपने किसी और खास रिश्ते में प्यार
0: करने
1: ये सब रिश्ते
0: और अगर माफी मांगना है
1: और हर बात पर जीतना
0: जरूरी नहीं है दोस्तों। कभी कभी अपने रिश्ते को जिताना ज्यादा जरूरी होता है।
1: अपने
0: किसी खास रिश्ते में प्यार की एक नई शुरुआत कीजिए और अगर माफी मांगना है तो
2: संडे का और तुम्हारा बाप को तुम्हारे सामने खड़ा है
3: ना जरूर फिर जाना उसे
2: ये फादर का बच्चा कौन है फादर का बच्चा नहीं सन फादर को बाप बोलते हैं और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

प्यार हो गया, प्यार हो गया, प्यार करें।

सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती खोप खोप के बोला।

Bye.

0: किसी उदास इंसान को
1: जी हाँ दोस्तों, मुस्कुराहट की कीमत क्या है? शायद पैसे इसे खुशी नहीं मापने जा सकती है। आपकी एक मुस्कुराहट किसी उदास इंसान को अपनापन और दे सकती है। समय आ गया है जान को इज्जत हमारी धरोहर से नमस्ते के साथ किसी की मदद करना।
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।
1: तो दोस्तों, सुबह करना जाना प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं और यहाँ पर समय आ गया है समय के लिए हमारी धरोहर की रहना।
0: हमारी घरों
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
0: हमारी धरोहर हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ।
1: हमारी धरोहर में आप सबको स्वागत है। आज 11 अक्टूबर के मनावे होला
0: हमारी धरोहर
1: की धरोहर हम ये कार्यक्रम हर बड़ी 11 अक्टूबर के दिन एगो विशेष
0: नमस्ते
1: दिन जाना।
0: हमारी धरोहर में आप सबको एक स्वागत बा।
1: और आज 11 के बीच अक्टूबर के मनावे होला असमानता बा अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस खातिर विचार हमारे कार्य चल रही हर बरिस और 11 अक्टूबर के दिन यूनाइटेड नेशंस विशेष दिन मनाला जाला। ई बात पर बहुत छोकरा और छोकरी लड़का के बीच जो फर्क बा और बेटी घर में असमानता बा उन लोग के बीच निपटे खातिर विचार विमर्श करा जाला कि चाहिए देखा थे जाकि यूनाइटेड हमेशा से एक पुरुष प्रधान समाज में रहले आले सा जोर देवेला और ये पुरुष प्रधान समाज में बेटी के और बेटी घर में बड़ा दर्जा देवल जात रहा दू न जाए। इतने देश में जब बेटी के जन्म होवेला कि चाहिए दूर करेगी एगो खुशहाली के हमेशा से एक पुरुष प्रधान समाज में ईमान रहले आले सा बदले पर और ये पुरुष प्रधान समाज में बेटी के करल जाता बहुत कम दर्जा देवल जात रहा के साथ इतने देश में जब बेटी के जन्म परिवार लोग बेटा और बेटी के बीच फर्क समाज में कि बेटी हमेशा आपकी बेटी रहेला और बेटी लोग भी आपकी बेटा तब तक बेटा रहेला जब तक कि आपके घर में एक बहू नहीं चलाए। वो चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में रही जिम्मेदारी निभावे के क्षेत्र में रही आज हमने के समाज में बढ़ाता भी बेटा के संभाले के और बेटी लोग भी अपन काबिलियत लोग समय के साथ भी दृष्टि से आज पीछे नहीं सामने प्रमाणित करत हवन जा। चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में रही जिम्मेदारी निभावे के क्षेत्र में रही या फिर कोनो भी ओहदा संभाले के बात करबा देश में बेटी लोग सबसे जस्ट दृष्टि से आज पीछे नहीं हवन। डिजिटल दुनिया से देखा गलबा कि छोकरा लोग सबसे जस्ट छोकरा और छोकरी के बीच दुनिया से दुनिया में इंटरनेट के इस्तेमाल के लेके ये देखा गया था कि ढेर देश में छोकरी लोग 2013 में जस्ती डिजिटल प्रतिशत डिजिटल दुनिया से अलग हवन सा कट ऑफ हवन सा 2000 और छोकरी के बीच जो फर्क बा दुनिया में इंटरनेट के इस्तेमाल के लेके जो समय के साथ और अब कमती हो होता भी देखा गया 2013 में छोकरी लोग के प्रतिशत रहा है देश में और मोबाइल फोन नहीं है उन लोग अपन भाई लोग के कंप्यूटर 2020 में मोबाइल फोन लेके इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये और बढ़ गया।

0: यूनाइटेड नेशंस और यूनिसेफ
1: और सब खाई भी देखा गया मापे पर काम कर रहा था
0: के
1: और ये भी देखा गया था
0: देश में कोनो कोनो
1: अपन मोबाइल फोन नहीं है
0: जहां पर अपन भाई लोग के
1: कंप्यूटर उन लोग के मोबाइल फोन लेके
0: इस्तेमाल कर लन जा
1: और यूनाइटेड नेशंस और यूनिसेफ के
0: सब देश से मांग कर जाता
1: के मापे पर काम कर रहा था
0: आप बेटी के भी देखा जाता
1: बराबर शिक्षित कर बनो देश
0: जैसे कि बेटा के शिक्षा पर छोकरी
1: के और पढ़ाई
0: जो अंतरराष्ट्रीय दिन मनावल जाता
1: और
0: एकर यही
1: विश्व भर के
0: मकसद
1: सब देश से मांग कर जाता है
0: काबिल बनावल जाए
1: कि आप बेटी के भी
0: लोग बराबर शिक्षित कर
1: सके जैसे कि
0: बेटा के शिक्षा देवल जाता
1: रिवॉल्यूशन
0: डिजिटल रिवॉल्यूशन
1: अंतरराष्ट्रीय दिन मनावल जाता
0: क्रांति चलता
1: ओकर में मकसद था
0: सही बेटी लोग
1: के इतना काबिल बनावल जाए
0: जहां पर
1: विश्व के
0: जो आधा
1: से जस्टिस संसाधन होके
0: ह्यूमन रिसोर्स
1: के जो छोकरी
0: रिवॉल्यूशन
1: डिजिटल रिवॉल्यूशन चलता
0: बेटी निवास
1: के सब क्रांति बहुत बहुत
0: शुभकामना ओकर में
1: धन्यवाद
0: नमस्ते
1: सही किया जाए
0: कि विश्व के जो आधा से जस्टिस संसाधन
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर
3: जय श्रोताओं माँ का प्यार और आशीर्वाद की सबसे अनमोल हम जगत जननी माँ दुर्गा की आराधना करते हैं जो शक्ति ममता और सहस का प्रतीक है। दोस्तों इसी के साथ सुबह का नवरात्रि
4: जय श्रोताओं माँ का प्यार और आशीर्वाद जीवन की सबसे अनमोल दौलत है
3: नवरात्रि में
4: बस हम जगत जननी माँ दुर्गा की आराधना करते हैं जो शक्ति ममता और सहस का प्रतीक है। दोस्तों इसी के साथ
3: चर्चा कार्यक्रम
4: नमस्कार।

0: सुनते देश विदेश की खबरें आपसे आती थी, मिलाते चलिए सुबह के 9 बजे।
1: श्रोताओं को भी नमस्कार। कॉल रिव्यू में शुक्रवार को गोली लगने से घायल हुई एलोजी, तो मां की हालत स्थिर लेकिन अभी भी नाजुक बताई जाती है। इस बात की पुष्टि डॉक्टर शैलेश चिनिया द्वारा किया गया है।
0: नमस्कार आपको।
1: उसके ऑपरेशन के लिए भारतीय डॉक्टरों की नमस्कार। कॉल रिव्यू में शुक्रवार को गोली लगने से घायल हुई
0: पुलिस के स्तर पर अनुशासन हालत स्थिर लेकिन अभी भी नाजुक बताई जाती है।
1: इस बात की पुष्टि डॉक्टर शैलेश प्रधानमंत्री चिनिया द्वारा किया गया है। उसके ऑपरेशन के लिए भारतीय डॉक्टरों की टीम आज मॉरिशस पहुंच रही है। क्या कोई इसके कारण में पुलिस के स्तर पर अनुशासन नहीं आनी चाहिए जा रहे हैं। इस संवेदनशील मामले से देश में फैले तनाव के बीच प्रधानमंत्री की स्थिरता नवीन रामबुला ने जनता से शांति बनाए रखने की मांग की। समस्त जनता स्थिति के आक्रोश के कारण बिगड़ने से रोकने
0: कोई दुख घटना पेश
1: नहीं आनी चाहिए। आगे कहा कि कॉल रिव्यू में प्रधानमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि हमारे देश की स्थिरता एक बहुमूल्य संपत्ति है और उन्हें उम्मीद है कि समस्त जनता स्थिति को और बिगड़ने से रोकने में सही योग करेगी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कॉल रिव्यू में जो हुआ वो अस्वीकार्य है। डॉक्टर नवीन रामबुला ने आगे कहा कि भारत से करीब कि पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए संयम और समझदारी में साथ से काम लेगी। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। भारत के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में से एक एलओजी के ऑपरेशन के लिए आज भारत से करीब निगरानी में ये टीम 13 स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम पहुंच रही है। इनसे पहले 7 स्वास्थ्य मंत्री अनिल विजने का विक्टोरिया एजल शामिल है। भारत के सबसे बड़े प्राइवेट विशेषज्ञों में से एक बैठक लगाई ताकि एलओजी की डॉक्टर जल्ला की निगरानी में ये टीम ऑपरेशन के लिए योजना बनाई जा सके। उनके आने से पहले स्वास्थ्य मंत्री रामाबाला प्रतिनिधि स्वास्थ्य विशेषज्ञ के साथ एलओजी तोमा की हालत बनाई जा सके
0: रूप में बदलाव की मांग कर रहे हैं।
1: वकील रामाबाला और असद में पेश अदालत में तोमा परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल पीड़िता की सेहत एंडेंजर लाइफ प्राथमिकता है लेकिन वे इस मामले से जुड़े पुलिस अफसर पर लगाए गए शुरुआती कम से कम आरोप में बदलाव की मांग कर रहे
0: शनिवार को वीकेंड कोर्ट में पेश किए जाने पर
1: जिबूजी के तट के करीब लोगों का फायरआर्म उलटकर होने से कम 140 लोग दर्ज किया गया था। दोनों वकील चाहते हैं बच्चे शामिल हैं जबकि दर्जनों लोग अभी भी कोशिश लापता बताए जा रहे हैं। बदला जाए
0: हमें 305 लोग सवार थे जो जीप के नौका
1: येमेन जा रहे थे।
0: उलटकर डूबने से कम से कम 140 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।
1: में 15 बच्चे शामिल हैं जबकि दर्जन लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस नौका में 305 लोग सवार थे जो जीप के येमेन जा रहे थे।

सबको की प्रणाम, नमस्ते। आज की चर्चा कार्यक्रम में स्वागत बाकी। जी हाँ, सबसे आगे आप सब लोगों के जय माता दी नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सब लोगों के स्वागत बाटे। लेंदी के दिन है और वो आज की प्रणाम, नमस्ते। आज की चर्चा कार्यक्रम में स्वागत।

0: जी हाँ, सबसे आगे आप सब लोगों की जय माता दी, नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। आज के चर्चा कार्यक्रम में आप सब लोगों के स्वागत बाते लेंदी के दिन है। नवा स्कीम्स के बारे में हमेशा खास मेहमान हवन जा जी आर रंजा तहमीज नवा नवा स्कीम्स के बारे में बतात रंजा और हम सब के लगा पर कारों में हवन 15-16 के मनावल जाला अपन गुजर के कारों में हवन काम करत हवन। प्रताप जी से आगे स्वागत बाते नमस्ते दनी से जो नवा स्कीम्स के बारे में हमेशा हबीब प्रताप जी आर
1: प्रेसिजन फार्मिंग से कुछ खोजन सब बोले के दो उदाहरण के साथ चालू का दिखाते हैं। ऐसे सिंचाई के लिए किसी स्प्रिंकलर आज जरा चालू हुई ना जब सिंचाई हुई ना धर चल ले जाए में हुई कितना पानी उसमें स्प्रिंकलर हो कितना पानी या फिर ड्रिप माटी में आवा था कितना माटी चालू कर दिखाते हैं माटी में रही के कम होता है ज्यादा होता है किसी स्प्रिंकलर आज जब चालू हुई तब पानी धराधर चल जाला तो आज बाहर में हुई तो हमें जाता कितना पानी सूर्य माटी में आवत बाते एवापोरेशन हो रहेला चाह माटी में रही कि कम होता ज्यादा होता लेकिन फिर भी उतना काबू ने बाते कितना ड्रिप के लिए लेब तो आज बाहर में हुई तो पानी में आज दिखब सता ड्रिप उता गंदा ऑटोमेटेड रहेला ते एवापोरेशन हो रहेला कर में एको ड्रिप जो बाते एफिशिएंट एको सिस्टम है लेकिन फिर भी तो कमें डाल डाल काबू ने बाते कितना चाहला के एक घंटा पर फिर अच्छी गाशो करे कि इडोपोनिक में आज दो मिनट तक उता गला ऑटोमेटेड रहे एक घंटा के बाद शुरू हो कि दो मिनट में फिर अच्छी गाशो करे कि एको चालू रहेला हर काम या करे रहेला तो कमें डाल डाल आधा चाहे लाखा एक घंटा पर जहाँ पर करे के इधर ओपनिंग बाते दो मिनट तक मॉरिशस में था रुक जाए के तब फिर से एक घंटा के बाद शुरू हो के दो मिनट तक वही हुआ चाचों करे के तैसे चालू रहे ला
2: कुंच बोलते हैं घंटा
1: या ये उदाहरण से एक घंटा आधा
2: आजे गनला
1: जिकर जिकर जहाँ पर इधर ओपनिंग बाते मॉरिशस बाहर में खेत बा माटी बा माटी में गनला सती सच जाने कि देखा माटी
2: यहाँ पर ही कुंच बोलते हैं
1: ये उदाहरण से
2: जितने कमी भर
1: आजे गनला
2: चिकमो हम लगे
1: ऐसे डिवाइस करे तब आके ये गाशों
2: वैसे बाहर में खेत बा माटी बा
1: या तो फिर
2: माटी में ज्यादा पानी रहता
1: सब तीसरे जाने में
2: नहीं हुई
1: कि दिखा माटी में लिमिट जितने के
2: पेशेंट फार्मिंग में सकब सा
1: ऐसे लिमिट जितने की कमी भर
2: यहाँ पर
1: जैसे कि
2: वाटर मॉइस्चर
1: डिक्लोसे करे
2: सेंसर
1: आके ये सेंसर
2: द्वारा हमने के पता चल जाला कि माटी में
1: या तो फिर
2: आज ज्यादा पानी रहता तब तक डिक्लोसे
1: हुए नहीं हुई
2: जिते गनला
1: फार्मिंग में सकब सा ऐसा ऐसा
2: नया बनाने
1: है जैसे कि
2: वाटर मॉइस्चर
1: प्रोब्स जारी खाते
2: सेंसर
1: तब जाके उस
2: सेंसर द्वारा हमसे
1: पता चल जाला कि माटी में
2: कर में सकब सा
1: सबसे निमन
2: एफिशिएंट
1: लिमिट जिते गनला
2: कैसे ट्रिप हो गए
1: कैसे एक दूसर में बातचीत करने से जो
2: हानिकारक हो जाए
1: सिस्टम में से वाटर
2: स्पीड हो जाए
1: हानिकारक हो जाए जारी खाते
2: डाल दे
1: तब जाके ये नया
2: शो आपने से देख लो
1: ये प्रेसिजन फार्मिंग कर
2: में सकब सा सबसे
1: एक दूसर
2: में मान देला
1: एफिशिएंट
2: कैसे हम
1: सिस्टम डाले कैसे ट्रिप बाते
2: कैसे एक
1: दूसर में बातचीत करने से जो
2: रुपाई के जाए
1: जो सिस्टम में से छिटा
2: स्पीड हो जाए
1: जियो में से ट्रांसफर हो जाए
2: सबसे कब से डाल दे
1: ते में नया
2: बीज के गनला
1: प्रेसिजन फार्मिंग
2: कभी
1: ट्री में डाल सब
2: एक दूसरा
1: उदाहरण देला
2: तो ऐसा के लिए
1: हम डाला तो जाता
2: एक दो को चल दला
1: जस्ट बीज
2: के
1: कोशिश तो होला कि
2: रुपाई के जाए
1: तब बीज के छिटप
2: से एक दूसरा एक आध गो ऐसा खेती रे आजन पहला जस्ट ये डाले के लेकिन
1: या तो
2: ज्यादा तक गन्ना
1: बीज के गन्ना
2: लेके ना
1: तब एकल में भी
2: ट्री में डाल सब
1: मशीनरी
2: तो ऐसा के लिए
1: जब डाला तो जाता
2: एक दो को चल दला जस्ट
1: कोशिश तो होला कि एक गो जाए
2: सोचा कि
1: एक आध गो ऐसा खेती रे आजन पहला जस्ट ये डाले के लेकिन
2: ज्यादा तक गन्ना
1: एक ऊपर डाले के ना
2: और
1: तब एकल में भी गन्ना
2: आज काल बाय
1: मशीनरी स्पेशल
2: ओकर में जो
1: बीज
2: बाय किसी खेत में हो
1: जब जब मशीन जब जाता
2: किसी तौर
1: सोचा कि ना तौर ट्रैक्टर जाता
2: एक ही डिस्टेंस में
1: पीछे में
2: गन्ना आज बा हर एक वो चीज सेंटीमीटर जुड़ल बाते और ऊपर में उन्हें एक वो बीज डाले के बुकाल बाते 30 सेंटीमीटर इशारे ऊपर में तो हर यूनिफॉर्मिटी रही तो जब मशीन जब जाता

0: रही 5 सेंटीमीटर पर गहराई भी
1: एक ही डिस्टेंस रही
0: लंबाई आज बिने रही
2: हर
0: गहराई में
1: सेंटीमीटर
0: स्पेसिंग पर
1: एक डिलीट डाले के
0: प्रेसिजन फार्मिंग
1: सेंटीमीटर ही में डाले
3: हां यूनिफॉर्मिटी
0: रही कहां 5 सेंटीमीटर रही कहां 5 सेंटीमीटर रही 5 सेंटीमीटर पर गहराई भी यूनिफॉर्म रही लंबाई बिने रही जी गहराई में हुई स्पेसिंग पर
2: एक डिलीट डाले के
0: प्रेसिजन फार्मिंग
2: सिस्टम है जन सब मैनुअल में चल रहा है
3: मिसेम प्रेसिजन फार्मिंग
2: ज्यादा मैकेनिज्ड वे रहा
0: ऑटोमेटेड रहा

0: तो वो शायद अपन देखे ला रंग
1: मॉरिशस में स्ट्रॉबेरीज के प्रोडक्शन हो ला
0: बाहर में भी हो ला
1: निकल के जा
0: ले हां स्ट्रॉबेरीज के ऊपर
1: हां करे खाते से निर्णय ले होता
0: तो वो चीज अब
1: रख दे ला तब से चल ले जा से
0: गुजर के देख ला
1: प्रकार से अनेक प्रकार के ऐसे
0: बनेंगे
1: तो वो शायद अपन
0: जन जन देखे ला
1: रंग वो चीज आशो बाते
0: हिन्ने होने तब हाथ
1: निकल के जा के घर ही से शुरू
0: तोड़ के हां अपने से निर्णय ले होता
1: तोड़
0: के तब रख दे ला तब से चल ले धूल आस पे करके
1: प्रकार से अनेक प्रकार के ऐसे
0: कुछ से लगे ला तब से वापस आवे
1: स्पीकर करते रहे
0: वो चीज आशो में बात
1: होगा मैं वो करे कि तो हर कमरा ही
0: देख बात हमने के घर ही से शुरू हो जाला
1: तो सब आजकल जो नो
0: ओकर ओकर
1: स्पीकर करे खाते हैं जो
0: धूल स्पीकर करते हैं
1: कि छोटा मोटा वो
0: टेक्नोलॉजी
1: के प्रवेशन
0: में लगे ला तभी से वापस आवे
1: ला जाता है चले
0: आओ तो एक्सपांड हो जाता
1: मैं वो करे
0: कृषि क्षेत्र में भी आता
1: अच्छा बात है क्योंकि
0: ऐसे ऐसे बोला
1: ऐसे सब
0: ऐसे कम करवा के कमी बात
1: है आज
0: हमने सरकार जैसे सन
1: हो वो चीज आशो
0: आने अपन
1: जो ने काम तो काम करते
0: टेक्नोलॉजी
1: के प्रवेशन में
0: कुछ खराबी
1: नहीं बात है
0: रुकले जाता
1: है चले आओ
0: हमने के अपन हो जाता है
1: कृषि क्षेत्र में भी आता
0: अच्छा बात है क्योंकि हमने संगे
2: ऐसे बोला
0: जुड़ल
2: हुआ हमने बात कर रहे
0: थे प्रेसिजन
2: फार्मिंग और AI ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम्स भाई हमने के बतावा ये जो नया स्कीम बाते उमे जो ना फाइनेंशियल
0: इंसेंटिव्स
2: हमने के अपन
0: से की दिया अच्छा बात
2: कैसे प्रोवाइड करेगा
0: हमने के
2: जितना जना भी जुड़ल हुआ हमने बात कर रहे
0: थे
2: प्रेसिजन फार्मिंग और AI ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम्स भाई हमने के बतावा ये जो नया स्कीम बाते उमे जो ना फाइनेंशियल इंसेंटिव्स
0: तनी
2: एक बार कैसे प्रोवाइड करेगा
0: हमने के जितना
1: फॉर्म बाते
0: सब नए लेकिन ज्यादा तक जितना स्कीम स्कीम बाते तब
1: आज 50%
0: हो जे रही फाइनेंसिंग
1: हुला
0: प्रेसिजन फार्मिंग
1: भी
0: या AI ड्रिवन
1: ऐसे ही फाइनेंसिंग
0: करन जात
1: तक और आज जो
0: हो जे हाई में
1: 2 मिलियन
0: प्लेटफॉर्म बाते
1: 50%
0: 2 मिलियन रुपीस
2: अच्छा
0: सहायता तो हर आज
1: और ये हुई ग्रांट हो जे रही
0: ग्रांट
1: प्रेसिजन फार्मिंग
0: पर लोन में नहीं दिया होता
1: AI ड्रिवन
0: और आज तो हर
1: प्रोडक्शन पर
0: गन आज तो हर पोजे
1: पोजे गन ल
0: 2 मिलियन जान
1: जान तो हर
0: 50%
1: यानी कि 1 मिलियन
0: के आधा हो
1: सहायता मिली दे
0: पैसा और ये हुई ग्रांट है
1: प्लेटफॉर्म
0: तो आधे मिलियन
1: ना कि ओके वापस
0: लोन में नहीं दिया होता
2: जी सहायता स्कीम में तो दूसरा स्कीम से कैसे different kaise alag
0: hai ocean la
1: hygiene
0: ba
1: precision farming ba te
0: ka tha ho
1: ya given ba de
0: point sai
1: yon link se fayda uthai ka
0: phone jab de million
1: kar ba website yani ki
0: details wagera ba te
2: hygiene scheme ba de
0: ocean scheme
2: kaise different kaise alag ba te
0: precision farming dwara
1: hai me
0: ya fir AI
1: farming ba te
0: aur to har
1: AI given ba te
0: to har scheme se fayda
1: uthai ka phone jab
0: de
1: transfer
0: ke ba website
1: projecti
0: details wagera ba te
1: kon kon gana
0: ocean me chala batai ke
1: kon
0: ne bola me kon
1: amil ba shwa
0: precision farming dwara
1: ya fir hamle
0: AI
1: dwara hamle washon ke
0: sath to har
1: tato har production
0: to har
1: aise ka
0: da to productivity
1: to firm ke
0: la firm ke productivity
1: me ye alag
0: kon kon ka da
1: precision farming aur AI
0: ta sudharne
1: mein hamle kon
0: amle alag ke
1: lekin nahi mil sak
0: to ra chala bole ke bhi
1: kai hamle
0: ai hamle washon ke
1: sath
0: tato har production
1: ta kare
2: ji
0: kaise
1: ka da alag scheme dekh
0: ba ta aise nahi baate
1: kaise hamne ke go
0: ba ye se alag
1: baate
0: hai
1: precision farming aur AI
0: ta no
1: baate
0: alag ke lekin nahi mil sak
1: lekin to ra chala bole ke bhi
0: krishi se
1: jural
0: kon naya banana to
1: tila ba
0: kaise to chala
1: wala
0: irrigation ke
1: alag scheme dekh ba ta
0: aise nahi baate
1: kaise hamne ke go ba
0: ab sab
1: che sab ekar ganda
0: jo mein
1: kono ho raha hai
0: jo 50,000
1: lekin ba baate
0: ऐसे
1: प्रेसिजन फार्मिंग के जो
0: ऐसे
1: इक्विपमेंट चला
0: बा
1: चला हुआ
0: तो का इरिगेशन
1: के जो इक्विपमेंट बात
0: चला हुआ
2: साथ दिया जा एक छोटा सा मिस ब्रेक के बाद
0: एक एक गन्ना जो प्लेटफार्म रहल
3: 250,000
0: अब हनी प्रेसिजन फार्मिंग के जो इक्विपमेंट
3: महंगा
0: रहला तो का एक प्लेटफार्म 2 मिलियन
3: कृष्णा के सो
2: साथ दिया जा एक छोटा सा मिस ब्रेक के बाद

0: धन्यवाद आज की चर्चा कार्यक्रम संगे जुड़ल हो। आज हमने बताया था इस प्रेसिजन फार्मिंग और रू AI ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम। तो भाई शंभू हमने के मेहमान हो जा और फाकुदानी से एगो स्वीवी होला। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा कार्यक्रम संगे जुड़ल हो। आज हमने बताया था इस प्रेसिजन फार्मिंग और रू AI ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम। तो भाई शंभू हमने के मेहमान हो जा और फाकुदानी से एगो स्वीवी होला।
1: ठीक समय पर एप्लीमेंट हो जन विषय के पर रेजो जन ग्रांट बाइक में वो हां वो श्री करी ठीक समय देखी कि मौते होता जन स्कीम के और वो चीज का मैं बोल दिला कैसे उगना चाहिए ऑटोमेटिक जो वो बजी जा सको बात आता नहीं जाए तो कल में और वो चीज एप्लीमेंट हो बा नए बोले के जन ग्रांट बाइक के एक टाइप के जब ऑटोमेटिक जा सको मौते होता सकेला और वो चीज का मैं बोल दिला उस समय तो रहना चाहिए ऑटोमेटिक जो वो बजी जा सको बात एक्टिविटी वा होता में और वो चीज अच्छा बाहर पे बोले के कि कंप्यूटर बाद में या मोबाइल जब ऑटोमेटिक जा सको तो रहना चाहिए सकेला कि सकेला समय तो रहना चाहिए बोला था देखा हाई जगह पर मचा के जहां पर वो हाई सेंसिटिविटी वा होता तो खाली सकेला घर पे हो अगर काम हो जाता है बच्चा दूर ही से या तो मोबाइल फोन एक तरह बोला सा वर्क फ्रॉम होम ना एक आदमी होता कुछ मात्रा तक ना तो रहना सकेला ये आए द्वारा तो बोला था देखा हाई सिचुएशन मचा ने ले लेके वो हाई सेंसिटिविटी डिस्टेंस आ दिखाई बोलता।
0: अच्छा हमने बात कर रहे थे जा ई जस्ट की मोआ बातें हर बारी समझी जानी ला जा जो आम बातें लोगान हबी लीची सब कुछ लाल बातें भरल बातें तय को स्कीम बातें प्लान असिस्टेंस फाइनेंशियल पुल प्रोटेक्शन दे फ्री पुल सीजन 26-27 यानी एकर बारे में बताओ। अच्छा हमने बात कर रहे थे जा ई जस्ट की मोआ बातें हर बारी समझी जानी ला जा जो आम बातें लोगान हबी लीची सब कुछ लाल बातें भरल बातें तय को स्कीम बातें प्लान असिस्टेंस फाइनेंशियल पुल प्रोटेक्शन दे फ्री पुल सीजन 26-27 यानी एकर बारे में बताओ।
1: अभी जैसे सबको जानते हैं ये स्कीम का हर साल चालू है और ऐसा नहीं चालू हो समय में आवेला पहला मौसम रहेला गन्ना और जारी रही 6 नवंबर तक लेक्सी के
0: यानी कि अभी शुरू हो गलबा 1 अक्टूबर से 6 नवंबर ले हां
1: जी गन्ना अभी आज से गन्ना 1 महीना तक और स्कीम चालू हो गलबा जितना चालू हो गलबा गन्ना पहला अक्टूबर से के और जारी रही 6 नवंबर ये जब
0: यानी कि अभी शुरू हो गलबा 1 अक्टूबर से 6 नवंबर ले
1: हां जी नवंबर ले नवंबर अभी आज से गन्ना 1 महीना तक और बातें ओकर बाद
0: खाली खेती हर लोग जेकर लगे कंप्लोते बाते उ लोग खातिर उ एप्लीमेंट होई जे एगो आम जनता उ ओकर मन बा
1: रेजिडेंशियल द्वारा अप्लाई करता तो उगनला ओकर एलिजिबिलिटी रही खाली से बोला मैक्सिमम 5 को जिले के खाता वो यानी कि 5 को में है को पेर का ओके आज तो लगे साथ में बची बंदा इसकी 5 को पांच के को वे करी इसकी दोनों के लेकिन दोनों के अगर वीएजे वो एप्लीकेशन थोड़ा अलग बात है वो भी इसकी में है को वे बातें जो घर के पास जो घर लगे गन्ना और पीछे खाते गन्ना वो उदाहरण नहीं लगता गन्ने तो गन्ना तो लगे दो आम के पेड़ बातें दोनों के लेकिन दोनों के ऊपर आगे बात कर रहे वो एप्लीकेशन थोड़ा अलग बदल सके घर लगे गन्ना तो लगे दो के एक वो यूटिलिटी बिल बचा के बाद

0: tawi lah dulu sange Jim Carter sange
1: John Kennan
0: tu je ba aplikasyon kali tu tu hara cha hai la tu ki tu residence
2: la ne ba
0: tu hara cha la
1: same to same
0: I ba tawi la ki tu hara
2: identité le ki jaike
0: e ko du ko le ki bill tu hara cha wi la ki John
1: am ki daftar
0: John Kennan
1: ko identité sange
0: pareil ba
1: tu apri je ba
0: alag ne ba te
2: ta
0: same to same aplikasyon
1: I ba tawi la ki tu hara
2: l'adresse
0: ba le ko utilité
1: hai du ko le ki
0: ab aje
1: tu hara go viaje hoi
0: हमने कि डॉक्टर
1: उकाटेन द्वारा
0: पाई करीब एकर साथ करीब
1: की होई
0: जोरा एगो तो फोटो को भी टाइटल दे भी लेके जाए
1: तो
0: हुआ परी तो
1: ओकरा चाहा लेके जाए के
0: फोटो कॉपी कर
1: और
0: यूटिलिटी बिल
2: जी
0: कहां जाए के
1: आदि
0: तोरे को वे आजे होई
1: रीजन के कुवे करे
0: तो उकाटेन द्वारा पाई
1: एकर साथ हिला
0: जोरा
1: तो फोटो कॉपी टाइटल दे
0: भी लेके जाए के
2: अच्छा
0: तो दफ्तर
1: में हुआ पर
2: जी
0: तो हुआ परी जाए
1: और
0: अब आजे प्लान मान्यो
1: बगा कहां जाए के चाहला
0: जो दफ्तर
1: तोर रीजन
0: के वे कर दफ्तर
1: बाते
0: अब गनला तू रहेला
1: आजे शामुनी
0: बगा
1: ला
0: रीजन से बाते
1: हिया दफ्तर
0: में हुआ परी है
1: जाम बुकाई ला
0: का में से
2: पिए
0: जी इस में होता प्लान मान्यो बगा रहा
1: नोफ में होता
0: मामाम ने के
1: अब गनला
0: एगो दफ्तर
1: बाते तू रहेला
0: मुका में
1: आजे
0: शामुनी
1: तोहर तू एगो किसान हो
0: तो वे
1: आजे बाते
2: किया
0: अभी जहाँ पर है जहाँ
1: मुकाई ला
0: और में दस है
1: पिया
0: ईस्ट में हुआ था
1: फ्लैक
0: नो
1: फ्लैक में हुआ था मापो
0: तो रहा चला मापो की
1: दस है
2: जहाँ हो वे आजे वहाँ हो जा
0: जहाँ वे आजे वहाँ बा
1: ओकर इलाके
0: तोहर
1: तू एगो किसान हो
0: तोहर वे आजे
2: उजन इलाका में भीली बाते हो
0: जा नो चला जाए
1: गनला असिनाल में तोहर वे आजे बाते
0: एकरी लावा
1: आजे गन्ना
0: कोनों तो
1: फिजोर है
0: कुछ नहीं समझा तो
2: जहाँ हाँ वे अजी वहाँ हो जा
0: जहाँ वे अजी वहाँ हुई
1: तो
0: ओकर जो जो
1: दफ्तर
0: या नाम के
1: दफ्तर में चला
0: जाए कि वहाँ
2: बजा उज्जैन इलाका में भीड़ बातें हो चुकी
0: हैं वहाँ चला जाए
2: कहाँ जी
0: अपन जितना है ज्यादा जानकारी के काम
1: एकरी लावा आजे गन्ना
2: कोनों भाई सबू अभी जो जाली की बात कर रहे थे वो हमने जानी ला जा
0: हर
2: दू बरिस के जे धरला कल हला हमके मिलल रहल कल बरिस हमके मिलल रहल तब परिस परे करे के दू बरिस तब हमके मिली
0: अपन जितना है ज्यादा जानकारी
1: इस स्कीम में ना
0: आज एक
1: कल बरिस
2: भाई सबू अभी जन जाली की बात कर रहे थे वो हमने जानी ला जा हर दू बरिस के जे धरला कल हला हमके मिल रहल कल बरिस हमके मिल रहल तब परिस परे करे के दू बरिस तब हमके मिली
1: और एक चीज बाकी इस स्कीम में ना आज एक कल बरिस तरह मिल रहल
0: तो काहे के
1: जो चाहे जाने के कि जब
0: हमने
1: 2 साल के बाद
0: फिर से सरकार
1: गले को ग्रांट दिया
0: था
1: तो रहा है इस स्कीम जब
0: से
1: तगना फिलियो के जगह अच्छा से प्रयोग
0: और एक चीज बाकी
1: अच्छा से दलबा
0: तगना फिलियो टूटी नहीं
1: ये काहे कर ला जा
0: रही है
1: ना वही सब
0: जब फिर से प्रयोग कर
1: लिया
0: जाए जब
1: सरकार गन्ना
0: एको घाट दे होता लेकिन
1: ये भी आवश्यक बचाने खातिर
0: ना तो
1: कि
0: तगना फिलियो के चला
1: अच्छा से प्रयोग करके
0: निमन से
1: प्रयोग करा
0: अच्छा से दलबा
1: तगना फिलियो
0: फिले की ने
1: के यानी कि
0: फिलियो
1: रहना
0: ना
1: वही सब तो
0: फिर से प्रयोग कर
2: लिया जाए
0: जब जो साले के जब
1: जाए खुलबा
0: लेकिन ये भी आवश्यक
2: बचाने
0: तक टूट
1: कि
0: जब फिले
1: किन ब
0: तो चला जाने के
1: ये संकेत करेला
0: solidité
1: qu'est-ce qu'il est
0: quand il
1: est là mais
0: ou quand la solide ba
1: dans la
0: nei
1: khali le ke jab
0: jab ba
1: ta
0: au
2: jan
0: khali
1: ba bicha ta
0: jan ko bhi
1: bicha ta
0: ta jab jab
1: ba in
0: jali ki
1: sanket
0: kare la
1: कौन कामास
0: सुलिजिते
1: कौन चीज
0: संकेत होला बोला पर
1: कामास पर
2: अच्छा
0: कामास
1: के लिए बैंक
0: से काम की बोला रही
1: आज जे बट
0: सकेला जाय
1: जन
0: डिटायो बेचाता जन कंपनी बेचाता तो जब जे
1: बैंक से
0: चाली किने
1: गना चल
0: गयो छो
1: रेंज बा
0: कौन कामास बाते
1: जितना
0: आज तोरा बोली
1: जितना गना बड़ा
0: कामास
1: कामास के लगन
0: बैंक से काम
1: की बोला रही
0: अब तोरा गना किने के ला
1: जाय
0: सब ऑप्शन बाते
1: 25 ग्राम के बाद 35 ग्राम के बाद 35
0: ग्राम
1: के बाद चल गए
0: देखो रेंज बाते
1: 45
0: ग्राम के बाद
1: जितना गन्ना
0: बड़ा
1: सुलिमाज
0: रही
1: उतना सुलिद
2: रही
0: अब तो हरा गन्ना किने के बाद
1: गन्ना
0: सब ऑप्शन बाते
1: अच्छा बाकी बाद
0: 25 ग्राम
1: के बाद 35
0: ग्राम के बाद
2: और उशाहिला जैसे बोले हुआ निमन से डाले कि कई कई कि कई जना के हमने देख ले जा डाल के फल सब तोड़ दिलन से निकाल दिलन से अब फिलेवा औजे बाते पर औजे बाते पर हैजा लटकता हौजा लटकता सीमा पर चला निमन से नए बांधे हुआ तो एक प्रॉब्लम हो जाए
3: उशाहिला जैसे बोले हुआ निमन से डाले कि कई कई कि कई जना के हमने देख ले जा डाल के फल सब तोड़ दिलन से निकाल दिलन से अब फिलेवा औजे बाते पर हौजे बाते पर हैजा लटकता हौजा लटकता सीमा पर चला निमन से नए बांधे हुआ तो एक प्रॉब्लम हो जाए
4: मैं दिखा तो ना
5: एक उधर
4: आदर रहे कि ना
5: ये मैं वो एवेस्टिस्मा बात
4: जब पैसा लग
5: जा तो
4: चाइना
5: दे के
4: अब पैसा जब जब फुला
5: लग के तब
4: आज ऐसे कर बस फट गल था
5: फट गल
4: वेला तो हरे पैसा
5: है लग
4: लग नहीं पैसा के चाहे
5: मूल्य बातें
4: चला होगा ना आदर
5: आदर
4: होगा कि

0: तब फिले दलाई
1: जब फिले दल बजा तो चाहला छोटा रही फिले डाल
0: फुला दवा तो फिले ना
1: जब जीवा नि फल दे लेला
2: फल वाके छुई
1: हां फल पर जब छुई तो फल कुंच पा छोटा
0: सा बा से फिले के आर पार निकल जाला
2: कोनो फायदा नहीं बा
1: आर पार जब निकल जाला आज उता कनला जन चिम छोटा रही फिले डाल देला
2: बोला तो आके खाके
1: हां बोले तो
2: अभी देखा रहा था छुई
1: फिले पर जाली पर फल कुंच पा
2: छोटा निमो से
1: फिले के आर पार निकल जाला
2: कोनो फायदा नहीं बा
1: और आजकल के निमन से लेके हिंच के
0: हमारे गांव बाहर
1: देखे लगा ना बादल छली लामे एक्शन नहीं रही नीचे से चले भी
2: ये जो प्रैक्टिस हुआ बात है ये बहुत ही अच्छा बात है बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे चुरा ना हुआ था अब हम ही बताए आप जा वर्ल्ड फूड डे हमने सब जानिया जा हर बरिस 15 16 के मनावल जाला वर्ल्ड फूड डे तो ये जो बरिस के टाइम है वो है इनोवेट टुडे ये जो प्रैक्टिस हुआ बात है ये बहुत ही अच्छा बात है बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे चुरा ना हुआ था अब हम ही बताए आप जा वर्ल्ड फूड डे हमने सब जानिया जा हर बरिस 15 16 के मनावल जाला वर्ल्ड फूड डे तो ये जन बरिस के टाइम है वो है इनोवेट टुडे नरिश टुमारो
1: हर देश
2: काहे मनावा जाला
1: हर टापू हर देश हर कोची ना जनबा देखा तो उन लोगों के सेकेगा उन लोगों के चाली मोते जो लखाई जा सुरक्षा रहते ना जो लोग के हर साल कैसी सकब दिवस मनावेला खाए की हमने सकब जा गन्ना खाली खाए के ना सोच विचार करे जो न्यूट्रिशियस हो जब वेल बीइंग खाते जब हम बातें बिलाशो वर्ल्ड पॉपुलेशन में भूखा कोई नहीं रहा आबादी होता
2: एको प्रश्न तो हर से हबी पूछा दिमाग में चला हमने के जन आबादी जन भर्ती संसार की आबादी वो उखटले जात बा उबड़ले जात बा
1: खाली खाए के ना आबादी तक बढ़ले जाता जो न्यूट्रिशियस हो वो खाते ना पहला हिसाब सोच विचार करे कि आगे जाके कोई नहीं रही
2: क्योंकि आज एको प्रश्न तो हर से हबी पूछा दिमाग में चला हमने के जन आबादी जन भर्ती संसार की आबादी वो घटले जात बा उबड़ले जात बा
1: बढ़ले जाता आबादी तब बढ़ले जाता संसार में खाते ना पहला है सब सोच विचार करे कि आगे जाके कुछ हुए क्योंकि आज आज आबादी घटी जन बा जन ना खाली पेट जन ना शुअर प्लस ने बातें खाई के नहीं मिलेगा तो शुअर प्लस ने बातें अच्छा है ला हमने की सोच विचार करे कि कैसे सकता जन ला कन्ला
0: संसार में
1: एक में दो चीज बा एगो बाता जन हबी गना प्रोडक्शन होता चला बरकरार रखे के है एगो चीज ना खाली पेच दूसर बात है जब मन से खाके के आबादी होता संख्या जब बढ़ा है ला हमने की सोच विचार करके कैसे सकब जा गना और उत्पादन एक में दो चीज बा अब देखा एगो बाता जन हबी गना प्रोडक्शन होता चला बरकरार रखे के है एगो चीज बरकरार रखे के दूसर बात है जब लाशों के आबादी होता संख्या जब बढ़ता तक कैसे सकम जान
0: माटी बा
1: और ईशो से बाविदा की जन माटी बा हम अब देखा जाओ एक में कोई तीनों आज जाओ माटी उपजाऊ ने बोला था पोजीशन आगे जाके कैसे रुपाई करा या कैसे बढ़ा के जन है कहां पर कर अब जा हमने के जो नागरिक जन माटी बा पोजीशन बाते लोग की ईशो से बाविदा की जन
2: हमने के मोरिस में इतना जमीन बा कि हमने उपजाऊ सकब स करे वो तो सुजन सकब स बने
1: आगे जाके कैसे रुपाई कर अब जा उतना साल से नहीं करत है जन है फ्रेश वेजिटेबल्स बा के जो नागरिक बाते या घर के साथ बोले लोग की हमने फ्रेश वेजिटेबल्स
2: हमने के मोरिस में इतना जमीन बा कि हमने उपजाऊ सकब स करे वो तो सुजन सकब स बने
1: जमीन त बात उतना साल से हमने करत है जा
2: फ्रेश
1: वेजिटेबल्स तो बात है फ्रेश वेजिटेबल्स हमने घर के साथ बोले कि हमने फ्रेश वेजिटेबल्स में ना हमने के किसान लोग के सहायता है सहायता हमने फ्रेश वेजिटेबल्स में मंगाया श्रम परिश्रम जन कर लें जा और सरकार भी जब आवेला
2: था गोभी
1: बाजे समानीला तभी बता

बस हमने कहना घर के सहाय कृषि की से जुड़ल रहे खाने के किसान लोग के सहाय इस सबसे कहना हमने आज देखा फ्रेश वेजिटेबल्स में परिश्रम जन कर लन चाहिए वो जो सुविधा और सरकार भी और ज्यादा मंगाया आलू रहे कैसे लहसुन।

0: नहीं सकाम जागना और ज्यादा अपन से हम सब बोझ करे ऐसा जस्ट टू की करे तब गंदा जब कल सीजन चल रहा था सकाम
1: आज बोझ भी करना होता कितना सब से में
2: बोले कर सब कुछ आज तक इतना इतना हमने देखी सब मानो के बारे में हमने बताया जैसा आशा हबी फ्रियापे वो सब कर एक बारे में तो रिसर्च होते रहेला
0: और एक में अभी सकेला
1: आज बोझ भी करना होता कितना हमें जवाब अभी नहीं सका बोले
2: आज तक इतना इतना हमने देखी सब मानो के बारे में हमने बताया जैसा आशा हबी फ्रियापे वो सब कर एक बारे में तो रिसर्च होते रहेला
0: और एक में अभी सकेला कैसे स्वीट पोजी बाद में एक आदमी प्रोग्राम में जवाब अभी नहीं सका बोले एक कल में भी एक आदमी नया पना हुआ था सकबा जा लेकिन इतना सका बोले कि जैसे बोला एक तो एक बोला था स्टार्ची क्रॉप्स
2: जी
0: आता इलोग खातो आई फरा खातो इलोग में गन ला कैसे फुया पे बुला
1: खाई के लिए कैसे सब तकारी की तरह बुई करे वगैरह
0: ग्लूटेन फ्री वन चला सेट खाते भी पकाए या तो फिर आगे जो आटा के जो आटा मंगला चुनाव मिला पर और सने के आया जो होता है काम करके
2: एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आना
0: चाहिए ये भी सकला करे एक पर भी काम कर

0: संगे अभी माता रानी आयल हवन चर्चल है उनका हमने स्वागत करी राजा उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। हम भी बात कर रहे थे जा जो वर्ल्ड ऑफ फूड डे है और ई बरिस के जो इनोवेट नरिश टुमोरो बारे में बतियात रला भाई जी और हमने के बताओ 15-16 के मनावा जाए तो मोरिस में कौन कौन जो एग्जीबिशन कुछ हो रही कोनो इवेंट रही एक बारे में तनी बताओ।
1: आज सबसे पहला आज इनोवेट डे कल खातिरो लाभदायक है देखा शुरू में देखा कैसे जुड़ा बातें प्रेसिजन फार्मिंग लेकिन इनोवेशन ना एको लेकिन इनोवेशन इनोवेशन चीज रहे कैसे जैविक खेती में ऐसे आजकल माटी के कैसे जैविक खेती में रखे आजकल आगे तो यही काम है हमने भी 15 अक्टूबर के रही
2: हर साल 2 दिन
1: रही अक्टूबर के मना रहा
2: है दोनों दिन
1: और हमने भी
2: रेजुई साल
1: जो एग्रीकल्चर सर्विस कंपाउंड
2: कृषि मंत्रालय द्वारा
1: वहाँ पर था
2: ये और वहाँ पर
1: ही अनेक
2: 15 और 16
1: भी रही और रही दो दिन
2: पर रही
1: दोनों दिन आई बाई बजा की सकेला आग्रो प्रोसेसिंग हमने के
2: रेजुई के
1: जो एग्रीकल्चर सर्विसेज के जो
2: कंपाउंड बाटे
1: इंडस्ट्री बन
2: वहाँ पर था बिया
1: एंटरप्रेन्योर वहाँ पर ही अनेक कंडा
2: अच्छी
1: पोजीशन भी रही
2: और
1: प्रोसेसिंग भी रही
2: वहाँ पर
1: और जैसे इनोवेशन वगैरह रही तो

0: processing pada bila
1: amni kejuan
0: taham tabulti
1: ha kai bajin
0: landscape ba
1: 15 or 16 ba
0: logo bi
1: no bajin se li production na yani
0: kan ke tin bajin tak
1: processing bi da yung apa rahi
0: aur ha jaise innovation wagera rahi ta
1: to ancha pada bila ki
0: ham sab ki ham tabulti
1: awaz ha kai bajin
0: wa pada dekha ja
1: kunch 15 or 16 october ke
0: aur sakil 9 baje se
1: aaj lahat par hoye
0: sham ke 3 baje tak baja
2: is aur koi jankari kuch ho rahi ta wo log bhi chahiye
0: बिल्कुल
1: तातो ऐसा नहीं संजब मिला मिला बोलते हैं लेकिन मिला में जैसे
0: चाहिए बा ता
1: देखा जा
0: कुछ कुछ
1: बार ऐसी हुआ कि
0: कुछ कुछ कुछ
1: कोई
0: लाभांत डबल हुई
1: तो ऐसा नहीं सक बचा
0: करें कि लाभ उठाए
2: और कुछ जानकारी कुछ हो रही तो
1: बिल्कुल
0: करना जल्द हो
1: तातो ऐसा नहीं संजब
0: मिला मिला बोलते हैं
1: लेकिन मिला में जैसे चाहिए बा
0: सुझाव ने आता
1: कैसी सक बकरी
0: बारे से बोला कि
1: वहाँ पर दिखता है
0: कुछ मन में कुछ
1: होए कि
0: डबल हो
1: या मन में कुछ लोकल कि
2: वो रास्ता मिल जाए
0: ना हो गंदा हो तब उसे सन्ना जन हो
1: अपन जन योजना
0: चिंतारी बात है
1: लेकिन तो राल गंदा
0: कंप्लीट तो राल गंदा
1: सुझाव ने
2: वाचा कैसे जाने की 16 15 और 16 जन ना अक्टूबर आवता द वर्ल्ड ऑफ फूड डे मनावा जा सेंट के में सेंट
1: के रास्ता मिल जाए
2: रेजवी में जी हाँ है जी परी रेजवी में
1: सर्विसेज के अपन जन योजना
2: जी तो चला नहीं भुलाया रेजवी के जन एग्रीकल्चरल सर्विसेज कंपाउंड में नहीं भुलाया 16 धन्यवाद भाई संजय साहू जी फागे के हमनी के सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर अब हफ्ता फिर से मिलब जब तब पूरी टीम रहने से शुभ दिन प्रणाम जय माता दी
3: आज की चर्चा

0: नमस्कार। कॉलेज में शुक्रवार को गोली लगने से घायल हुई एलोजी तोमा की हालत स्थिर लेकिन अभी भी नाजुक बताई जाती है, इस बात की पुष्टि डॉक्टर शैलेश सिन्हा द्वारा की गया।
1: हैं जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
0: उसके ऑपरेशन के लिए भारतीय डॉक्टर कॉलेज में शुक्रवार को गोली लगने से घायल हुई एलोजी तोमा की हालत स्थिर लेकिन अभी भी नाजुक बताई जाती है, इस बात की पुष्टि डॉक्टर शैलेश सिन्हा द्वारा

0: किया गया।
1: देश में फैले तनाव के बीच प्रधानमंत्री
0: उसके ऑपरेशन के लिए भारतीय डॉक्टरों की एक टीम
1: आज मॉरिशस पहुंच रही है। वही और उन्होंने कहा
0: इस मामले में पुलिस के स्तर पर अनुशासनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संवेदनशील मामले से देश में फैले तनाव के बीच प्रधानमंत्री
1: बहुमूल्य संपत्ति
0: नवीन मामला में जनता से शांति बनाए रखने की मांग की और बिगड़ने से रोकने में सहयोग करेगी
1: और कोई दुखद घटना पेश नहीं आनी चाहिए।
0: जो हुआ वो अस्वीकार्य है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश की स्थिरता
0: पुलिस का एक बहुमूल्य संपत्ति है और
1: उन्हें उम्मीद है कि समझदारी से काम लेगी,
0: बिगड़ने से रोकने में सहयोग करेगी।
1: उन्होंने आगे कहा कि कॉलेजों
0: में जो हुआ वो अस्वीकार्य है।
1: डॉक्टर देश में पानी की कमी के चलते पिछले हफ्ते से कई
0: पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए संयम
1: होने के बाद से तनाव समझदारी से काम लेगी।
0: हालांकि उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और न्याय की प्रक्रिया कॉलेजों में होनी चाहिए।
1: जहां एलोजी तोमा एक पुलिस अफसर
0: देश में पानी की कमी के चलते पिछले हफ्ते से कई इलाकों में रात
1: साजिद गौतम प्रदर्शन शुरू होने के बाद से तनाव
0: हिरासत में रखा गया है।
1: शनिवार सबसे दुखद घटना में
0: निसंदेह गया था
1: आज फिर से
0: रोसिल की जहां एलोजी तोमा जाएगा दूसरी तरफ द्वारा
1: चलाई गई यह मामला कई सवाल खड़े करने के बाद से
0: खासकर साजिद गौतम रखने की प्रोटोकॉल
1: और सबसे बढ़कर उन
0: हालातों के बारे में
1: उसे वीकेंड कोर्ट में
0: जिनमें
1: पेश किया गया था
0: आज फिर से इजाजत से रोसिल
1: की अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ
0: एलोजी मामा कई सवाल खड़े करता है
1: कि भारत पुलिस अफसरों की हथियार रखने की प्रोटोकॉल
0: और सबसे बढ़कर उन
1: हालातों के बारे में
0: स्थिति का जायजा लेंगे
1: उन्हें हथियार का इस्तेमाल
0: स्टॉक एक्सचेंज और मॉरिशस की प्रशासनिक परिषद ने टीम हॉगवेन को
1: उधर एलोजी मामा
0: के ऑपरेशन की रेगुलेटरी मंजूरी मिलने पर भी अगले 2 सितंबर
1: 2 दिसंबर रही है
0: और स्थिति
1: इंटरनेशनल कैपिटल
0: मार्केट के अनुभव स्टॉक
1: एक्सचेंज और मॉरिशस की प्रशासनिक परिषद
0: एक दशक से ज्यादा समय तक
1: सीईओ के पद पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज
0: की रेगुलेटरी
1: मंजूरी मिलने
0: पर भी अगले 2 सितंबर
1: अंतरराष्ट्रीय खबरों में
0: नेपाल के गोरखा इलाके
1: में कल अचानक इंटरनेशनल
0: कैपिटल मार्केट
1: के कई अनुभवी
0: पेशेवर टीम
1: हॉगबेन बह गए।
0: कई 95 लोगों को
1: बचाया जा सका है।
0: सिक्योरिटीज लोग
1: अभी भी लापता
0: बताए जा रहे हैं।
1: अभी तक
0: इस बार के
1: अंतरराष्ट्रीय खबरों में
0: नेपाल के गोरखा इलाके
1: में कल अचानक
0: बाढ़ उतर आई
1: जिससे कई मकान
0: और पुल
1: बह गए।
0: होने से बाढ़
1: को बचाया जा सका है।
0: बांध पर
1: दबाव पड़ा
0: अभी भी लापता
1: बताया जा रहा है
0: और बड़ी मात्रा में पानी
1: इस बाढ़ के अचानक उतरने का कारण
0: स्पष्ट नहीं
1: हुआ, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है
0: कि किसी नदी के बहाव के
1: बाधित होने से बाढ़ पर
0: बांध पर दबाव पड़ा
1: जिससे सैंपिया
0: में और बड़ी मात्रा में पानी में
1: 80 साल के थी ये जोर
0: जनाब रफीक दुलीप
1: जो वाहिद नाम से ज्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे
0: का जनाजा आज दिन के
1: 2 बजे
0: तेज सैंपिया में
1: इनके मकान को
0: सैंपिया में
1: 80 साल की थी ये जोल्ड
0: जनाब रफीक दुलीप
1: जो वाहिद नाम से ज्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा
0: आज दिन के 2 बजे का जनाजा
1: आज दिन के 2 बजे
0: इनके मकान को
1: बेटे
0: जनाब
1: हसन जाली
0: नाम से ज्यादा जाने जाते थे
1: और
0: रोबेल
1: में पूर्व
0: गनाजिन
1: से
0: इंतकाल कर गए हैं।
1: जनाजा
0: आज दिन के 2:30 बजे का
1: जनाजा
0: के
1: बेटे
0: जनाब
1: रहमतुल्ला
0: चिश्ती
1: मस्जिद
0: जाया जाएगा
1: दफनाने के लिए पाई का कब्रिस्तान फ्यूनरल टुडे
0: गनाजिन
1: पाई से
0: उठा कर पहली नमाज जनाजा के लिए
1: सीते और जी सौ दस लाख में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सुबा
0: द्रेशी चिश्ती
1: श्रीमती सुबा
0: जगह से दफनाशी नाम पाई सरवन जो माला नाम से ज्यादा
1: जानी जाती
0: थी आज की मृत्यु हो गई है।
1: केयर थी
0: जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। केयर थी केस काउंटर नंबर दो
1: वाकवामी के दो बजे की अतिवाकवामी के दो बजे
0: की 76 ईयर्स और श्रीमती
1: इनके मकान सीनियोरिटी सॉन्ग फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए
0: नर्मदाए बाबली
1: की शमशान भूमि
0: ले जाई जाएगी
1: जो मानुबाई नाम से ज्यादा जानी जाती थी। इनकी मृत्यु हो गई है।
0: केस काउंटर नंबर दो वाकवामी के दो नंबर दो वाकवामी
1: 76 ईयर्स
0: से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए नर्मदाए शमशान भूमि ले जाई जाएगी।
1: श्रीमती नर्मदाए बाबली पिताश्री नाम जानकू
0: जो मानुबाई नाम से

0: पता जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है। इनके हथियार जिनकी एक बजे इनके हथियार जिनके एक बजे इनके मकान कैंस का तो नंबर दो आकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सोचे होंगे कि शमशान में परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 820 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 820 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।

0: नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को
1: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे
0: पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।
1: एमबीसी रेडियो 24 आवर्स अ डे।
2: चलिए श्रोताओं, 10:07 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। हमारा साथ अपने नाम सभी सुनने वालों को इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हमारा साथ देने वाले हैं। कार्यक्रम है भक्ति सोमवार का दिन।
3: चलिए श्रोताओं, 10:07 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। हमारा सादर प्रणाम सभी सुनने वालों को इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हमारा साथ देने वाले हैं। कार्यक्रम है भक्ति धारा दुर्गा की जय। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार का दिन है आज और आज का दिन जो है समर्पित है भगवान शिव जी को।

0: इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।
1: प्रस्तुत कर रही है डॉक्टर वीनु अरुण। प्रस्तुत कर रही है डॉक्टर
2: मंथन कार्यक्रम में आप सभी श्रोता भाई बहनों का सादर वंदन और अभिनंदन। रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 265 मानस मंथन कार्यक्रम में
3: और उसके नीचे की चौपाइयों को
2: सभी श्रोता भाई बहनों का आपकी सादर वंदन प्रस्तुत करने जा रही अभिनंदन। रामचरित मानस के धनुर्भंग
3: हो गया है।
2: दोहा 265 यानी जय माल राम जी के गले में पहना दी है
3: और उसके नीचे की चौपाइयां कह रही हैं कि राम जी के चरणों का स्पर्श
2: प्रस्तुत करने जा रही।
3: लेकिन सीता जी के मन में संकोच
2: धनुर्भंग हो गया है।
3: उनको
2: सीता जी ने
3: जयमाल राम जी के गले में पहना दी है।
2: गौतम जी की पत्नी अहल्या जी की याद
3: सखियां उन्हें कह रही हैं
2: और उन्हें लगता है
3: कि राम जी के चरणों का स्पर्श करो।
2: लेकिन सीता जी के मन में संकोच
3: तो राम जी के चरणों में कोई अद्भुत
2: एकाएक
3: अलौकिक
2: अहल्या जी की गौतम जी की
3: यदि मेरे अहल्या जी की याद
2: राम जी के चरणों का स्पर्श
3: और उन्हें लगता है
2: कहीं मेरे
3: यदि शिला भी
2: पत्थर
3: यानी
2: बन पत्थर
3: स्त्री बनसे
2: में तो राम जी के चरणों में
3: कोई अद्भुत
2: और फिर कैसे
3: हमारा अलौकिक शक्ति है।
2: ये सारी बातें
3: यदि मेरे हाथों ने
2: मन में
3: राम जी के चरणों का
2: याद होगा केवट के भी मन
3: मेरे हाथ भी
2: आएगा भाव ना बन
3: जब हम अयोध्या कांड में
2: उस प्रसंग में
3: कैसे उनके चरण
2: जहां राम जी को
3: और फिर कैसे
2: गंगा हमारा जीवा होगा।
3: ये सारी बातें
2: सीता जी के मन में
3: प्रीति
2: आ रही है
3: आपको याद होगा केवट के भी मन में
2: अलौकिक प्रीति को देख
3: आएगा भाव
2: राम
3: जब हम अयोध्या कांड में
2: उस प्रसंग में
3: आगे क्या होता है
2: राम जी को
3: इसे आइए हम
2: गंगा
3: पार जाना
2: है।
3: तो मन भीषके रघुबंस मनि
2: प्रीति अलौकिक जानी
3: और सीता जी की अलौकिक प्रीति को देख करके राम जी मन
2: मुस्कुरा रहे
3: हैं। उठी
2: आगे क्या होता है
3: अभागे
2: इसे आइए हम देखें।
3: काल बजावन लागे उस समय सीता जी को देख
2: के कुछ राजा लोग ललचा उठे
3: तब सीय देखि भूप अभिलाषे
2: कुपूर कपूर राजा मन में मात तमाए
3: उठि वे अभागे सना कर अभाग बहन कर
2: जहां काल बजावन लागे।
3: उस समय सीता जी को देखकर
2: हर जगह
3: राजा लोग ललचा उठे
2: कुछ सकारात्मक लोग होते हैं
3: वे दुष्ट
2: और कुछ नकारात्मक
3: और मूढ़ राजा
2: मन में बहुत तमतमाए
3: वे अभागे
2: एक और देवी देवता
3: जहां तहां
2: और नगरवासी साधु संत
3: हर जगह ये होता है
2: लोग
3: कुछ सकारात्मक लोग होते हैं
2: कि आज
3: नकारात्मक अवसर आया
2: जब सीता और राम जी का
3: जहां एक और देवी देवता
2: आपने पढ़ा
3: और
2: नगरवासी
3: देवता
2: साधु संत ऋषि गुरु
3: देवांगनाएं
2: परम प्रसन्न हो रहे हैं
3: नृत्य कर रहे
2: हैं आज वो शुभ
3: अवसर आया
2: हर्षोल्लास में
3: राम जी का
2: लेकिन विवाह होने जा रहा है।

0: वो राजा है
1: आपने जो आपने सुना है
0: कि देवता में ये सोच करके आए थे पुष्प
1: वर्षा कर रहे हैं, देवांगनाएं गीत गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं,
0: पूरा नगर हर्षोल्लास में डूबा हुआ है,
1: अपनी आशा पर पानी वो राजा देखकर
0: यानी जो अहंकारी निराश हो गए,
1: जो मन में ये सोच करके आए थे
0: क्योंकि जो
1: धनुर्शर्त थी जो करेंगे
0: और सीता जी से हमारा विवाह की गई
1: थी, अब
0: वो अपनी आशा ने पर पूरी की
1: पानी फिर सा देख कर यानी है
0: कोई उसमें निराश हो गए हैं,
1: उसमें कपट
0: कुछ नहीं कर सकते नहीं है
1: तो वो करे तो क्या करे,
0: जो तो शर्त थी जो प्रण था
1: कि जो जो शर्त तय की गई
0: जब सीता जी को
1: शर्त उन राजाओं ने देखा
0: तो उनके मन में
1: की है कोई उसमें छल कोई उसमें कपट सुंदर
0: कुछ नहीं है,
1: ये जो वो करे तो क्या करे,
0: कन्या है सीता,
1: तुलसीदास जी कहते हैं
0: इसका विवाह राम से हो रहा है
1: हमारा क्या होगा,
0: तो उनके मन में जी को
1: लालच आ गया,
0: उन राजाओं ने देखा
1: है दुष्ट तो उनके मन में है
0: यानी भाग्या
1: बुरे लोग हैं
0: कि इतनी सुंदर
1: राजा है यानी
0: ये जो
1: मूर्ख भी है
0: वो समझ
1: है नहीं पा रहे हैं
0: कि इसका
1: तो सब कुछ हो गया
0: हो रहा है,
1: हमें तो मौका मिला
0: क्या होगा,
1: तो उनके मन में प्राप्त
0: लालच आ गया,
1: हम तो कुछ नहीं कर सकते
0: हैं दुष्ट अब हमें
1: कुपूत है
0: चुपचाप बैठना चाहिए
1: बुरे लोग
0: हमें तो नहीं पछताना चाहिए
1: राजा
0: है यानी सब राजा
1: भी है
0: वो समझ नहीं पा रहे हैं
1: क्रोध में भरे हुए
0: सब कुछ हो गया
1: हमें तो मौका मिला था
0: हमें तो अवसर
1: दृश्य को यदि
0: हम तो कुछ नहीं कर सके
1: तो अब हमें
0: दृश्य कैसे चुपचाप
1: बैठना चाहिए
0: हमें तो नहीं पछताना चाहिए
1: अभागे
0: लेकिन वे सब राजा
1: कवच तमा रहे हैं
0: यानी कवच क्रोध
1: में भरे हुए
0: उन्हें लगता
1: है कुछ युद्ध के मैदान में जाते हैं
0: जब पूरे दृश्य को यदि बदला जा सके
1: तो राजा लोग
0: दृश्य कैसे बदला जाए
1: सैनिक होते हैं
0: वे कवच पहनते हैं
1: अभागे का बना होता है
0: कवच पहन
1: इसलिए
0: कवच का पहनते
1: जब युद्ध हो
0: जब कोई वार
1: युद्ध के मैदान में जाते हैं
0: शस्त्रों से प्रहार
1: संग्राम के मैदान में जाते हैं
0: ये जो राजा लोग या
1: जो
0: उसकी
1: सैनिक होते हैं
0: वे कवच पहनते हैं
1: लोहे का बना होता है
0: कवच पहन और
1: अरे भाई किससे
0: युद्ध करना है
1: जब युद्ध हो
0: ये तो कोई
1: युद्ध का मैदान नहीं है लेकिन उन्हें लगता है
0: शस्त्रों से
1: कवच पहने
0: अपना अपना अस्त्र शस्त्र ले
1: और जाकर के कुछ भी करके
0: रक्षा की जा सके
1: तो वे राजा बेकार में उठ करके कवच
0: गाल बजा रहे हैं
1: यानी किससे युद्ध में जा रहा है
0: वो बकवास
1: तो कोई युद्ध का मैदान नहीं है
0: लेकिन उन्हें लगता है
1: उठे कवच पहने
0: अपना अपना अस्त्र शस्त्र ले
1: और जाकर के कुछ भी करके
0: सीता जी को अपना बना ले जीवत
1: हम ही कुंवरी को बरे
0: क्या गाल बजा रहे हैं
1: यानी
0: जो मन में चाह रहा है
1: जो आ रहा है वो बोल रहे हैं
0: उनको
1: अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है
0: क्रोध में
1: आक्रोश में
0: बालक
1: दो हैं और क्या बोल रहे हैं
0: कि सीता जी को छीन लो
1: जीवत हम ही कुंवरी को बरे
0: क्या क्या बोल सीता जी को
1: उठा लो छीन लो
0: मन में जो आ रहा है वो
1: दोनों राजकुमारों
0: को पकड़ कर बांध नहीं रह गया है
1: क्योंकि
0: क्रोध में
1: आक्रोश
0: में वो कैसे उठे हैं
1: और क्या बोल रहे हैं
0: लक्ष्मण जी का क्रोध ये राजा देख
1: चुके हैं
0: तो कुछ लोग खड़े होकर बोल रहे हैं
1: ले लो सीता जी को
0: उठा लो छीन लो
1: केवल धनुष तोड़ने
0: से दोनों राजकुमारों को पकड़ कर बांध
1: छाड़ नहीं सके
0: क्योंकि
1: ये क्या मतलब है यदि धनुष
0: तोड़ दिया
1: सीता जी को कैसे विवाह हो जाएगा
0: और लक्ष्मण जी का क्रोध ये राजा
1: चल चुके हैं
0: तो बोल रहे राम और लक्ष्मण
1: जी बात
0: हमें
1: और जब तक हम जीवित हैं धनुष
0: तोड़ने से कुछ नहीं होगा
1: तोरे धनुष चाड़ नहीं सके
0: कोई और ब्याह
1: ये क्या मतलब है कि
0: धनुष तोड़ दिया
1: तो राम जी का विवाह हो जाएगा
0: इस तरह जो
1: राजा पराजित हो गए हैं
0: जिनकी
1: जीवता हमें पूरी नहीं हो पाई
0: और जब तक हम जीवित हैं
1: क्रोध को
0: तब तक सीता जी से
1: व्यक्त कर रहे हैं
0: कोई और ब्याह ले
1: ये तो कभी
0: हो ही नहीं
1: जीता हूँ समर सहित
0: तो दो भाई
1: राजा
0: पराजित हो गए हैं
1: सुनी बानी
0: जिनकी
1: राज
0: कामना पूरी नहीं हो पाई
1: जाने
0: वे
1: यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में
0: दोनों भाइयों सहित
1: जो भी दे हो कछु करे
0: ये वचन सुन जीता हूँ समर सहित
1: दो भाई
0: निर्लज्ज राज समाज बोले
1: सुनी बानी
0: लाज भी लज समाज
1: क्या कह रहे हैं
0: पहले तो बोले राम और यदि जनक
1: कुछ सहायता करे तो
0: अब दोनों भाइयों सहित
1: कि यदि मान लो जनक जी आते हैं
0: सुन राम जी और लक्ष्मण जी
1: को बचाने के लिए या
0: सीता जी को बचाने के लिए
1: तो कोई परवाह नहीं
0: उन्हें भी इन दोनों भाइयों के साथ बोले
1: राम और लक्ष्मण को बांध लो
0: राजा जनक को भी हम बांध लो
1: अब बोल रहे हैं
0: ताकि
1: यदि मान लो जनक जी
0: हमारे रास्ते में
1: राम जी और लक्ष्मण जी
0: हमारे रास्ते बचाने के लिए
1: या सीता जी को बचाने के लिए
0: तो कोई परवाह नहीं
1: उन्हें भी इन दोनों भाइयों के साथ बांध लेंगे
0: यानी
1: राजा जनक को भी हम बांध बांध लेंगे,
0: नीच राजाओं की
1: कोई भी
0: साधु सन्यासी
1: हमारे रास्ते में व्यवधान न बने, हमारे रास्ते में कोई रुकावट न बने,
0: और हम सीता जी को
1: उठा कर ले जाए
0: तो लाज भी लजा जाए,
1: मतलब इतना भी कोई निर्लज्ज हो सकता है?
0: अहंकारी और नीच राजाओं की
1: भाग जाना
0: साधु सन्यासियों

0: ने श्रेष्ठ भी शर्म होगी हमें कहा, पहले अवसर
1: ये तो बड़े निर्लज्ज लोग हैं,
0: लेकिन इन्हें देख कर
1: काम नहीं
0: तो लाज भी लग जाए,
1: मतलब इतना भी कोई निर्लज्ज हो सकता है?
0: अब हमें अरे आप तो चुपचाप प्रकट जाना चाहिए वहां से,
1: थोड़ी सी भी शर्म होगी हमें नहीं,
0: पहले अवसर मिला
1: ही है,
0: लेकिन
1: चूंकि
0: हम वो काम नहीं कर पाए, हम तो धनुष को समझ नहीं कर पाए,
1: बोलते
0: तो अब हमें
1: बल प्रताप वीरता प्रकट करने का कहीं संग सिधाई,
0: कोई औचित्य नहीं है,
1: अब कोई
0: अर्थ नहीं है,
1: असी बुद्धि
0: लेकिन
1: चुकी अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई
0: और
1: प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली रहता बढ़ाई,
0: वही वीरता थी
1: ना कहीं संग से मिली है,
0: सो ऐसी दुष्टता थी तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर काली मसल आई,
1: जो साधु सन्यासी है जो
0: बल प्रताप वीरता बढ़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई,
1: इतने नीच और
0: वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है,
1: अहंकारी
0: दुष्ट बुद्धि
1: तभी तो विधाता समझ भी नहीं पा रहे हैं,
0: उन्हें तो साधु सन्यासी हैं जो
1: लेना चाहिए था,
0: और वो खड़े होकर के
1: बकवास कर रहे हैं
0: कि ये राजा इतने नीच और
1: यानी जो साधु लोग हैं,
0: साधु मतलब जो अच्छे राजा
1: हैं
0: जो श्रेष्ठ लोग हैं,
1: स्थिति को समझ भी नहीं पा
0: रहे हैं,
1: उन्हें तो
0: चुपचाप मुंह छुपा लेना चाहिए था,
1: अब कह रहे हो ना कि हम अपने बल से सीता जी को उठा लेंगे,
0: जनक जी को बांध लेंगे, राम और लक्ष्मण को बांध लेंगे,
1: जो अच्छे राजा हैं जो श्रेष्ठ लोग हैं,
0: उस समय कहां गया
1: जब कह रहे हैं
0: उठाना था,
1: कहां गया तुम्हारा बल,
0: तब तो तुम्हारी
1: कह रहे हो ना कि हम अपने बल से सीता जी को उठा लेंगे,
0: जनक
1: जी को बांध लेंगे,
0: राम और लक्ष्मण को बांध लेंगे,
1: अब तुम बड़बड़
0: के तुम्हारे अंदर बल है, तो वो बल उस समय कहां गया
1: जब तुम्हें
0: से मिली
1: है, उठाना
0: अच्छा लगता है कि कहीं से,
1: अब तो तुम्हारी प्रतिष्ठा
0: वीरता तुम्हारी
1: प्राप्त हो गई है
0: और उस वीरता से
1: बल प्रताप
0: लक्ष्मण
1: कुछ काम नहीं आया,
0: ऐसे
1: अब तुम बड़बड़ के बोल रहे हो,
0: ने तुम्हारे मुख पर
1: वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है,
0: जो अच्छे
1: अच्छा लगता है कि कहीं से राजाओं
0: के लिए
1: कोई दूसरी वीरता तुमको प्राप्त हो गई है
0: और उस वीरता से
1: तुम राम लक्ष्मण को बांध नहीं उठा पाए,
0: ऐसे दुष्ट बुद्धि है,
1: तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुंह बोल रहे हो
0: कालिक,
1: देखो राम ही
0: तो ये जो अच्छे वाले राजा हैं
1: वो नीच राजाओं के लिए
0: कह रहे हैं
1: कि इसीलिए तुम हार गए,
0: इसीलिए
1: घमंड
0: धनुष नहीं उठा पाए,
1: छोड़ कर
0: अब तुम बढ़ के
1: श्री राम जी बातें बोल रहे हो,
0: लक्ष्मण के
1: राम ही प्रबल
0: भरी जानकर
1: ईर्ष्या मद को
0: लखन रोष
1: पावक
0: प्रबल
1: जान सलब जनी हो,
0: बहुत हो
1: गया घमंड,
0: अरे भाई अब तुम पराजित हो गए हो,
1: नेत्र भर
0: तुम धनुष नहीं उठा सके,
1: लक्ष्मण के क्रोध के मुताबिक
0: राम जी ने धनुष उठा लिया,
1: तोड़
0: तो
1: वे
0: राजा
1: सीता जी ने
0: जयमाल
1: पहना दी, तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन तुम
0: अरे भाई
1: बेकार
0: तुम पराजित
1: बोल रहे हो,
0: बेकार क्रोध में
1: धनुष नहीं उठा सके,
0: कवच पहन रहे हो,
1: के मुताबिक
0: राम जी ने
1: सबको बांधने और
0: उठाने
1: की बातें जो तुम कर रहे हो,
0: सीता जी ने जयमाल पहना दी,
1: तो तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए,
0: ये क्रोध
1: लेकिन तुम बेकार की बातें बोल रहे हो,
0: बेकार
1: क्रोध में
0: भड़क लो, श्री राम की छवि देख
1: कवच पहन रहे हो,
0: श्री राम
1: और सबको बांधने और उठाने की बातें जो तुम कर रहे हो,
0: इतने ही
1: ये ईर्ष्या छोड़ दो,
0: ये घमंड छोड़ दो,
1: क्रोध विचार दो,
0: भला कैसे
1: कम से कम अब तो अपने नेत्रों को धन्य कर लो,
0: लक्ष्मण जी के क्रोध
1: कर को तो तुम देख चुके,
0: श्री राम को
1: कम
0: देखने
1: के बावजूद
0: तुम्हारे
1: तो
0: मन में
1: इतने
0: ही
1: इतने निकृष्ट
0: और इतने नकारात्मक विचार
1: भला कैसे आ रहे हैं,
0: भरी
1: भाव
0: लक्ष्मण जी के क्रोध
1: अकारण
0: को तो तुम देख चुके हो,
1: सब संपदा
0: कम लक्ष्मण के क्रोध से तो अपने को
1: और
0: बचाने की कोशिश करो,
1: कल कीरत
0: जते
1: बलि
0: जलंकता
1: की कामी
0: ससु चहे
1: हरिपद विमुख परम गति
0: चाहागु
1: तस जिमिचह
0: कुशल अकार
1: कारण को ही
0: इन चार संपदा में
1: चाहे
0: सीधा जी क्या कह रहे हैं
1: आइए देखें,
0: और
1: लोभी
0: लोलुप
1: कल कीरत
0: चहे कौवा
1: चाहे
0: कता की कामी लहे
1: खरीपद
0: विमुख परम गति
1: बिना कारण ही
0: तस तुम्हार लाल
1: क्रोध करने वाला अपनी
0: चार चौपाइयों में
1: तुलसीदास
0: शिव जी से विरोध करने वाला
1: कहते हैं
0: जैसे
1: गरुण का भाग
0: कौवा
1: चाहे
0: और
1: सिंह
0: का भी
1: लालची
0: खरगोश
1: चाहे
0: बिना कारण ही
1: मनुष्य
0: निष्क्रोध
1: करने वाला
0: अपनी कुशल
1: तो क्या
0: चाहे
1: संभव हो सकता है,
0: शिव जी से विरोध करने वाला
1: श्री
0: सब प्रकार
1: से विमुख
0: मनुष्य
1: चाहे
0: परम गति
1: चाहे
0: लोभी
1: लालची
0: सुंदर
1: कीर्ति
0: चाहे
1: भी वैसा ही
0: मनुष्य
1: निष्कलंकता
0: चाहे, जो अच्छे वाले राजा
1: हैं क्या ये संभव हो सकता है,
0: और
1: इन
0: जैसे
1: नीच राजाओं को
0: हरि के
1: चरणों से विमुख
0: मनुष्य
1: और उन्हें बता रहे हैं
0: कि
1: तुम्हारी जो कामना

0: के लिए तुम्हारा
1: वो
0: लालच
1: कभी
0: भी वैसा ही
1: पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि
0: ये जो अच्छे वाले राजा हैं
1: के आगे
0: वे
1: बिल्कुल
0: महत्वहीन
1: नीच राजाओं
0: तुम्हारा
1: को समझा रहे हैं। श्री राम ने बता रहे हैं कोई अर्थ ही
0: नहीं रखता
1: जो कामना है,
0: इसीलिए
1: वो कभी
0: वे
1: पूरी हो
0: राजाओं
1: ही नहीं सके, क्योंकि
0: अहंकार
1: पर
0: श्री राम
1: के आगे कई बातें कहते हैं कि तुम्हें सीता नहीं मिल सकती,
0: पराक्रम
1: और
0: श्री राम
1: जो तुम्हारी
0: आगे
1: कोई अर्थ ही नहीं रखता है,
0: असंभव है ये कभी पूरी नहीं हो सकती।
1: वे और बहुत सारे
0: राजाओं के अहंकार
1: दे रहे हैं,
0: प्रहार करते हुए
1: कई बातें कहते हैं कि तुम्हें सीता नहीं मिल सकती,
0: विष्णु के वाहन
1: ये जो तुम्हारी इच्छा है
0: बैनते
1: ये असंभव है,
0: ये कभी पूरी नहीं हो सकती।
1: बलि
0: बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं,
1: पहला दे रहे हैं
0: जो गरुण का भाग है
1: बलि
0: उसे कौवा चाहे तो क्या ये हो सकता है।
1: गरुण भगवान
0: ये देखें गरुण
1: विष्णु के वाहन है,
0: इन दोनों से
1: बैनते यानी
0: गरुण जी
1: बलि
0: विष्णु के वाहन है,
1: जो
0: गरुण का
1: बलि
0: है जो गरुण का भाग है
1: गरुण जी की
0: उसे कौवा चाहे तो क्या ये हो सकता है।
1: गरुण जी पक्षियों के
0: राजा
1: हैं,
0: गरुण
1: बलवान
0: हैं,
1: इन दोनों से
0: गति वाले
1: हैं
0: और आकाश में उड़ते हैं,
1: गरुण जी
0: की उड़ान
1: भगवान विष्णु के वाहन है,
0: वाहन का मतलब भगवान विष्णु
1: है, वो
0: गरुण जी की सवारी करते हैं,
1: अशुद्ध वस्तुओं पर जीने वाला है,
0: पक्षियों के राजा
1: है, बहुत
0: बलवान है,
1: गरुण का स्थान
0: तेज गति वाले
1: कर लो
0: और आकाश में
1: सब लोग ये सुनकर
0: कौवे का उड़ान भी बहुत करेंगे,
1: क्योंकि ये केवल
0: लेकिन दूसरी ओर जो कौवा है वो साधारण
1: है, इसे समझ सकते हैं कि
0: वस्तुओं पर जीने वाला
1: विद्यार्थी
0: बिना
1: पढ़े
0: ये
1: सोचे कि
0: मैं गरुण का स्थान
1: किसी विश्वविद्यालय
0: का कुलपति
1: बना दिया जाए,
0: सब लोग ये सुनकर
1: कौवे का उपहास करेंगे, क्योंकि ये केवल
0: उसकी
1: अलग बात है
0: और
1: इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी
0: बिना पढ़े
1: गरुण का भाग कौवा लेना चाहे
0: किसी विश्वविद्यालय का कुलपति
1: बना दिया जाए,
0: यानी
1: तो
0: राम जी का स्थान
1: ये नीच
0: राजा लेना
1: अलग बात है,
0: कभी भी
1: और पात्रता होना
0: हो नहीं
1: अलग बात है।
0: दूसरा उदाहरण देते हैं
1: सिंह का
0: गरुण का भाग
1: कौवा लेना चाहे
0: तो ये
1: जो जंगल का राजा
0: है
1: जिसे
0: देख राम जी का स्थान
1: सारे
0: नीच राजा लेना चाहे
1: पशु
0: ये कभी भी
1: कांप उठते हैं,
0: भय
1: के मारे छुप जाते हैं।
0: दूसरा उदाहरण देते
1: सिंह का भाग
0: यानी कि
1: अब आप सोचिए
0: के लिए
1: सिंह जो जंगल का राजा
0: खाने को
1: और जिसे
0: देख
1: चाहे
0: कि मैं खा जाऊं
1: तो
0: ये कभी संभव है।
1: पशु
0: के आगे
1: खरगोश
0: की क्या
1: औकात,
0: भय के मारे छुप जाते
1: बिना कारण ही क्रोध करने वाला
0: सिंह का भाग यानी
1: किसी ने
0: सिंह के लिए
1: जो बिना कारण
0: क्रोध खाने को
1: और उसे
0: खरगोश
1: चाहे कि
0: मंगल
1: नहीं
0: हो
1: सकता
0: तो ये कभी
1: उसका कभी कल्याण नहीं हो
0: सिंह के आगे खरगोश की क्या
1: औकात। चौथी बात कही
0: उन्होंने
1: बिना
0: कारण ही क्रोध करने
1: वाला
0: सब प्रकार
1: कुशल चाहे
0: संपत्ति चाहे
1: जो बिना कारण क्रोध करता है।
0: दो बातें
1: उसका कभी
0: है कि जहां
1: अनावश्यक
0: क्रोध है
1: उसका कभी
0: और
1: कल्याण
0: कभी नहीं टिक सकते।
1: और
0: चौथी
1: और
0: बात
1: जो
0: उन्होंने
1: शिव जी से
0: विरोध
1: करने
0: वाला
1: और चाहे
0: कि
1: वह
0: धन दौलत
1: प्राप्त
0: कर ले
1: तो
0: ये
1: असंभव है,
0: क्योंकि
1: भगवान
0: तो
1: शिव
0: दो बातें
1: और कह रहे
0: हैं
1: कि
0: जहां
1: अनावश्यक
0: क्रोध
1: कल्याण के
0: सोच
1: का विरोध
0: कल्याण
1: कभी नहीं
0: उसका कल्याण भला
1: कैसे हो पाएगा।
0: और जो
1: शिव जी
0: से
1: विरोध
0: करें
1: और चाहे
0: कि
1: वह
0: धन दौलत
1: प्राप्त
0: कर ले
1: तो
0: ये
1: असंभव
0: है,
1: क्योंकि
0: भगवान
1: शिव
0: लाल
1: कल्याण
0: स्वरूप
1: है,
0: वह चाहे कि
1: उसे
0: कल्याण के
1: स्रोत
0: का विरोध
1: करे
0: तो
1: उसका
0: कल्याण
1: फलम
0: कैसे
1: हो
0: पाएगा।
1: यश किसको
0: मिलता है
1: जो दान करता है,
0: कि लोभी
1: जो
0: उदार
1: व्यक्ति
0: है
1: उसका
0: लोभी
1: लालयुगान
0: करते
1: हैं
0: कि
1: देखो
0: चाहे कि
1: उसे
0: सुंदर
1: दीनहीन
0: की
1: कीर्ति
0: मिल जाए
1: तो ये भी असंभव है।
0: उसका लोग
1: यश
0: किसको
1: मिलता है
0: जो
1: दान,
0: लेकिन
1: यदि
0: कोई
1: लोभी
0: है
1: जो
0: उदार
1: कष्ट
0: में
1: पड़ा
0: हुआ देख
1: उसका
0: भी
1: लोग
0: एक
1: यशोगान
0: करते
1: हैं
0: कि देखो
1: कैसे
0: सबकी
1: मदद
0: करने
1: के
0: लिए
1: ये
0: तो ऐसे
1: व्यक्ति
0: को यश
1: कैसे
0: प्राप्त
1: हो
0: उसका सकता
1: है,
0: क्योंकि
1: यश
0: नाम
1: त्याग
0: से मिलता
1: है।
0: लेकिन
1: यदि
0: कोई
1: लोभी
0: है
1: आगे
0: वे
1: कहते हैं
0: दूसरों को
1: कष्ट
0: में पड़ा हुआ देख कर
1: भी
0: एक
1: पैसा
0: ना
1: निकाले
0: वो
1: भला
0: निष्कलंक
1: मदद
0: करने
1: रह सकता
0: है,
1: यानी
0: इंद्रियों
1: का दास
0: कैसे
1: प्राप्त
0: हो सकता है।
1: उसका चरित्र कलंक
0: की यश
1: त्याग
0: से
1: मिलता
0: है
1: लोभ
0: से।
1: इतिहास
0: में
1: अनेक
0: ऐसे
1: वे कहते
0: हैं
1: जो
0: काम
1: वासना
0: के कारण
1: की
0: कामी
1: है,
0: जो
1: कामी
0: उनके पराक्रम
1: की
0: भला
1: निष्कलंक
0: कैसे
1: रह सकता
0: है,
1: यानी
0: जो
1: इंद्रियों
0: का दास
1: है
0: होने
1: की
0: चर्चा
1: चरित्र
0: कलंकित
1: हो जाता
0: है। इसलिए चरित्र की
1: रक्षा
0: इतिहास
1: में
0: अनेक ऐसे
1: उदाहरण
0: हैं
1: जो
0: काम वासना
1: के कारण
0: परम गति
1: है
0: और
1: जो
0: श्री हरि
1: के
0: चरणों
1: से
0: विमुख
1: है
0: ऐसा
1: मनुष्य
0: यदि परम गति
1: होने
0: की
1: चर्चा
0: अधिक हुई,
1: इसलिए
0: चरित्र की

0: सीता संयम तुम्हारा लालच भी
1: और वैसा हरि
0: पद विमुख परम गति चाहा।
1: तो
0: और जो श्री हरि के चरणों से यानी जो परमात्मा की भक्ति से यदि परमात्मा का कभी नाम चाहे परमात्मा का कभी
1: स्मरण नहीं
0: सीता के लिए
1: वो चाहे कि उसे मोक्ष मिल जाए
0: वैसा ही
1: दोनों बातें
0: है
1: एक साथ नहीं
0: तो
1: हो सकती।
0: जो हरि पद विमुख है यानी जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता परमात्मा का कभी नाम नहीं लेता
1: वे
0: परमात्मा का कभी स्मरण नहीं
1: कहते हैं
0: करता वो चाहे मन से
1: मोक्ष मिल जाए
0: जो इच्छा है
1: ये दोनों
0: बातें
1: नहीं हो सकती
0: एक साथ।
1: तुम किसकी तरह हो
0: तुम कौवे की तरह हो खरगोश की तरह हो और
1: ये जो
0: शिव जी से विरोध करने वाले की तरह हो
1: निकृष्ट राजाओं से कहते हैं
0: तो तुम्हारे मन में भी
1: जो इच्छा है वो कभी पूरी
0: और
1: नहीं
0: आगे
1: हो सकती
0: क्योंकि तुम किसकी तरह हो
1: किस प्रकार
0: की तरह हो खरगोश की तरह हो
1: अच्छे राजा लोग
0: और
1: वो
0: शिव जी से
1: विरोध
0: करने वाले की तरह
1: निंदा करते हैं
0: किस प्रकार
1: तो तुम्हारी कामना कभी पूरी
0: सीता जी के मन में शंका हो जाती है
1: वे चिंतित हो जाती हैं कि
0: अभी तो
1: किस प्रकार
0: मैं इस बात को लेकर
1: जो अच्छे राजा लोग
0: हो रही थी
1: मेरे मन में
0: तरह तरह के विचार उठ रहे थे
1: निंदा करते हैं
0: क्या राम जी
1: किस प्रकार
0: पाएंगे या नहीं
1: सुन करके
0: और अब
1: सीता जी के मन में शंका हो जाती है
0: वे चिंतित
1: हो जाती है
0: कि अभी तो
1: ये कुछ ऐसे राजा
0: इस बात को लेकर
1: जो यहाँ तक शोर
0: संकुचित हो रही थी
1: मेरे मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे
0: बांध देंगे
1: क्या राम जी धनुष
0: सारी
1: पाएंगे या
0: सोचकर
1: और अब जब तोड़ दिया
0: मन ही मन
1: और सब शुभ होना चाहिए
0: वहाँ
1: ये कुछ ऐसे राजा हैं
0: और
1: जो यहाँ तक शोर कर रहे हैं कि वो मुझे उठा के ले जाएंगे
0: राम जी को बांध देंगे
1: सुने
0: इन सारी बातों को सोचकर
1: सीताजी
0: विराम
1: मन ही मन
0: धन्यवाद नमस्कार
1: व्यथित हो रही हैं चिंतित हो रही हैं और इस सारे प्रसंग को अगले कार्यक्रम में

0: चलिए श्रोताओ, 10:36 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और भक्ति धारा इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।
1: सत्य में
0: अभी आप मानस मंथन कार्यक्रम सुन रहे थे। डॉक्टर विनु कल्याण जी की प्रस्तुति में इस कार्यक्रम पूरा हो चला। तो चलिए श्रोताओ, सोमवार का दिन है और आज का दिन समर्पित है भगवान शिव जी को। और आपको पता है कि शिव जो है
1: शिव जी पर आधारित
0: सत्य है और सत्य में ही शिव है और वो कल्याण

0: चलिए श्रोताओं, भक्ति भरा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये अगला भक्ति गान, और आपको पता है जब हम शिव जी की बात करते हैं तो साथ में हम माँ पार्वती को भी साथ में पूजते हैं, और शिव और पार्वती को हिंदू धर्म में।
1: चलिए श्रोताओं, भक्ति भरा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और
0: शिव जी जो है
1: अगला भक्ति गान, और आपको पता है जब हम शिव जी की बात करते हैं तो साथ में हम माँ पार्वती को भी साथ में पूजते हैं।
0: ये दोनों शिव और पार्वती को हिंदू धर्म में सबसे आदर्श
1: पति पत्नी माना जाता है।
0: भगवान
1: शिव जी जो है
0: शिव जी और माँ
1: पार्वती पर आधारित
0: है। माता पार्वती प्रेम शक्ति।

0: चलिए
1: बहुत सारे भक्तगण जो है दुनिया भर में और सभी सुनने वालों के नाम
0: बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों को पूजती है। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो चलिए इस कार्यक्रम में हम गुरुद्वारा साहब भक्ति गीत जो है सभी सुनने वालों के नाम हम कर रहे हैं।

बात। तो चलिए वापस कल हम मिल रहे हैं हमारी तरफ से आप सभी को शुक्रिया। चलिए श्रोताओ, भक्ति धारा कार्यक्रम के अंत तक आप पहुंचे हैं। वैसे कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाली है और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार उर्दू

करे भक्त

0: इस बात की पुष्टि डॉक्टर शैलेश चिनिया द्वारा की गई। इस संवेदनशील मामले से देश में फैले तनाव के बीच प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन आमोला ने जनता से शांति बनाए रखने की मांग की और उन्होंने बताई जाती है आक्रोश के कारण और कोई दुखद घटना पेश नहीं आनी चाहिए चिनिया द्वारा की गई। प्रधानमंत्री संवेदनशील मामले से देश में फैले तनाव के बीच प्रधानमंत्री संपत्ति है और नवीन आमोला ने जनता से शांति बनाए रखने की मांग की और उन्होंने कहा कि रोकने में सहयोग करेगी। आक्रोश के कारण और कोई दुखद घटना पेश नहीं आनी चाहिए।
1: जो हुआ वो प्रधानमंत्री ने अपने पेश पर लिखा। हमारे देश की स्थिरता उम्मीद है बहुमूल्य

0: संपत्ति है और बनाए रखते हुए संयम और समझदारी से काम और बिगड़ने से रोकने में सहयोग चाहिए सामने आने चाहिए और न्याय की प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो अस्वीकार्य है। भारत से विशेषज्ञों की व्यवस्था बनाए रखते हुए संयम और समझदारी से काम लेगी और सच्चाई सामने आनी चाहिए और न्याय की प्रक्रिया भारत के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में से एक किम्स ऑपरेशन के लिए आज भारत से करीब 13 स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम मॉरिशस पहुंच रही है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 5 टेक्निकल एजेंट शामिल होंगे। कल विक्टोरिया के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में से एक किम्स हॉस्पिटल की बैठक लगाई डॉक्टर राकेश झाला की निगरानी में आ जा सके। ये टीम इस सर्जरी के लिए मॉरिशस में शुक्रवार को गोली चलने की आने से पहले स्वास्थ्य मंत्री ने पुलिस की तरफ से विक्टोरिया अस्पताल में सूचित किया गया कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ एक बैठक लगाई ताकि हालत का जायजा लिया जा सके। इंटरडिक्ट किया गया है आज में शुक्रवार गोली अदालत में पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही में पुलिस की तरफ से कल जारी कम्युनिकेट में सूचित किया गया कि पुरुष पुलिस सर्जन भी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद न करने के लिए इंटरडिक्ट किया गया है। इंटरडिक्ट किया गया है आज पुलिस के रोजगार की अदालत में पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही कानून का पालन स्थल पर मौजूद जा रहा है। पुरुष पुलिस अफसरों को भी मॉरिशस की प्रशासनिक परिषद ने न करने के लिए इंटरडिक्ट किया गया है जिसकी जान खतरे में थी। पुलिस के अनुसार इस मामले को पूरी गंभीरता से अगले 2 दिसंबर का पालन करते हुए देखा जा रहा है। इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज और मॉरिशस की प्रशासनिक परिषद ने टीम हॉपवेन समय तक ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज नियुक्त किया है। रेगुलेटरी एग्जीक्यूटिव कमेटी में काम किया है। वे अगले 2 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय खबरों में नेपाल में गोरखा इलाके में कल अचानक बाढ़ उतर आई मार्केट के अनुभवी मकान और पुल एक दशक से ज्यादा समय तक ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी जबकि 5 लोग अभी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में काम किया है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में
1: अंतर्राष्ट्रीय खबरों में नेपाल में गोरखा इलाके में कल अचानक बाढ़ उतर आई जिससे कई मकान और पुल अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। मुनि सोमी पैदाइशी नाम मुनिगाड़ी जो पद्मिनी नाम से ज्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई है।
0: समाचार सुनिए। 63 साल की सेल्वों मुरा फ्यूनरल सेंटर रोड मुनिगाडू जो पद्मिनी नाम से ज्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। आज दिन के 2:30 बजे की अर्थी आज दिन के 2:30 बजे मुरा फ्यूनरल सेंटर रोड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमशः 2:30 PM शोक में डूबे परिवार के साथ MBC.MU
2: Radio Mauritius 819 kilohertz पर ये है Radio Mauritius
3: Radio Mauritius
2: on MBC Play Radio Mauritius MBC.MU
3: Radio Mauritius
2: 819 kilohertz पर ये है Radio Mauritius
3: Radio Mauritius
2: Radio Mauritius
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وہی خدا ہے جو تقدیریں سنوار دیتا ہے بسم اللہ ہے جو تقدیریں سنوار کے نام سے شروع وہی خدا جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وہی تو خوش زمینوں پہ تقدیریں سنوار دیتا ہے وہی خدا ہے جو تقدیریں سنوار دیتا ہے آپ بفضل خدا ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے اس وقت آپ کے حکم سے چلتی ہیں ہماری اٹھو نشریات شم تو فروش زمینوں پہ ابر سیدہ صبح کے ساتھ موزے سامعین اس اٹھو نشریات میں ہر پیر کی طرح آپ فضل خدا آپ فرمائیں گے تلاوت اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اٹھو نشریات یہ زندگی یہ فروش ہیں یہ زمین و آسمان یہ چاند ستارے یہ سمندر یہ ہوائیں اور ہر پیر کی طرح آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک ہم وہی رب ہیں جو اندھیروں میں روشنی پیدا فرماتا ہے یہ زندگی یہ سانس ہیں

ये जमीनों आसमान ये चांद सितारे और अपनी ये समंदर से ये हवाएं और ये बारिशें सब हमारे रब की तो आइए आज के इस प्रोग्राम का वही रब है जो अंधेरों में रोशनी पैदा फरमाता है परेशान हाल बंदों की फरियाद सुनता है और अपनी रहमत से मायूस दिलों में उम्मीदें जगाता है तो आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज अल्लाह ताला के मुकद्दस कलाम से करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तौसीम मीम। ये किताब रोशन की आयतें हैं। ऐ पैगंबर, शायद तुम इस रंज से कि ये लोग ईमान नहीं लाते अपने आप को हलाकत में अल्लाह का नाम लेकर अगर हम जो चाहें तो इन पर आसमान से कोई निशानी उतार दें, फिर इनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं। ये किताब रोशन की आयतें रहमान की तरफ से कोई नई नसीहत नहीं आती, तुम इस रंज से ये लोग ईमान नहीं ला लेते हैं अपने आप को हलाकत में ला चुके। अब अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से कोई निशानी उतार दें, जिसकी हंसी हो, इनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं, और इनके पास रहमान की तरफ से कोई नई नसीहत नहीं आती मगर ये उससे मुंह फेर लेते हैं। सो ये तो झुटला चुके, अब इनको उस चीज की हकीकत मालूम हो जाएगी जिसकी हंसी उड़ाते थे।

क्या इन्होंने जमीन की तरफ नहीं देखा कि हमने उसमें हर किस्म की कितनी नफीस चीजें उगाई हैं? कुछ शक नहीं कि इसमें निशानी है, मगर ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार गालिब है। क्या इन्होंने जमीन की तरफ नहीं देखा कि हमने उसमें हर किस्म की कितनी नफीस चीजें उगाई हैं? कुछ शक नहीं कि इसमें निशानी है, मगर ये अक्सर ईमान लाने वाले।

0: और जब तुम्हारे परवरदिगार ने मूसा को पुकारा कि जालिम लोगों के पास जाओ यानी कौम फिरौन के पास, क्या वो डरते नहीं? उन्होंने कहा कि मेरे परवरदिगार, मैं डरता हूँ कि वो मुझे झूठा समझे और मेरा दिल तंग होता है।
1: और जब तुम्हारे परवरदिगार ने मूसा को पुकारा कि जालिम लोगों के पास जाओ
0: मेरे साथ
1: यानी कौम फिरौन के पास,
0: उन लोगों का मुझ पर डरते
1: गुनाह यानी फिरौनी,
0: उन्होंने कहा कि मेरे परवरदिगार,
1: सो मुझे ये डर है कि मुझको वो मुझे झूठा समझे,
0: फरमाया
1: और मेरा दिल तंग होता है
0: और मेरी जबान हमारी निशानियां लेकर
1: तो हारून को हुक्म
0: हम तुम्हारे साथ
1: मेरे साथ चले।
0: सो दोनों लोगों के पास जाओ और कहो
1: फिरौनी तमाम जहानों के मालिक के भेजे,
0: मुझे ये भी डर है कि मुझको मारे
1: हैं कि आप बनी इस्राइल को हमारे साथ जाने की
0: इजाजत,
1: बस तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं।
0: सो दोनों फिरौन के पास जाओ और कहो कि हम तमाम जहानों के मालिक के भेजे हुए हैं, इसलिए आए हैं कि आप बनी इस्राइल को हमारे साथ जाने की

फिरौन ने मूसा से कहा, क्या हमने तुमको जबकि तुम बच्चे थे परवरिश नहीं किया था, और तुमने बरसों हमारे यहाँ उम्र बसर नहीं की, और तुमने एक और काम किया था जो किया तुम नाशुक्रे मालूम होते हो। फिरौन ने मूसा से कहा, क्या हमने तुमको जबकि तुम बच्चे थे परवरिश नहीं किया था, और तुमने बरसों हमारे यहाँ उम्र बसर नहीं की, और तुमने एक और काम किया था जो किया तुम ना

0: मूसा ने कहा कि हाँ, वो हरकत मुझसे नागहां सरजद हुई थी और मैं खताकारों में था। फिर जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं तुम्हारे पास से फिरार हो गया। फिर मेरे रब ने मुझको नबुवत और इल्म बख्शा और मुझे पैगंबरों में से किया। मूसा ने कहा,
1: क्या यही एहसान है जो आप मुझ पर रखते हैं कि आपने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है?
0: फिर जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं तुम्हारे पास से फिरार हो गया। फिर मेरे रब ने मुझको नबुवत और इल्म बख्शा और मुझे पैगंबरों में से किया। और क्या यही एहसान है जो आप मुझ पर रखते हैं कि आपने बनी इसराइल को

0: फिरौन ने कहा, और रब्बुल आलमीन क्या होता है? फरमाया, आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक, बशर्ते कि तुम लोगों को यकीन हो। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द के लोगों से कहा कि क्या तुम सुनते नहीं?
1: फिरौन ने कहा,
0: मूसा ने कहा, आलमीन क्या होता है?
1: तुम्हारे
0: फरमाया, दादों का भी मालिक,
1: आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक,
0: जो तुम्हारी तरफ
1: बशर्ते कि तुम लोगों को यकीन हो।
0: मूसा ने कहा,
1: अपने इर्द गिर्द के लोगों से
0: मगरिब और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है सब का मालिक।
1: मूसा ने कहा कि
0: बशर्ते
1: कि
0: तुम्हारे समझ हो।
1: अगले बाप दादों का भी मालिक,
0: अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया
1: तो मैं तुम्हें
0: तुम्हारी तरफ
1: भेजा गया है
0: बावला। मूसा ने कहा,
1: मूसा ने कहा, आपके पास
0: रोशन
1: मशरिक और मगरिब और
0: जो कुछ इन दोनों के दरमियान है सब का मालिक
1: हो, तो उसे
0: बशर्ते कि तुम को समझ हो।
1: फिरौन ने कहा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा।
0: मूसा ने कहा,
1: खा मैं आपके पास रोशन चीज लाऊं यानी मोजेजा।
0: फिरौन ने कहा, अगर सच्चे हो तो उसे लाओ दिखाओ।
1: बस उन्होंने अपनी लाठी डाल दी तो वो उसी वक्त साफ अजदहा बन गई, और अपना हाथ जो निकाला तो उसी दम देखने वालों के लिए सफेद बुराक नजर आने लगा।
0: बस उन्होंने अपनी लाठी डाल दी तो वो उसी वक्त साफ अजदहा बन गई, और अपना हाथ जो निकाला तो उसी दम देखने वालों के लिए सफेद बुराक नजर आने लगा।

0: के इसको और इसके भाई को कुछ मोहलत दीजिए
1: और शहरों में
0: फिरौन ने अपने गिर्द के सरदारों से कहा
1: सब माहिर जादूगरों को जमा करके
0: जादूगर पास ले आए,
1: चाहता है कि तुमको अपने जादू के जोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे।
0: पर जमा हो गए
1: तुम्हारी क्या राय?
0: लोगों से कह दिया गया,
1: उन्होंने कहा कि इसको और इसके भाई को कुछ मोहलत दीजिए,
0: अगर जादूगर शहरों में नहीं
1: हम उनके पैरा हो जाएं
0: कि सब माहिर जादूगरों को जमा करके आपके पास ले आए।
1: आखिर जादूगर एक मुकर्रा दिन की मियाद पर जमा हो गए और लोगों से कह दिया गया कि तुम सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए ताकि अगर जादूगर गालिब रहे तो हम उनके पैरों हो जाएं।
0: फिर जब जादूगर आ गए तो फिरौन से कहने लगे कि अगर हम गालिब रहे तो हमें सिला भी अता होगा। फिरौन ने कहा हाँ, और तब तुम मुकर्रबों में भी दाखिल कर लिए जाओगे।
1: फिर जब जादूगर आ गए तो फिरौन से कहने लगे कि अगर हम गालिब रहे तो हमें सिला भी अता होगा। फिरौन ने कहा हाँ, और तब तुम मुकर्रबों में भी दाखिल कर लिए जाओगे।

मूसा ने उनसे कहा कि जो चीज डालनी चाहते हो डालो। तो उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली और कहने लगे कि फिरौन के इकबाल की कसम हम ही जरूर गालिब रहेंगे। फिर मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वो उन चीजों को जो जादूगर ने बनाई थी जो चीज डालनी चाहते हो जादूगर सजदे में गिर पड़े। रस्सियां और लाठी डाली हम तमाम कहने लगे कि फिरौन के बाल की कसम जो हम ही जरूर और हारून का रब है। फिर मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वो उन चीजों को जो जादूगरों ने बनाई थी निगलने लगी। तब जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम तमाम जहानों के मालिक पर ईमान लाए जो मूसा और हारून।

0: फिरौन ने कहा, क्या इससे पहले कि मैं तुमको इजाजत दूं तुम उस पर ईमान ले आए? बेशक ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया है, सो अनकरीब तुम इसका अंजाम मालूम कर लोगे कि मैं तुम्हारे हाथ और मुखालिफ समत के पांव काट दूंगा।
1: फिरौन ने कहा,
0: तुम सब क्या इससे पहले कि मैं तुमको इजाजत दूं तुम उस पर ईमान ले आए
1: की बात नहीं,
0: बेशक ये तुम्हारा बड़ा है परवरदिगार को जादू सिखाया
1: जाने वाले हैं,
0: सो अनकरीब तुम इसका अंजाम मालूम कर लोगे,
1: हमारे गुनाह बख्श देगा और मुखालिफ समत के पांव काट दूंगा ईमान लाने वालों में
0: सबको सूली पर चढ़ा दूंगा।
1: उन्होंने कहा कि कुछ नुकसान की बात नहीं, हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट जाने वाले हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमारे गुनाह बख्श देगा, इसलिए कि हम अव्वल ईमान लाने वालों में हो गए।

और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रातों रात ले निकलो, अलबत्ता फिरौनियों की तरफ से तुम्हारा ताकुब किया जाएगा। तो फिरौन ने शहरों में नकीब रवाना किए और कहा कि ये थोड़े से लोगों की जमात है,

0: ये हमसे और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रातों रात ले निकलो,
1: आखिर हमने उनको
0: फिरौनियों की तरफ से तुम्हारा चश्मों से निकाल दिया।
1: तो फिरौन ने शहरों में नफीस रवाना किए
0: से और कहा कि ये थोड़े से लोगों की जमात है
1: और ये हमसे गुस्सा खा रहे हैं,
0: बनी इसराइल को
1: हम सब इनसे खतरा रखते हैं,
0: आखिर हमने उनको
2: बाहों और चश्मों
0: से निकाल दिया
2: और
0: खजानों और नफीस मकानात से
2: उनके साथ
0: हमने इसी तरह किया
2: और
0: इन चीजों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया।
2: वो किताब जिसका एक एक खुलासा 22 से अजर कुरान पाक वो अजीम किताब है जो इंसानियत के लिए हिदायत का सर चश्मा है, दिलों का नूर है, परवरदिगार हमें कुरान शरीफ समझ ईमान के लिए और उसकी तालीमात पर अमल करने की किताब जिसका एक एक होता।

तो अल्लाह ताला ने बादशाह बने तो आपने लश्कर तैयार किया। अब मामला ये था कि इस वक्त गैर मुस्लिमों और जालूत के साथ लड़ाई के लिए रवाना बादशाह था। रास्ते में एक मकाम पर पहुंचकर ये बनी इसराइल पर बहुत जुल्म किया करता था। हजरत तालूत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बादशाह बने तो आपने एक लश्कर तैयार किया, एक नहर के जरिए आजमाने वाला और जालूत के साथ लड़ाई के लिए रवाना हुए। उस नहर के जरिए तुम्हारी आजमाइश की जाएगी। आपने फरमाया सूरत ये होगी कि फमन मुशरीबा मिनहु फलहस मिन्नी। तर्जमा कुरान कंजुल ईमान, बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर के जरिए आजमाने वाला है, यानी अभी आगे एक नहर आएगी, उस नहर के जरिए तुम्हारी आजमाइश की जाएगी। आजमाइश की सूरत ये होगी तो जो इस नहर से पानी पिएगा वो मेरा नहीं है और जो ना पिएगा वो मेरा है, सिवाय उसके जो एक चिल्लू अपने हाथ से ले, यानी जो इस नहर से पानी पी लेगा वो हमारे लश्कर का हिस्सा नहीं रहेगा, उसे वापस जाना होगा। इस नहर से पानी पिएगा वो हमारे साथ ही रहेगा और जो ना पिएगा वो मेरा है, हाथ से सिवाय उसके जो एक चिल्लू अपने हाथ से ले भर ले। ये गोया बनी इसराइल का, जो इस नहर से पानी पी लेगा वो हमारे नहर पर हिस्सा नहीं रहेगा, उसे वापस जाना होगा, प्यास लगेगी और जो नहीं पिएगा वो हमारे साथ ही रहेगा। शरीबु मिनहु एक चिल्लू यानी हाथ से मिनहु पी लिया तो कोई तो उनमें से थोड़े से लोगों के अलावा। ये गोया बनी इसराइल का एक इम्तिहान लिया जा रहा था, चुनाचे जब नहर पर फरमाते हैं कि हजारों के लश्कर में से 313 अफराद थे जिन्होंने पानी नहीं पिया, फशरीबु मिनहु इम्तिहान में नाकाम हो गए, उनसे प्यास बर्दाश्त ना हुई और वो थोड़े से लोगों के अलावा सब ने इस नहर से पानी पी लिया। हजरत तालूत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हजारों के लश्कर में से सिर्फ 313 अफराद थे जिन्होंने पानी नहीं पिया था कि सामने जालिम सब इस इम्तिहान में नाकाम हो गए, जालूत की बड़ी से प्यास बर्दाश्त ना हुई और वो 313 अफराद थे। आपस में एक दूसरे में बातें होने लगी, चुनाचे पानी पीने वाले जालूत का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, मगर जो मामला यूं था कि सामने जालिम और जाबिर बादशाह मिल जालूत की बड़ी फौज थी, इधर ये सिर्फ 313 अफराद थे। आपस में एक दूसरे में बातें होने लगी कि हम बहुत कम हो गए हैं, कसीर आज तो हम जालूत का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, मगर जो पक्की यकीन वाले थे कुरान कंजुल इरफान बहुत दफा छोटी जमात था अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर गालिब आई है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अपने मकसद के लिए डट जाने वालों के साथ है, लिहाजा ये ख्याल ना करो कि हम कंजुल इरफान बस अपने नेक मकसद जमात डट जाओ, अल्लाह की मर्तबा से बड़ी जमात पर गालिब आई है, पर गालिब अल्लाह सब्र करने वालों के साथ ही हुआ। जब लड़ाई के मैदान में अल्लाह पाक सब्र करने वालों में अल्लाह पाक ने मकसद के लिए डट जाने वालों के साथ है, लिहाजा ये ख्याल ना करो कि हम तर जालूत की तरफ फेंका, अपने नेक मकसद के लिए डट जाओ, जर बहुत मर्तबा थोड़ा ना जालू बड़े लश्कर पर गालिब आ जाता है। चुनाचे ऐसा ही हुआ, जब लड़ाई के मैदान में पत्थर उसे इस खोपड़ी पर लगा, अल्लाह पाक के नबी हजरत दाऊद अलैहि सलाम भी मौजूद जालूत के मरते ही सारा लश्कर जालूत की तरफ फेंक गया और अल्लाह पाक ने ताकत-ए-नबूवत इज्जत रहमतुल्लाह ताला ने जाना काबिल यकीन और बेमिसाल फतह अता फरमा दी। प्यारे प्यारे एक पत्थर इस्लामी खोपड़ी पर लगाने के नाम सर पर आने वाकया हमने सुनने की सआदत हासिल जालूत के इससे मरते ही सारा लश्कर शिकस्त खा गया और अल्लाह पाक ने हजरत तालूत रहमतुल्लाह को नाकाबिले यकीन जिस्मानी सेहत और इल्म इन दोनों के प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाई और सामेईन के नाम ये एक कुरानी वाकया हमने सुनने की सआदत हासिल की इससे हमें सीखने के चंद इसराइल पर फजीलत की वजह ये जिक्र इरशाद फरमाई। सबसे पहला सबक तो ये है कि जिस्मानी सेहत और इल्म इन दोनों के को अपने अंदर मजबूत करना चाहिए। देखिए अल्लाह पाक और जिस्म में कुशादा तमाम बनी इसराइल पर फजीलत यानी आपको जिस्मानी ताकत भी अता की गई और इल्म भी अता किया गया। ये जो दोनों चीजें हैं ये दोनों एक साथ निभानी होती है। नजर आते हैं वो यूं है और जिस्म में जो इल्म का शैदाई होता है वो अपनी सेहत की तरफ आपको जिस्मानी ताकत भी अता की गई और इल्म भी अता किया गया। दो बजे तक जाग रहे हैं, ये जो दोनों चीजें हैं इल्मी बहस हो रही है, एक साथ निभानी चल रही है, यूं हमारे हालात ज्यादा जो माशरे में नजर आते हैं वो यूं है, खुराक की जो इल्म का शैदाई होता है वो अपनी सेहत की तरफ तवज्जो कम करता है, मसाइल हो जाते हैं, एक एक दो बजे तक जाग रहे हैं, किताबें पढ़ रहे वाले होते हैं उनकी उम्मीद बहस हो रही है, तहकीकात चल रही है, जिम जा जाकर ज्यादा मेहनत करके अपनी सेहत और खुराक की ज्यादा तरफ ज्यादा तवज्जो ना देने की वजह से उनकी सेहत के मसाइल हो जाते हैं देखने को मिलता है। जो लोग अपनी सेहत पर जनरल बात करने वाले होते हैं उनकी उम्र इल्म दीन की तरफ तवज्जो नहीं मिलेंगी, यानी जिम वगैरह जाते हैं, वर्जिश करते हैं, जाता है कि बंदगी का इल्म और सेहत दोनों की तरफ बराबर है, मगर इसके अंदर इल्म कम होता है के शौक देखिए हम रूह और जिस्म का मजमुआ है, ये मैं जनरल बात कर रहा हूं कि गिज़ा है के उलट
اچھی خوراک مناسب مثالیں آرام وغیرہ ہمارے جسم کی غذا ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ بندگی

0: इल्म और सेहत दोनों की तरफ बराबर तवज्जो हो, रूह बीमार हो गई तो इंसानियत मर जाएगी।
1: हम रूह और जिस्म का बेजमीर होकर रह जाएगा।
0: इल्म हमारी रूह से
1: बीमार पड़ गया तो अच्छी खुराक मुनासिब नहीं रहेगा,
0: आराम वगैरह। लिहाजा
1: हमने दोनों को मजबूत रखना,
0: रूह और जिस्म दोनों ही
1: दुनिया जमा कर दी गई,
0: ये तो निजाम ही चलेगा।
1: रूह बीमार हो गई तो इंसानियत मर जाएगी,
0: सुल्तान
1: आदमी बेजमीर होकर रह जाएगा।
0: जिस्म बीमार पड़ गया तो बिलाखिर इंसान ही नहीं रहेगा।
1: लिहाजा
0: हमने दोनों को मजबूत रखना,
1: दुनिया जमा कर भी ही
0: मुआदी से पाक में है रसूल जीशा।
1: जसदी ही इंदहु
0: सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
1: कुतु
0: यौमी
1: फकअन्नमा
0: आमीना
1: हीजत
0: लहु
1: तर्जमा,
0: जिसने इस हाल में सुबह की
1: जसदी ही
0: इसका दिल मुतमईन
1: बदन तंदुरुस्त,
0: फी जसदी ही
1: और इसके पास
0: एक दिन की खुराक हो,
1: यौमी ही फकअन्नमा
0: दुनिया जमा कर दी गई, हीजत
1: लहु दुनिया,
0: पता चला
1: तर्जमा जिसने इस हाल में सुबह
0: अजीम तरीन
1: इसका दिल मुतमईन
0: बदन तंदुरुस्त
1: जाहिर है
0: और इसके पास एक दिन
1: तो नमाज़ों में चुस्ती रहेगी,
0: तिलावत ज्यादा कर पाएंगे,
1: नवाफिल की कसरत कर पाएंगे,
0: ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ पाएंगे,
1: जिस्मानी सेहत भी
0: दौड़ कर सकेंगे,
1: नेमतों में
0: सफर कर सकेंगे,
1: नेकी की दावत की धूम मचाएंगे,
0: सेहतमंद होंगे
1: तो नमाजों में चुस्ती रहेगी,
0: तिलावत ज्यादा कर पाएंगे,
1: नवाफिल की कसरत कर पाएंगे,
0: ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ पाएंगे,
1: खिदमत दीन के लिए
0: दौड़ कर सकेंगे,
1: नफिलों
0: में सफर कर सकेंगे,
1: सुलेमान दावत
0: धोने मचाएंगे,
1: अगर बीमार पड़ गए,
0: इन दोनों को प्यारे
1: आका मकी मंजूरी
0: बढ़ गई,
1: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
0: आपस से
1: भाई भाई मनाया था।
0: हो सकते
1: एक दिन हजरत सुलेमान फारसी
0: रजी अल्लाह तआला अनु का
1: भरपूर हजरत अबू दर्दा
0: रजी अल्लाह तआला अनु से मिलने के लिए
1: सुलेमान फारसी
0: लाए और हजरत
1: आपकी जोजा मोहतरमा हजरत उम्मे दर्दा
0: इन दोनों को प्यारे
1: आका मकी मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि
0: वसल्लम ने पर्दे
1: की एतियाद में भाई बताया कि ये
0: सुलेमान फारसी
1: एक दिन हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अनु
0: बिल्कुल
1: हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अनु से मिलने के
0: लिए
1: आपकी जोजा मोहतरमा हजरत उम्मे दर्दा
0: रजी अल्लाह तआला अनु ने बात सुनी
1: तो हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अनु के लिए खाना मंगवाया,
0: एतियाद के साथ बताया कि
1: ए सुलेमान फारसी
0: आप फरमाए ए अबू दर्दा
1: जब तक आप नहीं खाएंगे
0: मैं भी नहीं रखते,
1: दिन भर रोजा रखते हैं,
0: सारी रात इबादत करते हैं,
1: उन्होंने खाना खा लिया।
0: हजरत सुलेमान फारसी
1: रजी अल्लाह तआला अनु ने बात सुनी
0: तो हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अनु
1: ने खाना मंगवाया,
0: फरमाए अल्लाह तआला अनु ने रोक लिया,
1: कहा आप
0: जब फजर का वक्त
1: फरमाए ए अबू दर्दा
0: जब तक आप नहीं खाएंगे
1: मैं भी नहीं खाऊंगा।
0: जब फजर का वक्त करीब हुआ तो कहा आप उठिए
1: और मेहमान
0: उठकर नमाज़
1: भी हुकूक है।
0: अब हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भाई को नसीहत करते हुए फरमाया, ए अबू दर्दा
1: यानी
0: आप इबादत भी लाजमी कीजिए मगर साथ ही साथ
1: अपनी सेहत का भी ख्याल
0: भी हक है,
1: घर वालों के भी
0: खाने का भी हक है
1: और जब मेहमान आया हो
0: के तो भी साथ भी,
1: लिहाजा हर एक को इसके हुकूक दीजिए।
0: जब ये बात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
1: के हुजूर अगर साथ ही साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
0: ने इरशाद फरमाया घर वालों
1: के भी हुकूक अदा कीजिए और जब मेहमान आया हो
0: तो उसके साथ भी,
1: सुलेमान फारसी ने सच कहा,
0: पता चला हमारी अपनी जान।
1: जब ये बात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर अर्ज की गई तो
0: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे,
1: दिन भर नफिल
0: रोजे रखा करते थे,
1: जाहिर है
0: मुसलसल रोजे रखने मुसलसल रातों को जागने के सबब कमजोरी हो जाने का
1: पता चला, हमारी अपनी जान
0: आराम लेने
1: के दोपहर तक सोते हैं,
0: हमारे यहाँ तो रात नहीं होता,
1: फिल्में देखने की,
0: सोशल मीडिया वगैरह
1: दोपहर
0: तक सोते हैं और
1: नहीं होता,
0: नींद पूरी नहीं होती,
1: खाने की तरतीब ठीक नहीं रहती,
0: इबादत के मामले में
1: हमें हुक्म है कि अपने आराम और सेहत का ख्याल रखा है,
0: मुनासिब
1: आराम ना
0: मिलने
1: के सबब सोचिए
0: अंदरूनी आज़ा
1: बल्कि गुनाहों के मामले में क्या हुक्म
0: होगा
1: और यूं आदमी बीमार पड़ जाता है,
0: डबल हलाकत।
1: अब गौर गुनाहों में
0: रात गवाई,
1: इबादत के मामले में हमें
0: गुजारा
1: अपने आराम और सेहत का ख्याल रखें,
0: तबा
1: म्याना रबी से इबादत करें तो सोचिए फजूलियात,
0: कब्र व आखिरत,
1: बल्कि गुनाहों के मामले में
0: क्या हुक्म होगा
1: ना उधर के रहे,
0: ये तो
1: प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी
0: डबल हलाकत है।
1: गुनाहों में रात गवाई,
0: अपनी सेहत का ख्याल रखना,
1: में गुजारा सेहत खराब करके

0: जानी सेहत के साथ साथ गुना की सेहत का भी ख्याल रखना है। कब्र को भी इसकी नजर के रहे और रूह की गिजा क्या है
1: प्यारे प्यारे मीठे मीठे
0: इस्लामी भाइयों,
1: इसमें तो आजकल बहुत ही
0: हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। किताबें
1: पढ़ने का जहन यूं समझ लीजिए कि
0: जिस्मानी सेहत के साथ नहीं होता,
1: रूह की सेहत का भी ख्याल रखना है।
0: पर गौर करें,
1: रूह को भी
0: मुसलमान
1: दीन
0: क्या हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कोई किताब मुकम्मल पढ़ी है?
1: आज
0: क्या हमने कुरान करीम मुकम्मल तर्जमा किताबें पढ़ने का जहन यूं समझ लीजिए कि अच्छे अच्छों का नहीं होता?
1: क्या हम नमाज रोजा हज
0: जकात के मुताबिक दीनी मसाइल
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जानते हैं?
0: क्या हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कोई
1: जैसे हमें किताब मुकम्मल पढ़ी है?
0: क्या हमने कुरान करीम मुकम्मल तर्जमा तफसीर के साथ मसाइल
1: पर कोई मुतबर किताब या रिसाला भी पढ़ा है?
0: नमाज रोजा हज जकात के मुताल्लिक दीनी मसाइल
1: की दीनी किताबों की तरफ
0: इल्म दीन
1: वुजू बचपन में अम्मी अब्बू जान ने जैसे तैसे हमें सिखाया लिया था,
0: दीन सीखने वाले
1: पर आज तक हमने भरे हुए
0: आने वाले भी,
1: या वुजू के मसाइल पर कोई मुतबर किताब या रिसाला भी पढ़ा है?
0: मीठे मीठे इस्लामी भाइयों
1: की बात है,
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: मुसलमानों की दीनी कुरानी की तरफ
0: इल्म दीन सीखने
1: कुछ मदनी की तरफ
0: बहुत कम तवज्जो, और
1: काश हमें इल्म दीन
0: हमारे जिस्म पढ़ने वाले पढ़ाने वाले
1: और हमारी रूह बन जाए,
0: ये दोनों चीजें हमें जरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों
1: भी हो
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: हमने
0: और जिस्म की गिजा
1: कुछ मदनी फूल
0: खाना पीना वगैरह
1: और
0: हमें इन दोनों का ख्याल रखना है।
1: हमारी जिस्म
0: अपने सेहत
1: को तंदुरुस्त
0: और हमारी रूह
1: टाइम टेबल बनाए,
0: ये दोनों चीजें हमें जरूरी है।
1: सोएं टाइम पर, जागें,
0: फजूलियात में
1: और रूह की गिजा
0: इल्म है
1: और
0: जिस्म की गिजा
1: जैसे खुराक खाना पीना वगैरह
0: खाने पीने,
1: तो हमें इन दोनों का ख्याल रखना है।
0: इंशाअल्लाह
1: अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखें
0: तो पाएंगे
1: जो रूह की हमारी गिज़ा है वो भी इंशाअल्लाह
0: जबरदस्त
1: मिलने वाला हो जाएगी।
0: किया है जैसे कहते हैं नेक अमल करने की तो
1: उसमें कुछ क्वेश्चन आमीन
0: अगर हम इनको फॉलो
1: करें
0: इंशाल्लाह हमारी रूटीन अच्छी हो जाएगी,
1: हमारी जिस्मानी सेहत
2: भी अच्छी होगी और रूहानी
0: जो रूह की हमारी रिजा है वो भी इंशाल्लाह
2: हमें मिलना शुरू हो जाएगी।
0: अल्लाह पाक हमें बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
2: आमीन
0: आमीन।
2: बयान अल्लाह
0: ताला सल्लल्लाहु
2: अता फरमाए। अभी आप सब कुरान मजीद के वाकयात से मुबल्लिग अंदावते इस्लामी
0: कारी
2: अब्दुल माजिद
0: अत्तारी साहब
2: का सामीन
0: नहायत
2: हमें बताता है कि कामयाबी सिर्फ तादाद
0: उन्हें
2: ताकत या दौलत से नहीं मिलती
0: फरमाए और
2: बल्कि अल्लाह ताला की मजीद के वाकयात से और
0: नसीहत हासिल करने की तौफीक दे। आमीन।

0: मौजूदा
1: सामीन हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान अल्लाह ताला पर आज़माइशें भरोसा करता है, सब्र व इस्तिक़ामत इख्तियार करता है, लेकिन एक मोमिन रास्ते पर यकीन साबित अपने अल्लाह ताला की मदद और उसके शामिल हाल होती है। भरोसा जिंदगी में मुश्किल आती है, मुश्किल आजमाइशें आती है, भरोसा कभी हालात हमारे मवाफिक मुश्किल खुशा, लेकिन उसी के हुक्म से हमेशा अपने रब की रहमत और कुदरत पर कायम रहता है। भरोसा रख खुदा पर।

0: इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पसीर हो जाएगी। आप तमाम साथियों ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं।
1: हमारे घरों को खुशियों से आबाद रखे और हम सबको और अपनी दुआओं में दुनिया की भलाइयां नसीब फरमाए। आमीन।

0: रेडियो मॉरिशस
1: के बराबर कोई नहीं।
2: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

या देवी सर्वभूतेषु मा ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः ओम एम हिम क्लीम ब्रह्मचारिण्यै नमः आ विशेष मंत्रों बीज मंत्रों अथवा देवी मंत्रों साथ अपने माँ ने प्रसन्न करी शकाय छे अने ते साथे ज धार्मिक मान्यता अनुसार श्रद्धापूर्वक मंत्र जाप करवाथी मन ने शांति प्राप्त थाय छे साधक में आत्मविश्वास तथा संकल्पनी शक्ति वधे छे अने ते साथे ज ब्रह्मा ब्रह्मचारिणी नव दुर्गा ना बीजा स्वरूप ने कहवाय छे अने तेमनुं नाम तपस्या अने ब्रह्मचर्य ना आचरण साथे जोड़ायेलू छे धार्मिक कथाओ अनुसार माताजीए भगवान विष्णु भगवान शिव ने पति रूपे हाजी भगवान शिव ने पति रूपे प्राप्त करवा माटे कठोर तपस्या करी हती अने तेमनुं स्वरूप भक्तों ने धीरज संयम अने लक्ष्य प्रत्ये अड़ग रहेवानी प्रेरणा पण आपे छे ते साथे ज नवरात्रिना बीजा दिवसे माताजी नी पूजा करवाथी जीवन में सकारात्मकता शांति अने समृद्धि आवे छे ने तेवी भक्तों नी मान्यता छे आ दिवसे माताजी नी आरती करीने मंत्रोनो जाप करीने भक्तो तेमना आशीर्वाद प्राप्त करवानी कामना करे छे अने माँ ब्रह्मचारिणीनी उपासना आपणने शीखवे छे के जीवन में कोई पण लक्ष्य प्राप्त करवा माटे धीरज मेहनत संयम अने दृढ़ संकल्प होवो बहु जरूरी छे नवरात्रना आ पवित्र दिवसे माताजीनुं स्मरण करीने जीवनमां सारा विचारो अने सदकर्मो अपनावानो संकल्प करी शकाय छे।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: 大家下午好，感谢您选择留在这个频道，我是张大威，今天很期待与大家分享很多的歌曲，希望音乐能为您带来一些不一样的心情。

有些日子比较难熬，但愿音乐能陪着你一起撑下去。

यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को एमबीसी की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस नवरात्रि।

घड़ी मिला लीजिए, समय 2:30 बज चुके हैं। ये रेडियो मॉरिशस का प्रसारण है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना, जहाँ कहीं से भी साथ जुड़े हैं, तहे दिल से आप सभी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। जय माता दी आप सभी को। नवरात्र के इस पावन पर्व में सभी ओर बस माँ की कृपा बनी रहे, सभी के जीवन के कष्ट दूर हों और दुख समाप्त हो, बस हम तो यही प्रार्थना करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम स्वागत करेंगे। जी हाँ, 4028085 पर और चलिए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। और बिल्कुल नवरात्र का पावन पर्व है, अभी से लेकर 4 बजे तक हम हैं आपका साथ देने के लिए आपकी पसंद कार्यक्रम में। तो आइए सुहाग फिल्म के इस बहुत ही मशहूर से गाने के साथ करते हैं शुरुआत, मोहम्मद रफी और आशा ताई की आवाज़ में रखा हुआ आज का ये पहला गीत।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद कार्यक्रम। और बिल्कुल 2:38 और बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं 4028085 या फिर मैसेज भेज सकते हैं ऑन 5251705 पर। रेडियो मॉरिशस की लहरों पर मैं हूं रत्ना आपका साथ दे रही हूं। और चलिए इस अगले गीत को लेते हैं। ये जो अगला है गाना, ये है एक भक्तिमय गाना जो मांगा है लीला जी ने। बहुत शेरी से भी हमारा साथ दे रही हैं और सभी को नवरात्रि की पावन पर्व की मंगल कामनाएं देती हैं। हेमलता की आवाज़ में रखा हुआ ये गीत।

नवरात्रि का ये पावन पर्व और इसी के साथ मॉरिशस भर में इस वक्त आपकी पसंद कार्यक्रम के साथ कोने कोने से लोग जुड़े हुए हैं। नवदुर्गा माँ सभी की कामनाओं को पूर्ण करे। और यहाँ पर बिल्कुल रफीक दौलत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्लान माइयों से, साथ है उनकी प्यारी बेगम नूर जहाँ और उन्होंने फिल्म शाहजहाँ का ये गाना मांगा है KL सहगल की आवाज़ में। तो चलिए आपकी मनोकामना को भी पूर्ण करते हैं।

0: आपकी पसंद।
1: जब दिल टूट गया तो हम जोड़ेंगे उसे फेविकॉल से और हमारे प्यार के गोंद से, और बिल्कुल आपका दिल खुश करने के लिए हमारी ये कोशिशें जारी रहेगी। ये हुई ना बात, आपके चेहरे की मुस्कुराहट हमारे लिए ज्यादा मायने रखती है। और मजेदार गीतों के इस सफर में चलिए, 2:50 बिल्कुल 3 बजे हम जुड़ेंगे समाचारों के साथ। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत सारे लोग। शिवरानी जी इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं डीप रिवर से, और उन्होंने फिल्म दाग का ये गाना मांगा है अपने बेटे, बहू, बेटी, दामाद और उनके सभी नाती पोतों के नाम। ऑस्ट्रेलिया से वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए आपको खुश करेंगे किशोर कुमार की आवाज में रखे हुए इस गीत के साथ।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हैं और बिल्कुल इस वक्त नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। पावन समय जहाँ पर हम देवी माँ की आराधना में लगे हुए हैं, शक्ति की प्रार्थना करते हैं, बुद्धि की प्रार्थना करते हैं और बिल्कुल जीवन में इस वक्त कमी है तो सद्बुद्धि की, प्रेम की। शक्ति तो सभी के पास है ही, पर उसका उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, बस यही बुद्धि होनी बहुत जरूरी है। और नवदुर्गा माँ सभी का कल्याण करे, बस यही प्रार्थना हम सभी के लिए करें। सुनीता जी इस वक्त घोंगोप से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी प्यारी बहनें विमला, अमृता और वीना जी साथ दे रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर संगीता जी कातकोको से जुड़ चुकी हैं, उनके पति विजय, बेटा यशवीर, बेटी हैं स्नेशा और काजल, दामाद है मिथुन, साथ है दो प्यारी नातिन आरोही और आरुषि, पातो परिवार एनएस फ्लोगों से और रीगा परिवार है कातकोको की ओर से। चलिए लखु परिवार भी हमारे साथ बुआशेगी से जुड़ चुका है, बहुत ही प्यार आप सभी को। और यहाँ पर गीता जी हमारे साथ पोंफेया से साथ दे रही हैं, प्यारे पति रोहित के साथ, तीन प्यारे नाती आदित्य आरव तनीश और साथ है उनकी प्यारी परी जैसी जानवी। तीन बेटे तीन बहुओं का नाम आज के इस कार्यक्रम में जरूर हम जोड़ना चाहेंगे। और साथ ही साथ अनीता लाल जी आप भी हमारा साथ दे रही हैं बहुत ही प्यार से मोडालबिया की ओर से। सभी लाल जी, गोगा, नागेश्वर और ईतु परिवार का नाम आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। और फिल्म है क्रांति, क्रांति फिल्म से लिया हुआ ये गीत जो है मीनू पुरुषोत्तम और महेंद्र कपूर की आवाज में।

0: On the hour, every hour, Radio Marches.
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सफेर के ठीक 3 बजे है। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमैरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। भारतीय माहिर डॉक्टरों की टीम जीतू अस्पताल पहुंच गई है। ये टीम हवाई अड्डे से सीधा अस्पताल आ गई, जहां मरीजा एलुजी टोमा की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है और जिसके बाद सर्जरी की जाएगी। पुलिस की भारी तैनाती के तहत एलुजी टोमा को जीतू अस्पताल ले जाया गया। वो ICU में है और उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। एलुजी टोमा को जरूरी इलाज देने के लिए 13 डॉक्टरों की टीम आई हुई है। पानी की सप्लाई को लेकर मुश्किलें और कृषि उत्पादन, पशुपालन तथा खाद्य सुरक्षा पर इनके अंजाम घटाने के लिए कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने एक सामूहिक सहयोग की मांग की। आज उन्होंने मुतालिक साझेदारों से मुलाकात की। देश के उत्तर में खेतिहरों की मदद करने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस बैठक के दौरान भूमिगत जलाशयों की एक फहरिस्त भी तैयार की गई, ताकि पानी के नए स्रोतों को पहचाना जा सके। गर्मी की शुरुआत से बहुत से लोग एयर कंडीशनर खरीदने लगे हैं, इससे बिजली पर निर्भरता बढ़ने लगी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अनुमान है कि इस मौसम गर्मा में 600 मेगावाट बिजली की मांग होगी, इसीलिए सीबी इस महीने से चेतना अभियान की लॉन्चिंग करेगा। बिल एंड रिमांड कोर्ट ने मामी गवातुमांग को जमानत पर रिहा करने की मांग को ठुकराया। मजिस्ट्रेट का कहना है कि सबूतों में हेराफेरी, गवाहों के साथ बातचीत या फरार होने के खतरे हैं। मामले को अगले 3 नवंबर के लिए स्थगित किया गया। मामी गवातुमांग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के सामने पेश हुए। उनके वकील सुप्रीम अदालत में इस रूलिंग के खिलाफ अपील करेंगे। विदेश में रियाद सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला हुआ। मुसाफिरों के ठहरने वाले हॉल में आग लगी, एक व्यक्ति की मौत हुई और 11 लोग जख्मी हुए। कल ही इसी हवाई अड्डे पर किए गए हमलों में 13 मौतें दर्ज हुई और 308 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थोड़ी देर में शोक समाचार। मौसलमा सीताराम अंगियता वाकवामी 62 साल के 62 years old, श्री रूप सिंह शत्रुघ्न जो गौतम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और भूमि मंत्रालय में पूर्व सीनियर ट्रैफिक सेंसस अफसर थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल 11 बजे इनके घर मौसलमा सीताराम अंगियता वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामा मेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टमुरवाती 11 AM। डॉक्टर इड्रिस गुमानी स्ट्रीट प्लेजांस रोजहिल में 77 साल के 77 years old, श्री राजा सिवन गेंगान जो सिवन के

0: इनाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी बुध को 11 बजे इनकी पत्नी विनोदा गेंगान के घर डॉक्टर इद्रिस कुमानी स्ट्रीट प्लेजेंस रोज़िल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लाशोमिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन वेंसडे एट 11 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
2: आपकी पसंद
3: घड़ी मिला लीजिए, समय बिल्कुल 3:04:20। और इसी के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हो चुकी हूँ आपका साथ देने के लिए। रत्ना का सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। जय माता दी आप सभी को। नवरात्र का ये पावन पर्व हम सब साथ मिलकर मना रहे हैं और सभी का जीवन सुखमय बने, शांतिमय बने, स्वास्थ्यवर्धक बने, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर हमारी प्यारी रेहाना जी भी जुड़ चुकी हैं, नोटरडेम से साथ दे रही हैं, और उनकी प्यारी भाभी माला फाउदा जिन्हें वे बहुत प्यार करती हैं, और उनकी खास सखी सुरेखा जी। और फिल्म कुंवारा बाप का ये गाना उन्होंने मांगा है, और सभी लोग जो इस वक्त नवरात्र की पूजा में हैं, रेहाना जी की ओर से उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज सोमवार का दिन है तो क्या गाना चुना है आपने? बिल्कुल भोलेनाथ का नाम लेते हुए सभी का भला हो यही प्रार्थना करते हुए आइए जुड़ते हैं किशोर कुमार और लता जी की इस प्यारी सी आवाज के साथ।

0: सबकी पसंद।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम। और बिल्कुल शीला जी, दे पीने से आप हमारा साथ दे रही हैं। आपको लगेगा कि हमने तो आपका गाना चलाया ही नहीं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जिस गाने की फरमाइश की थी, बस उसी को ढूंढने में लगे हुए थे और मिल चुका है। वैसे आपने बोला ये गाना है चांदनी रात का, हालांकि ये फिल्म चांदनी रात का नहीं, पर ये गाना है सीता स्वयंवर फिल्म से लिया हुआ। और ये फिल्म है 1948 के जमाने की, तो कुछ वक्त तो लग ही जाएगा। तो चलिए, आशा करते हैं इस गीत को सुनकर आपका दिल बिल्कुल खुश हो जाना है और बिल्कुल हमारा साथ दीजिएगा।

0: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri.
1: मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
2: आपकी पसंद
3: 3:12 और बिल्कुल ये प्यारा सा तोहफा आपके नाम करेंगे और गीतों के माध्यम से आपके दिल को खुश करने का हमने उठाया है बीड़ा। और चलिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आफिस, पीएसए वे साथ दे रही हैं और जिस गीत की फरमाइश आप कर रही हैं आफिस, ये है फिल्म नदिया के पार और आवाज है ललिता दियोलकर की। बहुत ही प्यारा सा गाना आपने मांगा है, दिल लेके भागा दगा दे के भागा। चलिए भागना कहाँ है, हमने तो आपको पकड़ के रखा है।

0: की पसंद।
1: चलिए आज बहुत सारे लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं। यहाँ पर जन्मदिन मना रहे हैं अश्मित, जिन्हें हुए हैं 15 वर्ष, और उनकी प्यारी दादी उषा जो है हाईलैंड से उनको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देती हैं। साथ ही साथ उनकी प्यारी पुपू और है पापा अश्विन, और सभी कुंज बिहारी परिवार और मोहन सिंह परिवार की ओर से अश्मित आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। बस आप जीवन में हमेशा खुश रहें और बहुत बहुत मेहनत करके आगे बढ़ें, अपनों का प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। और ऐसे ही हम विश करना चाहेंगे रीटा जी को, जो आज अपना जन्मदिन मना रही हैं हाईलैंड से। नमस्ते रीटा जी, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपकी प्यारी मौसी है मीला जो है न्यू ग्रोव से। सभी राम परिवार, सी शंकर परिवार और जोलिम परिवार की ओर से आपको जाती हैं ढेर सारी बधाइयाँ। और साथ ही साथ बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी बधाइयां जाती हैं फरहाना इसोप के लिए, जो आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। उनके शौहर हैं वफीक, मामा हैं शहनाज, पापा हैं नौशाद, भाई हैं सरफराज, चाची है सलमा, चाचा है आज़ाद, इरशाद, मुशीरा, इजान, नुरेजा, रिशाद, और सभी इसोप परिवार की ओर से जो रहते हैं स्टैनले रोज हिल। और कल आपका निकाह हुआ है वफीक के साथ, ओहो, यानी डबल खुशी। चलिए आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हो। और बस अपनों का आशीर्वाद, अपनों की दुआएं आपको हमेशा मिलती रहे जीवन में। अपनों का प्यार, इससे बड़ा तोहफा और कोई हो नहीं सकता। और अपनों की दुआएं, बस इस गीत के नाम आप तक हम पहुंचा रहे हैं।

फिल्म है इंसानियत, पुरानी फिल्म पुराना गाना, काट्रबोन से हमारा साथ दे रही हैं अनीता जी, और बिल्कुल ओल्ड इज गोल्ड, प्यारे पुराने गीतों के साथ सजाया हुआ ये सफर, बिल्कुल ऐसे ही कुछ अनसुने गीत हमें सुनने को मिलते हैं थैंक्स टू यू। और चलिए 3:22 हो चुके हैं, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

चलिए इसी गीत के साथ नाम जोड़ते हैं बसंती जी का, जो बोबासन से बहुत ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सिमला जी बेलगोल से साथ दे रही हैं, रूमा, आरती, इंदिरा, साथ है राकेश, धीरज, नमलेश और कीर्तिना के नाम।

0: आपकी पसंद।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते चलेंगे और इसी के साथ इस वक्त राजन लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाफलोगा से। प्यारी पत्नी माला, दो प्यारी बेटियां प्रार्थना और प्रगति, बहन है मानती और साथ ही साथ उनकी भगिनी है उर्मिला तुलसी, साथ ही साथ प्यारी छोटी सी सृष्टि तुलसी और सभी लक्ष्मण परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और बिल्कुल नवरात्रि के इस पावन अवसर पर इस अगले गीत के साथ आपका नाम हम ज़रूर जोड़ते हैं। और बिल्कुल हमारे साथ जितने भी लोग इस वक्त साथ दे रहे हैं बस यूं ही जुड़े रहें। और अगला गीत जो है बहुत ही प्यारा सा गीत, फिल्म है क्रांतिवीर से लिया हुआ ये गाना। ये गाना हम चलाएंगे सुदेवी जी के लिए जो वाकवा से जुड़ी हुई हैं, त्रियोली से उनकी प्यारी बहन ललिता कुशल, साथ है दीदी सुनीता, देवीना, बिंदु, माला, मलेंगा से है अनुषा, किरण, सभी राम रतन, कुआरू, रघुबर और जालू परिवार, और विश्वानी दुमन हमेशा की तरह वाकवा से साथ दे रही हैं, इंदिरा, शारदा, नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता गजाधर का नाम आज के इस कार्यक्रम में भी हम शामिल करते हैं।

चमोर इस वक्त शेरावाली माँ का ही जयकारा है। और चलिए इसी के साथ गंगा की लहरें फिल्म से लिया हुआ ये अगला गीत जाएगा सरिता जी के नाम, जो इस वक्त कटबोन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इस गीत की फरमाइश कर रही हैं। साथ ही साथ यूनियन पार्क से जुड़ी हुई हैं ज्योति जी, साथ है प्रीति, मयूर, वेदना, आदर्श, विमला, विवेक और के नीता। जी हाँ, फिल्म गंगा की लहरें लता जी की प्यारी सी आवाज। और इसी के साथ बाद विदेशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए।

0: मन सच्चा हो तो बस प्रार्थना सुनी ही जाती है, और इससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम दूसरों के लिए दुआएं मांगते हैं तो हमारी भी पूरी हो ही जाती है दुआएं
1: आपकी पसंद।
0: चलिए इसी के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हैं। 3:43, 4 बजे तक कार्यक्रम जारी है।

तकदीर में क्या लिखा होता है ये केवल ऊपर वाला जानता है, पर इस वक्त तो हम गाना चला सकते हैं आपके लिए। और अगला गाना जो है ये है फिल्म माँ बाप से लिया हुआ गीत। गौबे से विष्णुदेव बिसे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेल के जॉयपोल परिवार मौसलमौ से हैं, भीम परिवार और कॉटेज के पिलाई परिवार के नाम करेंगे महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में।

0: आपकी पसंद।
1: बिल्कुल, देवी माँ से तो यही प्रार्थना करेंगे कि पानी बरसा दे, क्योंकि इस वक्त सच में मॉरिशस में बहुत सारी जगहों पर पानी की बहुत बहुत समस्या हो रही है। तो सभी के दुखों का निवारण हो, सभी के लिए प्रार्थना हम करें। और यहाँ पर काटरपोन से प्रेमिला जी इस अगले गीत की मांग करती हैं। फिल्म है कलाकार सुरेश वाडकर की प्यारी सी आवाज़। और हरीश जी, अफसोस हम आपके गाने को नहीं चला पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, पर चलिए आप प्यार से साथ देते हैं, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू सो मच हमारी दुविधा को समझने के लिए। वाकवा से शोभा जी भी जुड़ चुकी है। सेलू, आप भी हमारा साथ दे रही हैं, आपने भी गीत की फरमाइश की थी, पर अफसोस आपका भी गाना हम नहीं चला पा रहे हैं। स्वस्ति जी, आप भी हमारा साथ दे रही हैं काठोबोन से, प्यारी बेटी लेखानी और प्यारा बेटा सुमी। चलिए कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में आपके गीतों की फरमाइश को हम पूरा कर पाएं, बट दिल से साथ दीजिएगा ज़रूर। और इसी आखिरी गीत के साथ हमें छोड़े जा रहे हैं आपको, और आपको याद दिला दे, बिल्कुल 4 बजे आप जुड़ पाएंगे अगले कार्यक्रम के साथ, जिसकी प्रस्तुतिकरण की जाएगी श्रीमती अंजू गर्बरन द्वारा। ये कार्यक्रम है प्रकाश, जो चलेगा 4 बजे। तो चलिए इसी के साथ आप सभी को नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्रोग्राम को बस यहीं विराम देंगे। शाम को 5:30 बजे बचपन ऐसा कार्यक्रम में पुनः हमारी और आपकी भेंट होगी। तब तक के लिए शुभ संध्या आप सभी को।

0: पाया। MBC रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।
1: काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
2: यह नवरात्र माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बरसे, आपका जीवन सुखमय एवं सफलताओं से भरपूर रहे। आप सभी को MBC की पूरी टीम की ओर से नवरात्र की पावन मंगल कामनाएं। MBC wishes you all a pious navratri।

0: माथे की बिंदी विश्व भाषा बनी हमारी हिंदी। सुनिए पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश, प्रस्तुति श्रीमती अंजू गर्बरन की।
1: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। कार्यक्रम आपका जाना पहचाना है क्योंकि सोमवार का दिन है। कार्यक्रम है प्रकाश। श्रोताओं, आज हमारे साथ अतिथि के रूप में जुड़ी हैं श्रीमती कल्पना लाल जी, जो कि जानी मानी साहित्यकारा हैं और साथ ही हमारे देश की महादेवी वर्मा जैसी कवित्री मानी जाती हैं। बहुत बहुत स्वागत श्रीमती कल्पना लाल जी आपका इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद अंजू जी।
1: आज की हमारी चर्चा जो है वे बाल साहित्य पर केंद्रित है कि बाल साहित्य हमारे देश में मॉरिशियस में एक नहीं अनेक साहित्यकारों द्वारा लिखा गया, जैसे कि स्वयं श्रीमती कल्पना लाल जी ने छोटी छोटी कविताओं के साथ एक पुस्तक निकाली हुई है। स्थानीय लेखकों में हम धनराज शंभू जी को पाते हैं, इंद्रनाथ भोला जी को पाते हैं और मुनीश्वर लाल चिंतामणि जी की अनेक कविताएं हैं जो बच्चों के लिए तैयार की गई, और साथ ही साथ काशीनाथ जी, सोमदत्त काशीनाथ जी ने भी अनेक कविताएं और बाल साहित्य में अपनी कलम और अपने हस्ताक्षर छोड़े हैं। भारतीय लेखकों की बात करें तो जयप्रकाश भारती, सुशील कुमार, मंजरी शुक्ला, सोहनलाल द्विवेदी जी देशभक्ति की कविताएं लेकर आते थे और रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी में अपनी कविताएं भारतीय रूप जैसे कि पहाड़ी जीवन, प्रकृति पर केंद्रित कविताएं रचते थे। तो श्रोताओं, बाल साहित्य जो है 2.5 वर्ष की उम्र से अगर हम लेते हैं तो 18 से 19 वर्ष तक के लिए वे साहित्य रचा जाता है। श्रीमती कल्पना लाल जी, आपने कैसे विचार लिया कि आप इतनी बड़ी साहित्यकारा होती हैं जो कि अभिमन्यु अनंत की पुस्तक को काव्यबद्ध किया आपने लाल पसीना को, पर लेवल को नीचे उतारते हुए छोटे बच्चों के लिए आपने कविताएं रची, ये विचार कैसे?
2: अंजू जी, ये विचार उस समय आया जब मेरे अपने बच्चे छोटे थे
1: जी।
2: उसी समय की ये कविताएं हैं
1: जी,
2: और उनको कुछ हिंदी सिखाने के लिए जो है वो मैंने इन कविताओं को रचा। अब बच्चों को कैसे हिंदी सिखा सकते हैं
1: जी,
2: ये भी एक बहुत उस समय जो है छोटे बच्चों के साथ में काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल, उनके साथ वो पल जिया जाता है
2: बिल्कुल, और उनको कुछ सिखाने के लिए ऐसे रैंडम नहीं सिखा सकते हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनको अच्छा लगे, उनसे जुड़े और उनको कुछ शिक्षा भी दे। तो मेरी जो एक है एक पुस्तक है यहाँ पर, छोटी सी पुस्तक है, उसका लिखा है मेरा नाम खट्टी मीठी मुस्काने
1: जी।
2: ये खट्टी मीठी मुस्काने में जो है 37 कविताएं हैं,
1: छोटी छोटी कविताएं। तो कविताओं से हमारे श्रोताओं को परिचित करवाएं।
2: देखिए, आरंभ जो मैंने किया है वो तो किया है एक वंदना से, बच्चों को पता होना चाहिए,
1: हमारी संस्कृति हमारा संस्कार का हिस्सा है।
2: बिल्कुल, ये इसको जो है सींचना पड़ता है, तो बच्चों को सबसे पहले

0: एक छोटी सी वंदना दी है, मैं दो चार पंक्तियां पढ़ूंगी। शीश झुकाए तेरे द्वारे आए मैया बालक तेरे, इन नैनों में ज्योति जगा दे, अंधकार तू दूर भगा दे, धूप दीप और पुष्प फैलाए और कहां माँ बोलो जाए। माँ से बात भी हो गई, माँ की जो है भाषा भी आपने सीख ली, माँ से कैसे बात करते हैं ये भी सीख ली, और एक छोटा सा जो है उनकी वंदना भी हो
1: और
0: गई।
1: आपने संस्कृति का निर्वाह भी किया।
0: बिल्कुल, तो इसी इसके द्वारा आपको जब एक बाल बच्चों के लिए कुछ लिखना होता है, कोई बाल साहित्य होता है, कविताएं होती हैं, कहानियां होती हैं, तो विशेषकर वो सोचना चाहिए लिखने के लिए जो बच्चों से जुड़ सके। मेरी इस पुस्तक में जो है छोटे छोटे से कविताएं हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों को कविता के द्वारा सिखाई गई हैं। वंदना मैंने आपको बता दी, अब रोटी
1: जी।
0: रोटी तो सभी खाते हैं,
1: सभी सबसे आवश्यक है, रोटी कपड़ा और मकान।
0: तो यहाँ पर बच्चों को रोटी के बारे में कैसे सिखाया है
1: जी।
0: गोल गोल तवे से उतरी पहुंची सीधी पेट में, तरह तरह की रोटियां मिलती हैं हर रेट में। और ज़्यादा आगे हम जाते हैं तो ये कि देखो आज क्या है, सांझ सवेर रात और दिन इसको खाने का मन करता, साथ में एक नया भी शब्द जोड़ा है, पिज्जा वाली रोटी आज बिक रही बाजार में।
1: बिल्कुल,
0: तो ये जो पिज्जा है इसको रोटी से जोड़ करके बच्चों को कुछ नया सीखने का
1: अवसर मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: और इस छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से हम उनका रंगों से परिचय करवाते हैं, गणना से परिचय करवाते हैं, एक दो तीन चार उनको कविता के माध्यम से सिखाते हैं बच्चों को। और ये बच्चे तो गीली मिट्टी होते हैं, जो संस्कार जो ज्ञान जो शिक्षा आपको पहुंचानी होती है उन तक वे आसानी से इन छोटी कविताओं छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उन तक पहुंचती हैं।
0: अब जैसे मॉरिशस की बात ले लें
1: जी,
0: तो मॉरिशस उस समय तो इतनी छोटे अवस्था में बच्चे नहीं जानते हैं मॉरिशस में क्या है क्या नहीं है, तो उसके ऊपर एक छोटी सी कविता है। मॉरिशस है देश हमारा, हिंद महासागर का तारा, छोटा सा पर बड़ा ही प्यारा, इंद्रधनुषी ये देश हमारा। साथ ही इसके बारे में भी सिखाया है, इसमें एक और शिक्षा है, हिंदू मुस्लिम चीनी भाई यहाँ बसे ज्यो भाई भाई, नहीं कभी ये करे लड़ाई, शांति है चहु और संभाई।
1: तो एकता का एक विचार आपने बच्चों में डाल दिया।
0: बिल्कुल,
1: कोई भी हो हमें एकता से अपने देश में रहना है, अपने समाज में जुड़ना है।
0: और इस समाज में कौन कौन है
1: जी,
0: है ना, सुनते हैं चीनी और सुनते हैं
1: ईसाई भी है, चीनी भी है,
0: लेकिन वो कैसे रहते हैं इसको सिखाने के लिए ये चंद पंक्तियां ही काफी हैं।
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ा संदेश जो गया प्रेम का,
0: प्रेम
1: कि
0: का,
1: एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना बहुत आवश्यक होता है।
0: देखिए जब हम बच्चों के लिए लिखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि उनको कुछ शिक्षा भी मिले
1: जी,
0: और वो अपने साथ उसको जोड़ सकें।
1: बिल्कुल,
0: कुछ नहीं, एक छोटी सी कहानी है, मछली मछली जल, ये तो कहानी आपने भी सुनी होगी, ये कविता जो है मछली जल की रानी है,
1: इसी में जिया गया है।
0: रहती मछली रानी हो बड़ी सयानी, रहती हो तुम पानी में रोज सवेरे, आना कानी करनी ना पड़े नहाने में, जैसे बच्चे नहाने में करते हैं, उनको इस विषय से जोड़ दिया गया है कि जो है आपके छोटी छोटी मछलियां नहाती हैं तो आप क्यों नहीं नहाओगे, है ना। तो जब
1: आपने स्वच्छता का भी एक दायरा बटोर लिया उसमें, और साथ ही साथ शिक्षा भी उन तक पहुंची। हमारे देश में बहुत सारी पत्रिकाएं भी निकलती हैं जिसमें महात्मा गांधी संस्थान से रिमझिम है, पंकज है हिंदी प्रचारणी सभा की ओर से, सुमन पत्रिका भी निकलती थी बच्चों के लिए हिंदी स्पीकिंग यूनियन से, और बाल सखा जो है वे भी अभी नहीं मिल रही है पर बहुत लंबे समय तक भोला जी के प्रयास से निकलती रही। और इसमें छोटी छोटी कहानियां जैसे सर शिव सागर राम गुलाम की कहानी, सत्कम बुलेल जी की कहानी, और बड़े बड़े देश के बिसुंदियाल भाइयों की कहानी जैसे व्यक्तित्वों पर छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उनका परिचय करवाना, मुड़िया पहाड़ जैसी जगह के लिए उसकी कहानी, सियंतक की कहानी, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बच्चों को परिचित करवाना और देश में एकता का प्रारूप

0: बच्चों में दिखाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे बचपन से ही अगर ऐसी शिक्षाएं ग्रहण करेंगे तो अच्छे नागरिक बन पाएंगे अपने भविष्य में।
1: बिल्कुल। अब यहाँ की बाल पत्रिकाओं को ले लीजिए
0: जी,
1: इतने समय से हम लोग यहाँ पर हैं तो हमने पढ़ी है ये बाल पत्रिकाएं, लिमझिम है
0: जी,
1: जिसके संपादक अभिमन्यु अनंत जी थे
0: जी,
1: वसंत थी बाल पत्रिका, इंद्रधनुष
0: भी है,
1: इंद्रधनुष में भी था, बाल मंच था, बाल दुर्गा, बच्चों के ऊपर कहानियां, अखबार निकलते थे, हिंदी प्रचारणी सभा की ओर से बाल सभा बाल विशेषांक निकलते थे, साहित्यकार जो हैं वो उनके ऊपर लिखते थे, रिमझिम में राजहीरा मन थे, आपके वसंत में पूजानंद नेमा थे
0: जी,
1: हेमराज सुंदर, और छोटी छोटी कविताएं जो मेरी भी थी इसमें, खट्टी मीठी मुस्कान है, मॉरिशस देश हमारा, तूफान, मतलब ऐसी चीजें जो देश से जुड़ी हुई हैं, अगर उनको हम जोड़ेंगे तो बच्चों को इधर उधर बिना घूमे फिरे आप यहाँ की जो है संस्कार उनको तक पहुंचा देंगे
0: और उनकी रुचि के अनुरूप होंगी वो कविताएं, वो कहानियां, क्योंकि जो भी गद्य जो भी पद्य हम लिखते हैं उनके अनुरूप ढाला जाए तो वो उनके लिए भी आसान है, और बाल साहित्य जब हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो सरल और सहज होना ही चाहिए ताकि बच्चे उसमें अपने आप से बढ़ पाए, रुचिकर बना पाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब दो चार नाम मैं और जोड़ना चाहूंगी, जनार्दन कालीचरण लिखते थे
0: जी,
1: अजामिल माता जी बदल जी थे, वो तो हिंदी स्पीकिंग यूनियन के बहुत बड़े कर्ता धर्ता थे
0: जी,
1: और हरिनारायण सीता जी थे, काशीनाथ जी तो आज भी लिख रहे हैं, वीरसेन जागा सिंह हैं, रिमझिम में, स्वदेश में, वसंत में, पंकज, बाल जगत बच्चों का कोना हुआ करता था जिसमें कि बच्चे भी भाग लेते थे और उनको जो है
0: प्रश्नोत्तरी के रूप में छोटे छोटे कार्टून्स के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया जाता था। तो आज हमारी चर्चा जो है बाल साहित्य पर केंद्रित है। बाल साहित्य बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप से समृद्ध होना चाहिए ताकि वे बच्चों के साथ जोड़ा जा सके।
1: बिल्कुल। इसमें एक छोटी सी कुछ पंक्तियां बोलूंगी, मीठी बोली
0: जी,
1: मीठी बोली बच्चों को ये सिखाने के लिए है कि भाई बच्चों को जो है मीठा बोलना चाहिए,
0: उसके लिए गीत भी प्रचलित है मीठा मीठा बोल,
1: जब तो। भी बोलो जो भी बोलो सुर ताल को तोल के बोलो
0: जी,
1: खट्टी मीठी दुनिया में तुम बच्चों मीठी बोली बोलो। अब दूसरा ये है कि एक जैसे बच्चे नानी से कहानियां सुनते थे उस पर है, नानी सुना कहानी, पूजा बोली प्यारी नानी जल्दी से तू सुना कहानी, नानी बोली बच्चों आओ एक समय की बात बताऊं, इस तरीके की कहानियां जो हैं बच्चों को आप जब जोड़ेंगे तब बच्चे एक कहानी सुनने के बाद अगले दिन रात को नानी दादी के पास बैठेंगे, अब क्या हुआ आज फिर दूसरी कहानी सुनाओ, और दूसरी कहानी में कई बार उनको मेरी गुड़िया आ जाती है, तो कई बार चतुर पंडित बंदर की कहानी आ जाती है, तो कभी कभी चंदा मामा भी आ जाते हैं
0: जी,
1: है ना। तो इस तरीके की बातें जो है आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, और कविताओं के माध्यम से उनका आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखा सकते हैं।
0: समय की सुइयां कह रही हैं कि हमारा समय समाप्त होने जा रहा है कार्यक्रम का, और श्रीमती कल्पना लाल जी अपना बहुमूल्य समय लेकर आपने आज हमारे श्रोताओं के साथ बहुत सारी जानकारियां बांटी, हमारी चर्चा रही केंद्रित बाल साहित्य, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए लिखना बहुत आसान नहीं होता है, उनकी रुचि के अनुरूप हमें मनोवैज्ञानिकता से उनको पकड़ना पड़ता है,
1: बिल्कुल,
0: तभी हम सफल हो पाते हैं बाल साहित्य में। अवि ने हमारा सहयोग दिया टेक्निकली आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाने में, उनको आभार प्रकट करते हुए प्रकाश कार्यक्रम में आज इतना ही, एक अन्य कार्यक्रम में फिर जुड़ेंगे, आज के लिए धन्यवाद, सभी को प्रणाम करते हुए शुभ संध्या।
2: अभी आप सुन रहे थे पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश, श्रीमती अंजू गर्बरन की प्र...

0: Ou toujours pas encore faire au Individual Income Tax Return 2026, ou connaît, aurait seulement 4 jours pour faire les, pas tarder. Allo site web de la MRE, www.mre.mu. Clique le e-filing season 2026 et suive ban instruction. Si vous besoin aide, prenez rendez-vous le e-appointment, un officier de la MRE, pour aide ou remplir ou return à travers un WhatsApp video call. Après qu'il vous finit soumettre ou return, vous capable participer dans le Taxpayer Satisfaction Survey et remplir un des 23 prix là. Premier prix, 25 000 roupies. Deuxième prix, 15 000 roupies. Et troisième prix, 10 000 roupies. Faire vite, remplis au return avant le 15 octobre. Passez ce délai ou risquez une pénalité et l'intérêt.
1: 819 kHz, yeh hai Radio Mauritius. Radio Mauritius. बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा एमबीसी रेडियो आपके साथ
2: नमस्कार श्रोताओं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर बचपन ऐसा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और मैं हूँ रत्ना आप पहुँची हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आज के इस कार्यक्रम के साथ बिल्कुल जुड़ चुके होंगे तो आइए आज के इस कार्यक्रम में कुछ गीतों के साथ बातें करेंगे बचपन की जी हाँ पहले का बचपन और अब का बचपन किस प्रकार से बदलाव आया है और बिल्कुल आज नवरात्र का दूसरा दिन है तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं

बचपन ऐसा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं। और पहले के जरा बचपन और आज के समय का बचपन बहुत ही अलग, बहुत ही अनूठा। और बिल्कुल पहले के समय में बच्चों को जब त्यौहार आता था तब रंगों के साथ, रोशनियों के साथ, मिठाइयों के साथ, नए कपड़ों के साथ एक अलग ही आकर्षण बना रहता था। पर आज का जो समय है बिल्कुल बहुत सारी मान्यताएँ बदली हैं। और बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो आज का जो ज़माना है वो भाग दौड़ से भरा हुआ जीवन है, तनाव से भरा हुआ जीवन है। और इसीलिए मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए हम पूजा पाठ में लीन होते हैं। पूजा पाठ में जहाँ पर सामाजिक संस्थाओं में या फिर हम कह सकते हैं कि धार्मिक स्थलों पर जहाँ पूजाएँ चलती हैं वहाँ पर हम भाग लेते हैं, ताकि हम भाग दौड़ से भरे जीवन से कुछ पलों का हमें ब्रेक मिल सके। बिल्कुल आज के बचपन ऐसा कार्यक्रम है, चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

श्रोताओं, पहले के समय में हम रीति रिवाजों को लेकर आगे चलते थे। आज के समय में ये जो वर्तमान काल है, ये रुचि केवल रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोग जीवन के गहरे अर्थ और आत्मज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। आज के जो बच्चे हैं वो क्यूरियस है हमेशा जानने के लिए कि ये रीति रिवाज क्यों किए जाते हैं, और उनको जवाब देना, उनको समझाना, ये हमारा कर्तव्य होता है। इसीलिए बचपन ऐसा कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं। जैसे नवरात्र का पावन पर्व आया है और इस नवरात्र के 9 दिनों में हम पूजाएँ क्यों करते हैं, इसकी समझ हमारे बच्चों को हो ये भी उतना ही आवश्यक है।

बचपन ऐसा कार्यक्रम सोमवार का दिन है और भागदौड़ से भरे जीवन में आज का दिन बिल्कुल बीता होगा और इसी के साथ नवरात्र का ये पावन पर्व हम मना रहे हैं। और सच में देखा जाए तो पहले के ज़माने की पूजा प्रार्थनाएं और आज के समय की पूजा प्रार्थनाओं में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। धार्मिक स्थलों पर जाना या कीर्तन भजन में भाग लेना सामाजिक जुड़ाव और अकेलापन दूर करने का एक माध्यम है। इसीलिए आज के समय में आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग आज भी इसे बहुत ज़्यादा मान देते हैं, बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, पर पहले के ज़माने में बच्चे भी इन सारी चीज़ों में भाग लिया करते थे। आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा गतिविधियों में भाग लेने के लिए उनके पास समय नहीं होता, लेकिन बड़े बुजुर्गों का या माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि बच्चों को इस दिशा में भी उन्हें मोड़ें।

दोस्तों बचपन ऐसा कार्यक्रम के समाप्ति तक हम आ पहुंचे हैं और पहले के समय में हम उतना तर्क नहीं किया करते थे, पर आज के समय में लॉजिकल अप्रोच यानी तार्किक दृष्टिकोण ज्यादा देखा जाता है। आज की पीढ़ी हर प्रथा के पीछे का विज्ञान या तर्क ढूंढती है, कारण ढूंढती है और जानना चाहती है और उसी आधार पर अपनी रुचि को तय करती है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि आज का जो बचपन है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही हटकर है, क्योंकि उनकी लॉजिकल बातें हो सकता है कि हमारे समझ में ना आए, पर देखा जाए तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर समाप्त करेंगे। बचपन ऐसा कार्यक्रम आपने बहुत ही प्यार से हमारा साथ दिया, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या, जय माता दी आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: नमस्कार, आदाब, शाम के 6 बजे हैं।

0: पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। गोली से जख्मी एलओजी तुमा की सर्जरी करने के लिए भारत से 13 डॉक्टरों की टीम मॉरिशस में। हवाई अड्डे से सीधा जीटू अस्पताल जाकर डॉक्टरों ने मरीजा की हालत का लिया जायजा। प्रधानमंत्री खुद एलओजी तुमा के मामले पर निगरानी रख रहे हैं। आज उन्होंने डॉक्टरों से मुलाकात की और घायल महिला की स्थिति पर जानकारी ली। वाटर टैंक एंड वाटर पंप ग्रांट स्कीम से फायदा उठाने के लिए रात 3 बजे से CWA दफ्तरों के सामने लोगों की लंबी कतारें। भूमिगत जलाशयों की नई फहरिस्त आम ताकि नए जल स्रोतों को विकसित किया जा सके। आज कृषि उद्योग मंत्री ने मुख्तलिफ साझेदारों से की मुलाकात। और विदेश में सूडान में हमले, 72 नागरिकों की मौत। नमस्कार, रादाब। किम्स हॉस्पिटल से भारतीय माहिर डॉक्टरों की टीम आज दोपहर बाद मॉरिशस पहुंची। उसने जीतू अस्पताल में एलओजी तुमा की हालत का जायजा लिया। जुमे की रात की घटनाओं के चलते मॉरिशस सरकार ने भारतीय डॉक्टरों की मदद की मांग की। ये टीम हवाई अड्डे से सीधा अस्पताल गई जहां मरीजा की स्थिति का जायजा लिया गया। पुलिस की भारी तैनाती के तहत एलओजी तुमा को जीतू अस्पताल ले जाया गया। सिंचा मुतु करुणा लालू।
1: भारतीय डॉक्टरों की टीम 3:45 बजे डॉक्टर राकेश जाला के नेतृत्व में पोर्टवी के जीतू अस्पताल पहुंची, जहां स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू सहित अन्यों द्वारा उसका स्वागत किया गया। भारतीय चिकित्सा टीम में रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र के एक सर्जन, एक इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट तथा गहन चिकित्सा के एक विशेषज्ञ सहित अन्य चिकित्सक शामिल हैं। डॉक्टरों की टीम इमारत की दूसरी मंजिल पर गई, जहाँ उन्होंने मरीज एलओजी तुमा को देखा। शुक्रवार शाम से विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती एलओजी को कुछ समय पहले जीतू अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था। अस्पताल के कॉरिडोर में एलओजी के परिजन उसके स्वास्थ्य की जानकारी पाने के लिए इंतजार में थे। करीब 25 मिनट से अधिक समय तक अस्पताल में रहने के बाद भारतीय डॉक्टरों की टीम प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए ट्रेजरी बिल्डिंग के लिए रवाना हुई।
0: एलओजी तुमा की हालत पर स्पष्ट जानकारी देने के लिए भारतीय डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मरीजा के पति भी हाजिर थे। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भारत के प्रति आभार प्रकट किया, जिसने इतने कम वक्त में एक टीम मॉरिशस भेजी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एलओजी तुमा को बेहतरीन सेवा देने के लिए सभी मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने मॉरिशनों से मांग की कि वे सब्र से काम लें, किसी भी तरह की अनुचित हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जोनाथन तुमा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता फिलहाल उनकी पत्नी की सलामती है। प्रधानमंत्री और जोनाथन तुमा को सुनते हैं।
2: Qu'il venait dans un surgeon, tout à l'heure. Et il fait l'affaire pour toi qui ne pourra pas me pas réaliser. Ils pensent disent que je fais une opération. Une question, follow-up après. Souvent, ici, notre église à Boutla, pour tous les équipes de l'Union, là. Donc, pour tout le monde, c'est vrai que mon médecin, depuis ici même avant, là, je suis venu, j'ai fait une première 6 semaines. Là, je vais faire l'opération. Et jusqu'à l'air, c'est vrai qu'il paraît qu'une baleine touche tout ce mon cervical bone. Mais peut-être pas paraît un gros dommage là. Je vais faire ben, des outils en cours, tension de masse au côté artère, etc., etc. Après ça, je vais faire l'opération. Et on me dit, mon Dieu, tu vas. Il y en a fait, on va prendre la médecine. Pour les affaires de Dieu, first, do no harm. Parce que bien coup de balle là, il dit, si le routier, il ne fait plus de masse un coup là. Et c'est bien, une grande expérience que je vais faire. Donc c'est ça que je vais faire. C'est moi, j'ai envie de rassurer que tout le monde qui est capable de faire, nous faire. Parce que c'est qu'il arrive là, pas si vous arrivez. Quand tout le monde s'en a pour ça. Et on ne peut pas faire un appel au calme. On a dit, on ne peut pas décrire cette situation là.

0: vieux telle occasion. Au lieu de penser à une madame, il y a un petit enfant, et ce monsieur-là. Pousser tout, bonne solution, et le verre est enflammé, monsieur. C'est malheureux, mais il dit comme ça. Le monde fait l'appel après, il a fait un, il m'a dit, oui, parce qu'il va fauster le Facebook. Fauster. Qui s'en va pas accepter. Je finis de dire, je finis pas par sauter après. Mais ça ne va pas sans responsabilité. Maman, on sort d'un pays. Il ne faut pas qu'elle laisse le pays détruire, pas un petit peu du monde. Il n'est pas acceptable ça. Et nous ne pouvons pas le sauver.
1: Même si je ne peux pas attendre, ce n'est pas banal, des vidéos, même si je peux suivre. Je peux faire ce suivi. Je finis de faire un plan. Hein? Je finis de faire un plan. Comment je peux faire cette intervention-là? Je finis, je recycler, là, une belle rencontre. Et tout de suite, comment je finis, je ne peux pas perdre le temps. Je suis dit, hey, nous devons aller, excuse-nous, nous devons aller pour nous capables de sauver la béatifie. Et nous extra satisfait, nous remercions beaucoup. Ma ministre, M. Anibitu, M. le Premier ministre, ma députée dans l'endroit. Je tout. Il y en a trop beaucoup. Vous connaissez la population, moi, je suis dernièrement, je suis dernièrement, vous avez beaucoup de messages, beaucoup de notifications, contre mon téléphone. Pas facile pour vous dire, pour répondre un par un. Mais je vous remercie sur tout. Merci pour toute la prière. Et voilà, je mets tout dans la main pour dire, parce que la foi est une grande affaire. Comment vous dire dans tout mon interview, nous pouvons aller, nous pouvons aller aussi, mais nous pouvons la guerre, nous pouvons manifester. Mais madame, pas qu'un seul prison qui est capable, qui ne peut pas prendre la langue pour retourner dans l'ordre. Correct. Il finit, arrive ce qui arrive, nous sommes sur la santé. Après, là, nous avons des temps parce qu'il y a un long chemin pour nous rester. Et pour petit, vous êtes solide, vous êtes la tête aux épaules. Plus important pour moi, c'est mon banane retourne ma casse.
2: Quand le vieux mais गोलीबारी की घटना के सिलसिले में डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस की सलाह पर आज पुलिस सर्जन टकू रुजिल जिला अदालत के सामने पेश हुए उन पर पोसेशन ऑफ फायर आर्म विद इंटेंट टू इंडेंजर लाइफ का अस्थायी इल्जाम दर्ज है इसके अलावा फायर आर्म्स एक्ट की धारा 37(1) का उल्लंघन करते हुए उन पर यूजिंग फायर आर्म टू इंटिमिडेट तथा क्रिमिनल कोड की धारा 239(1) के उल्लंघन में इनवॉलंटरी वाउंड्स और वंस एंड ब्लोज बाय इम्प्रूडेंस के नए अस्थाई आरोप दर्ज हैं माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में दूसरा स्वरूप है नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या त्याग धैर्य ज्ञान और भक्ति की देवी हैं उनकी पूजा करने से भक्तों के मन की शांति मिलती है और उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा भी मिलती है करुणा लालू
3: श्रद्धा भक्ति और शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि ये हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है इसके दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है नवरात्रि के अवसर पर मंदिरों और पूजा स्थलों को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है श्रद्धालु व्रत रखते हैं माँ दुर्गा से सुख शांति समृद्धि तथा परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं
4: श्री राम कृष्ण मंदिर होस्टे कांगुब में पूजा कर रहे हैं आज बहुत से लोग पूजा पाठ में आए हुए हैं और इस 9 दिनों में लोग बहुत भक्ति भाव से रहेंगे अपना आचरण पर ध्यान देंगे सब कुछ पर ध्यान रखें और पूजा पाठ में लीन रहेंगे दुर्गा माँ की पूजा करके आशीर्वाद पाएंगे

काल प्रथम रात्रि के दौरान गुजते के श्री राम कृष्ण मंदिर में मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। मां शैलपुत्री की पूजा हमें जीवन में दृढ़ रहने, कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा

0: प्रेरणा देती हैं। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जा रही है। उनकी पूजा करने से भक्तों को धैर्य, आत्मविश्वास और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। वस्तुतः प्रत्येक स्वरूप शक्ति, साहस, ज्ञान और करुणा का संदेश देता है। ये त्यौहार धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विरासत और आपसी भाईचारे को मजबूत करता है।
1: पवित्रता, स्वच्छता, जहां पर पवित्रता है, जहां पर स्वच्छता है, वहां पर एकता है, यूनिटी। जहां पर स्वच्छता वहां पर एकता, और जहां पर एकता यूनिटी, वहां पर आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट। परिवार का मतलब है जहां पर ट्रस्ट, विश्वास है, और जहां पर आदर है, सम्मान है। और जहां पर दोनों है वहां पर परिवार है, और वह परिवार में स्वयं माता वास करती है।

नवरात्रि हमें ये संदेश देती हैं कि सत्य और अच्छाई की हमेशा विजय होती है तथा बुराई पर अच्छाई की जीत निश्चित है। ये पर्व महिलाओं के सम्मान, शक्ति और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से दुख एवं कठिनाइयों को दूर करें तथा पूरे देश में शांति, प्रेम एवं सद्भाव बनाए रखें।

0: सुबह रात के 3 बजे से लोग CWA के दफ्तरों के सामने खड़े हैं ताकि उन्हें वाटर टैंक एंड वाटर पंप ग्रांट स्कीम से लाभ हो। ऐसे एम हरूफ से शुरू सरनेम वाले आज सैंपल और रुजिल में थे। इस स्कीम के तहत 15,000 रुपये की लागत पर सरकार वाटर टैंक और वाटर पंप देने के लिए रजामंद है। ये बात जाने की हमारी एक टीम ने वहाँ कतारों को देखा और कुछ लोगों से बात की।
1: सैंपल में सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के मुख्यालय में फोन पर और काउंटर पर भी सवालों की बौछार है। टीमें जैसे तैसे मांगों को पूरा करने और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने में लगी हैं। वाटर टैंक और वाटर पंप ग्रांट स्कीम से लाभ उठाने के वास्ते सैकड़ों लोग रजिस्ट्रेशन कराने आए। 48 घंटों के अंदर अंदर ये कदम लागू किया गया पानी की कमी की समस्या के चलते। रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद मीटर रीडर स्थल पर परीक्षण करने जाता है। मांग DBM भेजी जाती है। 5 दिन लगेंगे। ये ऑनलाइन प्रणाली है जो शनिवार तक पूरी हुई, लेकिन 2-3 चीजें अभी भी बाकी हैं। कई लोग इसके बारे में जानते ही यहां आ पहुंचे। सुबह 9 भी नहीं बजे थे, लेकिन कतार का अंत नजर भी नहीं आ रहा था।
2: लंबी
1: कतार के बगल में बहती नदी मानो आग को हवा दे रही हो।
3: Au moins 200-300 jimoun devant nous. Je suis capable de faire dans un centre social, une place côte.
1: कुछ लोग आगे से सोच कर खाने पीने का सामान भी साथ ले आए थे।
4: Donc,

0: हिनन बेजन पॉइंट टैंक दे लो।
1: देश भर के सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के दफ्तरों में पंजीकरण किया जा रहा है। रोज हिल में दिन के दौरान मेज की जगह दीवारों ने ले ली। इसी के सहारे लोग खुद ही अपना फॉर्म भरने लगे। दो टैंक और एक पंप के लिए घंटों इंतजार। कतार के अंत में सूखे नल का नजारा फिर कभी न देखने वालों की उम्मीदें भी सूखने लगी। अब सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या सैकड़ों घरों में दो टैंक भरने का पानी भी है या नहीं।
2: पानी की सप्लाई को लेकर मुश्किलें और कृषि उत्पादन, पशुपालन और खाद्य सुरक्षा पर इनके अंजाम घटाने के लिए कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने एक सामूहिक सहयोग की मांग की। आज उन्होंने मुतालिक साझेदारों से मुलाकात की। देश के उत्तर में खेतिहरों की मदद करने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस बैठक के दौरान भूमिगत जलाशयों की एक फहरिस्त भी तैयार की गई ताकि पानी के नए स्रोतों को पहचाना जा सके। माधवी जागोनाथ की रिपोर्ट पर यह विवरण।
1: कृषि उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न संबद्ध पक्षों ने पानी की मौजूदा कमी से निपटने के लिए प्रस्तावित कदमों पर चर्चा की। साथ ही कृषि उत्पादन, पशुपालन और खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले इसके प्रभावों पर भी विचार विमर्श किया गया। उत्तरी क्षेत्र में खेती करने वाले लगभग 3,000 खेतीहर सूखे से प्रभावित हैं। Planters Reform Association के अध्यक्ष सलील रॉय बताते हैं,
3: मामा ग्रैंड प्लांटर जेन अबकुट रिवियर की अल्वे ला मेयर अलोर सा सेट एन प्ली ग्रैंड वेस्ट।
1: नदियों का पानी सीधे समंदर में जाता है, जाया होता है। कंटेनराइज्ड प्रेशराइज्ड फिल्टर डाल सकते हैं। गंभीर सूखा नहीं है, पानी जमा करने की समस्या है। आशा है ये समस्या जल्द सुलझ जाए। रुस्पेल शुगर स्टेट बोर्ड ने आवश्यकता पड़ने पर पानी की बोरिंग के लिए कुछ स्थलों की पहचान की है। शुगर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अपनी जमीन उपलब्ध कराने को तैयार है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड का कहना है कि सब्जियों की कमी होने पर एक योजना तैयार है। उसके जनरल मैनेजर नवीन जयपाल सिंह बताते हैं, बीन्स, ककड़ी आदि हवाई जहाज से ला सकते हैं, बाकी समुद्री मार्ग से। हम तैयार हैं, सूखा हो या नहीं, दिसंबर जनवरी के लिए आयात योजना तैयार है, प्याज, आलू और लहसुन के लिए। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने सभी संबंधित पक्षों से आपसी सहयोग बढ़ाने और उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की अपील की। वे बताते
4: हैं,
1: सब्जियों को लेकर समस्या नहीं है, बीज भी है, पशुपालकों के लिए पानी भी, लेकिन सोच समझ कर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ इलाकों में पानी तो है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हमने वाटर रिसोर्सेज से संपर्क किया, हम चाहते हैं कि पानी का इस्तेमाल अच्छे से हो। मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी भी साल के अंत में संभावित सूखे की स्थिति के लिए तैयार हैं। प्रशासन का कहना है कि गन्ने की फसल सूखे की स्थिति में भी काफी हद तक अच्छी होती है।
2: गर्मी की शुरुआत से बहुत से लोग एयर कंडीशनर खरीदने लगे हैं, इससे बिजली पर निर्भरता बढ़ने लगी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अनुमान है कि इस मौसम गर्मा में 600 मेगावाट बिजली की मांग होगी। इसीलिए सीईबी इस महीने से चेतना अभियान की लॉन्चिंग करेगी। उपभोक्ताओं से मांग है कि वो बिजली को ज़ाया ना करें। बेल एंड रिमांड कोर्ट ने मामी गवातुमांग को जमानत पर रिहा करने की मांग को ठुकराया। मैजिस्ट्रेट का कहना है कि सबूतों में हेराफेरी, गवाहों के साथ बातचीत या फरार होने के खतरे हैं। मामले को अगले 3 नवंबर के लिए स्थगित किया गया। मामी गवातुमांग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए। उनके वकील सुप्रीम अदालत में इस रूलिंग के खिलाफ अपील करेंगे। आज सुबह भारतीय नौसेना जहाज INS निर्देशक मॉरिशस पहुंचा। ये बहुत ही प्रतीकात्मक माना जा रहा है क्योंकि हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में मॉरिशस और भारत के बीच 20 सालों का सहयोग है।

0: और आपको बता दें कि 15 अक्टूबर से जहाज़ हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में अपना काम शुरू कर रहा है। नीतू शाजिया की रिपोर्ट।
1: इस पड़ाव के साथ हाइड्रोग्राफी यानी जल सर्वेक्षण के क्षेत्र में मॉरिशस और भारत के बीच सहयोग के 20 वर्ष पूरे हो रही है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो भले ही दिखाई नहीं देता लेकिन समुद्री नेविगेशन की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। INS निर्देशक ने बंदरगाह पर लंगर डाला है। निर्देशक का अर्थ है रास्ता दिखाने वाला। अब ये जहाज हमारे क्षेत्रीय समुद्री जल के बारे में अधिक से अधिक आंकड़े जुटाने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। इसकी मदद से मॉरिशस और रोड्रिग्स के बीच के समुद्री क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाएगा। ये सहयोग मॉरिशस और भारत के बीच साल 2005 में तय एक समझौते का हिस्सा है। तब से भारतीय टीमें मॉरिशस की टीमों के साथ मिलकर देश की हाइड्रोग्राफी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। INS निर्देशक पहले ही अगालिगा द्वीप का दौरा कर चुका है। इस मिशन के तहत द्वीप का मैप तय किया गया था। इस जहाज की मदद से हम एक अध्ययन तैयार करेंगे ताकि हमें पता चले कि दोनों द्वीपों के बीच कमर्शियल जहाज़ों के लिए किन किन नेविगेशन रूट्स हैं, यानी मॉरिशस और रोड्रिग्स के बीच। सर्वे के लिए ये भारत का सबसे बड़ा जहाज है। भारतीय नौसेना में वर्ष 2024 में शामिल हुआ INS निर्देशक 15 अक्टूबर से हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण का काम शुरू करेगा। ये सर्वेक्षण न केवल समुद्र को बेहतर ढंग से समझने में मदद देगा बल्कि समुद्री नेविगेशन के लिए मौजूद खतरों की पहचान करने में भी सहायक होगा। दोनों देशों की कोशिशों के जरिए हमने नेविगेशन के लिए 13 पेपर मैप्स और 15 इलेक्ट्रॉनिक मैप्स तैयार किए जो भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक सेवाओं द्वारा प्रकाशित किए गए। हमने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विसेज एक्ट का गठन किया है जो एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक के जरिए मॉरिशस में हाइड्रोग्राफी के लिए कानून भी बिठाए गए हैं।
2: This legislation lays a foundation for a dedicated legal and institutional framework to support hydrographic activities in Mauritius.
1: लगभग 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र इसके बदलते स्वरूप को बेहतर ढंग से समझने के लिए अधिक से अधिक आंकड़े जुटाना अब पहले से कई अधिक आवश्यक हो गया है।
0: सूडान के सरहदी इलाके में हवाई हमले किए गए कम से कम 72 नागरिकों की मौत हुई। इमरजेंसी वकीलों का कहना है कि खार्तूम में सूडानी हिस्से में दरियाई नील के पास खान स्थलों को निशाना बनाया गया। रियाद सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया गया। मुसाफिरों के ठहरने के हॉल में आग लगी। एक व्यक्ति की मौत हुई और 11 लोग जख्मी हुए। कल ही इसी हवाई अड्डे पर किए गए हमलों में 13 मौतें दर्ज हुई हैं और 308 लोग घायल हुए थे। विधिमा सिबुरन के साथ अन्य खबरें।
3: राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उस घोषणा के बावजूद जिसे उन्होंने ऊर्जा युद्ध विराम कहा था, रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के 3 क्षेत्रों में बिजली गुल होने की सूचना मिली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रविवार की घोषणा पर पहले आश्चर्य व्यक्त किया और बाद में कहा कि अगर मॉस्को इसका पालन करता है तो कीव भी इसका समर्थन करेगा। सऊदी अरब के सिविल एविएशन अथॉरिटी के अनुसार किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। घायलों को चिकित्सा देखभाल के लिए विभिन्न अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है। पोप लियो 14 ने घोषणा की है कि मेडिकल चेकअप के दौरान उनके फेफड़े में एक गांठ पाए जाने के बाद आने वाले दिनों में उनकी सर्जरी की जाएगी। 71 वर्षीय पोप ने कहा कि उनकी मेडिकल टीम का मानना है कि ऑपरेशन करना सही रहेगा और उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए सहमति दे दी है।
0: अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत दक्षिण पूर्व से आ रहे कुछ बादल आज रात से स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। मस्केरेंस के दक्षिण में एक जोरदार एंटी साइक्लोन पाया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे इलाके में ठंड है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह घने बादल होंगे। दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लाटो में बादल घेराएंगे और रह रहकर वर्षा होगी। कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा सिवाय ऊंचे इलाकों में। हल्की बारिश

होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगून के उस पार समुद्र चंचल रहेगा। 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में। और आज रात से समुद्र की हालत धीरे धीरे खराब होने लगेगी। इसी वजह से आज रात से दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 5:40 पर सूरज उगेगा और शाम को 6:10 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की खबरें आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी लुदोविक जोहंगिया की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। नमस्कार और आदाब।

Monselman Sitaram, Henrietta Vakwami, Basart Salke, 62 years old, Shri Rup Singh Sutrugan, Shri Rup Singh Sutrugan, जो गौतम के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, और भूमि मंत्रालय में पूर्व सीनियर ट्रैफिक सेंसस ऑफिसर थे, की मृत्यु हो गई है. अर्थी कल 11 बजे इनके घर मोसेलमो सीताराम ओरिएटा वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. डॉक्टर इद्रिस गुमानी स्ट्रीट प्लेजेंस रोजिल में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड श्री राजा सिवेन गंगेन, श्री राजा सिवेन गंगेन जो सिवेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. अर्थी बुध को 11 बजे इनकी पत्नी विनोदा गंगेन के घर डॉक्टर इड्रिस गुमानी स्ट्रीट प्लेजेंस रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लाशोमिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन ऑन वेंसडे एट 11 AM. आचाम लेन मोताइलोंग में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कमलावती बजन पैदाइशी नाम मीटू जो कमलावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल 10 बजे इनके बेटे सूरज बजन के घर आचाम लेन मोताइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खेव क्या की शमशान भूमि ली जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो 10 AM. टागो स्ट्रीट रोशनुआ में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड श्री तिमल सिंह लुबिन जो कुमार ऑसियन लाबोया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल 11 बजे इनके बेटे विशाल लुबिन के घर टैगो स्ट्रीट रोशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोशनुआ की शमशान भूमि ली जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. नंबर वन रोतैन लेन एवेन्यू बियाटो कैथ्रोबोन में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड श्रीमती मायावंती मुनिया जो इंदू के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल ढाई बजे इनके घर रोतैन लेन एवेन्यू बियाटो कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ली जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो 2:30 PM. मिशन क्रॉस रोड लालमाची में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड श्री जयराज सुखवरिया जो विवेक के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल 9 बजे इनकी पत्नी कविता सुखवरिया के घर मिशन क्रॉस रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो 9 AM. गांधी रोड लालमाची में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड श्रीमती लीलावती कोलीचन पैदाइशी नाम रामेश्वर की मृत्यु हो गई है. अर्थी कल 10 बजे इनके घर गांधी रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लालमाची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो 10 AM. मोगू में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड श्री अनिल रीगा जो पेट्रोल के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल 9 बजे इनकी पत्नी धनवंती रीगा के घर मोंगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की शमशान भूमि ली जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो 9 AM. नंबर वन 20 डॉक्टर मोंप्ले रोड मुबासे में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बसंती

0: राणा रायनेन, श्रीमती बसंती चुक राणा रायनेन, पैदाइशी नाम ओकाल जो संगीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं अर्थी कालिकपजे कालिकपजे के घर दुकटिया मोपले रोड बुबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे परिवारों से हम हमदर्दी हैं।
1: NBC Radio, 24 hours a day.

सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 14 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक मालेब क्यूपिप में और आसपास के इलाकों में क्लेमोशाहू मालेब क्यूपिप और आसपास के इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

抖的双唇，怕就怕在我的心急如焚，怕就怕缘分尽了

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बजले प्रभु का नाम, रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं भजले प्रभु का नाम आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। हमारा सादर प्रणाम और आप सभी सुनने वालों का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं कार्यक्रम में। तो चलिए, हमेशा की तरह हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही शुभ विचार के साथ। कहते हैं कि जिंदगी जो है इसका सामना हर किसी को करना चाहे, चाहे दुख हो या सुख हो, धूप हो या छांव हो, लेकिन परिस्थितियों का सामना वही करता है जो अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हो। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

तो चलिए श्रोताओ, कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम, आपका हम अभिवादन कर रहे हैं जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं। और आपको पता है कि नवरात्रि जो है शुरू हो चुकी है और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक बहुत सारे लोग जो है पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। तो माँ दुर्गा के नौ रूप केवल पूजा के नौ स्वरूप नहीं है श्रोताओ, बल्कि जीवन के नौ सुंदर संदेश है। धैर्य से चलिए, संयम रखिए, साहस अपनाए, सकारात्मक रहिए, प्रेम बांटिए, सत्य का साथ दीजिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। यही है नवरात्रि का बढ़िया सा

तो चलिए श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा के बारे में और उनके नौ स्वरूपों का बहुत ही खूबसूरत संदेश हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले माँ कुष्मांडा का हमें अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रकाश फैलाना है। फिर है माँ स्कंद माता का, प्रेम और करुणा जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में है। अन्याय के सामने सत्य और धर्म का साथ देना, ये है माँ कात्यायनी का संदेश। संदेश है माँ कालरात्रि का, डर से भागो नहीं, साहस के साथ उसका सामना हमें करना है। मन को निर्मल रखो और प्रेम बांटिए, ये है महागौरी माँ का संदेश। फिर है माँ सिद्धिदात्री, संदेश यही है ज्ञान और साधना से जीवन को सार्थक हमें बनाना है। तो इन संदेशों का हमें अपने जीवन में उतारना होता है। तो आइए कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। श्रोताओं, इन दिनों बहुत ही श्रद्धापूर्वक हम माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अभी हमने उनके नौ स्वरूपों के संदेशों के बारे में हमने बात की, तो चलिए कार्यक्रम को जारी रखते हुए, वैसे हम जितना भी कहें उनके बारे में, उनका वर्णन जितना भी हम करें उतना ही कम है। वैसे उनके स्वरूपों को जब हम बात करते हैं तो हर एक सेख को हमें अपने जीवन में उतारनी होती है। वैसे माँ दुर्गा के हर स्वरूप में जो है, जो संदेश है, यही सिखाती है। कहीं साहस के साथ अन्याय का सामना करना होता है और कहीं प्रेम और करुणा से जीवन को सुंदर हमें बनाना है। माँ के स्वरूप को केवल मंदिर में नहीं बल्कि अपने आचरण में भी हमें उतारना होता है। तो आइए कार्यक्रम को हम जारी रख रही है।

श्रोताओ, भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं। बस यही संदेश हम आपको देंगे कि माँ जो है वो करुणा की देवी है, साहस की देवी है और हमें नारी शक्ति की महानता और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश जो है हम प्राप्त करते हैं माँ दुर्गा से। तो चलिए, उनके दिव्य स्वरूपों की पूजा अर्चना करें श्रद्धा भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ, विश्वास के साथ। और यकीन मानिए, माँ जो है हमारी पुकार ज़रूर सुनती है। तो चलिए, दृढ़ संकल्प के साथ हम उनकी पूजा अर्चना करें और यही मांग करते हैं माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो चलिए, आप सकारात्मक सोच बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहे। चरण प्यारे प्यारे भक्ति गान आपकी सेवा में कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। आप सभी को हम कहेंगे शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मीडियम वेव 819 किलो हर्ट्ज पर ये रेडियो मॉरिशस है। परवीज आपसे मुखातिब है, हमारा सलाम कबूल कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत और नूर मुजस्सम रसूल खुदा हबीब किबरिया नबी रहमत शफाए मशर मालिक दो जहां खतमुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन ताजदार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप तमाम सामईन खैर व आफियत से हैं। मस्जिद सामीन जहाँ से भी आप साथ दे रहे हैं, महफिल शब में आपका खैर मकदम है। मजीद ताखीर न करते हुए महफिल का आगाज़ करते हैं। इस कलाम के साथ मुलाहिजा फरमाइए।

मालिक दो जहाँ ए खालिक कायनात, तेरी हम्द सना है। सबसे बड़ी इबादत तेरी रहमत के आगे। सब खताएँ हैं माफ, तू ही कारसाज, तू ही है बेमिसाल। नाइब रसूल अल्लाह पीरान पीर, रोशन ज़मीर, कुतब रब्बानी, शहबाज लामकानी, कंदील नूरानी, गौस समदानी, महबूब सुबहानी, मुहीउद्दीन अबू मोहम्मद हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, एक बहुत जलील क़द्र आलिम बाअमल वली अल्लाह गुजरे हैं। यकीनन हर मुसलमान उनसे बड़ी अकीदत व इरादत रखता है और उनकी ज़ात व बाबरकत व बाकरामत के गोशे गोशे से वाकिफियत रखने की लगन रखते हैं। चुनांचे रबीउस्सानी की 11वीं रातों के बाद भी उनको अपने अपने अंदाज में खराज अकीदत पेश करते हैं।

घौस पर तो कदम नबी का हैं, उनके ज़ेर कदम वली सारे, हर वली ने सही पुकारा है। वाह क्या बात गौस आज़म की। ये रेडियो मॉरिशस है, परवीज़ा का साथ है, उर्दू नशरियात महफिल शब में रात के 9 बजे तक। मज़ी सामीन, गौस पाक रहमतुल्लाही अलैह बहुत ज़्यादा इबादत और रियाजत और कुरान करीम की तिलावत फरमाया करते थे। आप रहमतुल्लाही अलैह 15 साल तक रात भर में एक कुरान पाक ख़त्म करते रहे और रोज़ाना 1000 रकात नवाफिल अदा फरमाते रहे। शामिल मोहतरम, नेक बंदों के दिल मोहब्बत इलाही और परहेजगारी से आबाद होते हैं। ये अपने दिलों से दुआ की मोहब्बत निकाल देते हैं। इनकी रूहें ज़िक्र इलाही के बग़ैर बेचैन व बेकरार रहती हैं, इसीलिए वो हर लम्हा याद इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। ये मकाम वज़ीज़ामीन इबादत और रियाजत में सख़्त मेहनत करने से हासिल होता है। अल्लाह पाक हम सब को राह सुन्नत पर चलने की तौफीक दे, आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। परवीज़ा को इजाज़त, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

9:10 हुए हैं। जय माता की। अम्बे गौरी की पूजा अर्चना हर भक्त के मन को संतोष प्रदान करती है। भक्तगण माँ की आराधना से वातावरण को मैयामय बना रहे हैं। आप सबों को नवरात्रि की मंगल कामनाएं। प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम नवरात्रि के अवसर पर। आज नवरात्रि पर्व की द्वितीय रात्रि है और आज हम पूज रहे हैं मैया के ब्रह्मचारिणी रूप को। माँ का ये रूप तप के आचरण का रूप होता है। चलिए माता जी के भजन से हम अपने इस वातावरण को मैया

ब्रह्मचारिणी रूप में माता जी दाहिने हाथ में जपकी माला लिए होती है और बाएं हाथ में कमंडल होता है उनके। मैया ब्रह्मचारिणी रूप में श्वेत वस्त्र यानी कि सफेद कपड़े धारण किए होती है।

माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और उनका तप इतना प्रेरणादायक है कि इसे सुनते ही भक्तों के मन में भी तप और साधना करने की शक्ति उठती है। माता की भक्ति करने से जीवन में संयम, शक्ति, सात्विकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और उनका ये तप जो प्रेरणा देती है, इस प्रेरणा से हम अपने जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण बना सकते हैं और हम इस जीवन में शांति का आभास कर सकते हैं।

आज की रात्रि द्वितीय रात्रि माँ ब्रह्मचारिणी के रूप के पूजन की रात्रि। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा कुछ यूं है। कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पर्वत राज हिमालय के घर में जन्मी थी। इसके बाद उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी ने अपनी तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर बिताए हैं, फिर 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया है, और इसके बाद उन्होंने तो खाना ही बन कर दिया, और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, सारा खाना सारा पीना त्याग दिया और वे क्षीण बन गई। और इस तरह क्षीण बनने के बाद उनका नाम अपर्णा पड़ा।

माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कठोर तपस्या, दृढ़ संकल्प और असीम धैर्य का प्रतीक है। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक निराहार बिना भोजन किए रहे ही कठिन तपस्या की। आज की भागदौड़ भरी इस मॉडर्न लाइफ में ब्रह्मचारिणी का यह तपस्या का भाव हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने और मानसिक रूप से मजबूत बनने की सीख देता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने जंगलों में कठिनाइयों और मौसम की मार के बावजूद अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। बस हमारे इस जीवन में जहाँ सोशल मीडिया से हमारा ध्यान भटक जाता है, बस इतना हम ध्यान रखें कि हमें अपने उद्देश्य तक पहुँचना है, ध्यान भटकने नहीं देना है। जहाँ पर किसी भी फैसिलिटी का, किसी भी सुविधा का प्रावधान है, उसे बस सुविधा तक ही रख कर हम अपने गोल की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ जाएं। हजारों सालों तक ब्रह्मचारिणी ने तपस्या की, तब जाके उनको शिव जी को पति के रूप में पाने का सौभाग्य मिला। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें बहुत लंबा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, तो इस तप से घबराएं नहीं। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम लेकर आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते चलिए।

आज नवरात्रि की द्वितीय रात्रि है और द्वितीय रात्रि में हम माँ ब्रह्मचारिणी के रूप का पूजन कर रहे हैं। देवताओं, राक्षसों और समाज के तानों या कठिन हालातों के आगे ब्रह्मचारिणी माता कभी नहीं टूटी। माँ ब्रह्मचारिणी का भाव हमें सिखाता है कि आंतरिक शांति और संकल्प को कैसे मजबूत रखा जाए ताकि बाहरी परिस्थितियां हमें हिला न सकें। ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना माँ ब्रह्मचारिणी की सच्ची पूजा और तपस्या है। तो आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए, माँ ब्रह्मचारिणी आप लोगों पर कृपा बरसाएं ताकि आपका उद्देश्य आपको प्राप्त हो जाए।

माँ ब्रह्मचारिणी का प्रमुख संदेश तप, संयम, धैर्य और दृढ़ संकल्प होता है। नवरात्रि की ये दूसरी रात्रि ब्रह्मचारिणी माँ पूजी जाती है और ब्रह्मचारिणी माता हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य या आंतरिक शांति को पाने के लिए अनुशासन और आत्मसंयम बहुत जरूरी होता है। यह रात्रि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर, नियंत्रण रखकर आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने का संदेश देती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जो यह सिखाती है कि सच्ची लगन और धैर्य से हर बाधा को पार किया जा सकता है। उनकी उपासना, माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से अहंकार, लालच, आलस और स्वार्थ से मुक्ति मिलती है तथा मन में सकारात्मकता का संचार होता है। तो आज की रात्रि का पूजन आपके मन में सकारात्मकता का संचार करे, आंतरिक शक्ति का आगमन करे, यही हमारी प्रार्थना माता ब्रह्मचारिणी से है।

जय जयकार मैया की करते चलते हैं। नवरात्रि की दूसरी रात्रि हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जो तप त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। माँ का यह रूप हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना है। माँ ब्रह्मचारिणी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम ये विशेष कार्यक्रम नवरात्रि के अवसर पर आज समाप्त करते हैं। कल एक ऐसा ही कार्यक्रम आप सुन पाएंगे, कल एक विशेष कार्यक्रम इसी समय होगा। सो चलिए अंत में हम माता की निराली दया के लिए उनकी जय जयकार करते चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी।

0: बस यहीं पर समाप्त होता है हमारा विशेष कार्यक्रम नवरात्रि के अवसर पर।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,
3: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
4: भोजपुरी, भोजपुरी तड़का, तड़का।
0: तो हर स्वागत करते हैं जब भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में, और हमने के रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन दोनों पर कार्यक्रम चला था। तो हर खातिर प्रस्तुत कर जाओ ही सब गीत जो अमंग बजा। आज एक एक घंटा के कार्यक्रम रही, अभी नवरात्रि चला था तो 9 से 10 बजे के लगभग तक हमने प्रस्तुत करी ला जा नवरात्रि के अवसर पर एगो विशेष कार्यक्रम। और हम के भोजपुरी तड़का अभी से शुरू करते हैं जाए 11 बजे प्रस्तुत करब जा। चला हमने के कार्यक्रम में भाग लिया है जा, टेलीफोने करे खोज बजात 4021808 पर करिया जा, और जे मैसेज भेजे खोज बजात 5251700 पर मैसेज भेजे जा, और ये हमने के कार्यक्रम में अपन पसंद के गाना के फरमाइश करिया जा। चला शुरू शुरू में हमें रत्ना पदारत के आवाज़ में और री राजा बंधु जी के आवाज़ में

और ठेला उषा सिद्धिला जी के गावल चनन बरसे गाना सुनी जा हम नई गाना हमने वीणा जी खातिर बजावत है जा कतो बोन से वीणा जी गाना मंगले हो अपन पति देव खातिर

हमने के हाँ भोजपुरी तड़का और भोजपुरी तड़का में तोहर फरमाइश के तड़का लगेल और एक संवाद तोहर तक पहुँचाए ला जा। अभी हमने देवी मैया के पूजा करते हैं जा, नवरात्रि के पर्व मनावत हैं जा, और नवरात्रि के पर्व खातिर गायत्री जी मंगले हवन निको दुर्गा मैया के गाना, और ये गाना सुनीता नंद कुछ गए हवन। चला सुनी जा नोवेल फ्रांस से गायत्री जी के तरफ से गाना उनका बेटा अजय खातिर, मायबू के मामी कल्याणी मोहन खातिर, भाभी शकुंतला खातिर लॉन्ग माउंटेन के, और इन नोवेल फ्रांस के संघतिया गीता बाई खातिर।

तो चला हमने के कार्यक्रम में देवी मैया की गुगी दौरी सुनी जा। ये गाना हमने सुना था सुनब जा बहल गौरी जी के गावल, और बहल गौरी जी के गावल ये गीत हमने ललिता जी खातिर बचाओ था जा थोरे से ललिता कुशल जी मंगला हवानी गाना अपन बहन लो खातिर सुदेवी देवी ना ज्ञानी खातिर छोटी जी प्रभावती जी हरीश जी और आत्माराम जी खातिर।

सुनीता ननकू जी के गावर एगो गाना हम तलावत है जा और ये गाना हम शांति जी के नाम करब जा शांति जी त्याहूस रहलन उनकर बगल से दागो चेक उनकर मराठी परिवार खातिर पदागो चेक उनकर भगीना ओम खातिर और उनकर भैया बलराम खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का में चला हमने कल्याणी जी के फरमाइश पर एक गाना चला, अब जय दुर्गा मैया के गाना है। कल्याणी जी बोला था उनकर बेटा युधिष्ठ के 50वां जन्मदिन बा और इस अवसर पर देवी मैया दुर्गा मैया उनकरा बहुत आशीर्वाद दीहन, ई प्रार्थना करत हवन कल्याणी जी देवी मैया से। युधिष्ठ जी के पत्नी वर्षा, उनकर बेटा भविष्य, उनकर बेटी हर्षिनी, उनकर माँ कल्याणी, सब मिल के उनकरा जन्मदिन के मंगल कामना देवत हवन जा। और यही गाना देवी मैया पर आधारित गौरी ब्रदर्स की आवाज़ में हमने अमृता जी खातिर चलावत है जा। पीतों से अमृता जी गाना मंगले हुआ न सोनिया परी खातिर, मीनाक्षी विशान और पूनम खातिर।

अब चला दुर्गा माता के और गो गाना सुनी जा। हरे गो परिवार, हरे गो माता पिता, पर नलिका लुक पर देवी मैया के आशीर्वाद रही। यही कामना करत हवन जा विनीता जी भी बबासन से, यही कामना करत हवन कि उनकर बेटा बेटी लोग पर देवी मैया अपन ममता के आंचल रख ले रही। उनकर लड़का लोग हवन जा शैलेश, रागिनी, मुनेश, संजीत और सतीश, इनकर पर देवी माँ कृपा रख ले रही। ये उम्मीद में विश्वानी दीपोज के गावली गाना सुने।

चला आगे बढ़े जा और हमने सुनी जा संभाती दुमन जी के गावले को गाना। ये गाना हमने बजावत है जा श्रद्धा जी के पसंद पर। श्रद्धा जी दादी बाँ के खातिर गाना मंगले हवन और अपन फुफू वीरमती जी के नाम करत हवन ये गाना।

रात के 11 बजे में अभी थोड़ा सा मिनट बाकी बा, अभी 5-6 मिनट बाकी, 5 मिनट बाकी बा, और यह हमी के कार्यक्रम भोजपुरी तड़का है जब समाप्त हुआ था। तोहर साथ मिलल, बहुत प्यार से साथ दिलाए कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम खड़ा करे में तोहर हाथ रहल, ये खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो 11 बजे हमी के कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो लोग के नाम करब जा आज के सुनहरे पल कार्यक्रम नीलमणि की प्रस्तुति में। तो आवत हला फिर मिला जा, शुभ रात्रि, नमस्ते। बाकी नमस्ते बोले से आगे बता देना जा तो लोग के हमी मीठा मीठा बोल गाना तो लोग के सुनवाब जा स्वीटी रामबरन की आवाज़ में। और ही बात पर ध्यान दिया जा कि मीठा बोलला से तो लोग दुनिया सक बजा जीत जाए। मीठा मीठा बोलिया जा, आवत हला फिर मिला जा, शुभ रात्रि, नमस्ते।

रात की खामोशी में जब दुनिया धीरे धीरे आराम करने लगती है, तब कुछ यादें जाग उठती है। कभी किसी पुराने दोस्त की याद, कभी बचपन की गलियां, तो कभी वो लम्हे जो वक्त के साथ पीछे रह गए। नमस्कार, मैं हूं नलमनी और आप सुन रहे हैं सुनहरे पल। चलिए आज की रात को बनाते हैं यादों के नाम 60s, 70s और 80s के उन सदाबहार नगमों के साथ जो दिल के बहुत करीब है।

0: जरा सोचिए, जब जिंदगी की सबसे बड़ी फिक्र स्कूल का होमवर्क और अगले दिन का इम्तिहान हुआ करता था, ना मोबाइल की चिंता, ना दुनिया भर की भाग दौड़, बस परिवार के साथ बैठना, रेडियो पर गाना सुनना और छोटी छोटी खुशियों में जीना। आज वो दिन लौट तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी याद जरूर ताजा कर सकते हैं। तो आप जरा बताइए, आपको अपने बचपन की कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है?
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

एक गाना हजार यादें, कहते हैं कि तस्वीरें आंखों को यादें दिखाती है, लेकिन गाने सीधा दिल तक पहुंचते हैं। कभी एक धुन सुनते ही पुराना घर याद आ जाता है, तो कभी किसी अपने का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? चलिए एक ऐसा ही नगमा सुनते हैं जो शायद आपको भी किसी खूबसूरत दौर में ले जाए।

वक्त की सबसे बड़ी बात ये है कि वो कभी रुकती नहीं है। कल जो पल हमारे सामने था आज वो याद बन चुका है, लेकिन कुछ लम्हे ना ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी दिल में बिल्कुल ताज़ा रहते हैं। किसी की हंसी, किसी की बात या फिर एक शाम जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। आज की रात उन्हीं लम्हों के नाम है और उन्हीं यादों के साथ एक और सदाबहार गीत आपके नाम।

0: एक चतुर नार करके सिंगार
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात। हम मरत

तो जनाब, सोमवार की इस रात में हमने यादों के गलियों में खूब सैर की। कुछ यादें हमें हंसाती है, कुछ आंखों को नम कर देती है और कुछ बस चुपचाप दिल में बसी रहती है। लेकिन हर याद हमें ये जरूर सिखाती है कि जिंदगी के छोटे छोटे पल कितने अनमोल होते हैं। मैं हूं नीलमणि, आप सुन रहे थे सुनहरे पल। अपना ख्याल रखिए और इन मीठी यादों को अपने दिल में संभाल कर रखिए। शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस

0: ही आंखों में बातों ही बातों में तूने चुराया जिया।
1: जान तुम्हें तो लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कोई वैल्यू ही नहीं है। 3 साल से इंपोर्टेड कार्स का बिजनेस कर रहा हूँ, कुछ तो वैल्यू मेरी भी होगी नहीं?
0: अब तुम कहोगे तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाओगे, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ कूद जाओगे, यहाँ तक कि मेरे लिए अपनी जान भी दोगे।

0: NBC Radio, 24 hours a day.
1: पैसा, अरे मनी मनी, लगता है अपना भी टाइम फाइन है भाई।

0: Tala.
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: MBC रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।
1: आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूं, मोहब्बत की दास्तान।

0: NBC Radio 24 hours a day.
1: दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है